आकाशवाणी जोधपुर का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: FM बैंड 102.1 MHz पर ये FM Sun City चैनल है। इस समय सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों के विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है।

0: प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती,
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। शास्त्रों में कहा गया है, प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है और कोशिश ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। ये था आज का चिंतन। आइए सुने भक्ति रचनाएं।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारा अगला कार्यक्रम है श्री रामचरितमानस गान भाग 231। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक SL कंडारा। प्रस्तुति मनीषा जैन की। पुराने फिल्मी गीत सुनिएगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुबह 7 से। हम हैं राही प्यार के ये कार्यक्रम 7:30 पर। आठ बजकर 15 मिनट पर वंदे मातरम एक जय घोष। 8:30 कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार इलैया राजा पर। दस बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होगा। 8:45 जोशी का प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। रंग तरंग ये कार्यक्रम दिन में 11 से। 12 कार्यक्रम यादों की महफिल। दिन में 1 कार्यक्रम होगा सुरीला सफर, इसमें हम शामिल करते हैं श्रोताओं की टिप्पणियां भी। वंदे मातरम एक जय घोष ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 2:15 पर, ये पुनर्प्रसारण होगा। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम सदाबहार नगमे। फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली का प्रसारण होगा दिन में 3। पिटारा के अंतर्गत शाम 4 गीतों भरी कहानी सुनिएगा उन दिनों की बात है, लेखक अरुण शेखर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। छाया गीत कार्यक्रम शाम 5 ये पुनर्प्रसारण होगा। वैसे आप सुनते हैं रात 10 कार्यक्रम छाया गीत। 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 पर कार्यक्रम संध्या रंजन का प्रसारण होगा। शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। फौजी साथियों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा शाम 7 से। इंद्रधनुष के अंतर्गत शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रोग्राम गुलदस्ता। रात 8 हवा महल कार्यक्रम में सुनिएगा नाटिका बजट एक कमाओ बीवी का। लेखन मनोहर वर्मा का है, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। चित्रलोक कार्यक्रम रात 8:15 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 9 से। रात 10 आप सुनते हैं कार्यक्रम छाया गीत। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात 10:00

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 231। प्रसंग है अयोध्या कांड।

अयोध्या लौट जाने के लिए श्री राम के आग्रह भरे वचन सुनकर राजा जनक तथा मुनिवर वशिष्ठ को कुछ भी कह सकने में संकोच होता है। भरत गंभीर असमंजस की स्थिति में है। एक ओर हृदय में श्री राम के लिए प्रेम और आदर का सागर उमड़ रहा है तो दूसरी ओर है स्वर्गीय पिता तथा स्वयं श्री राम के वचन की मर्यादा पालन का दायित्व। अंत में धैर्यवान भरत के स्नेह जनित शोक संताप पर विवेक ने विजय पाई। हाथ जोड़कर उन्होंने बड़ों से क्षमा याचना करते हुए श्री राम से कहा, हे नाथ, आप माता पिता मित्र गुरु परम हितैषी तथा अंतर्यामी हैं। ऐसे स्वामी का मैं ऐसा द्रोही हूँ जिसका कोई सानी नहीं। मोह के वशीभूत होकर मैं पिता और आपके वचन का उल्लंघन कर यहाँ आया हूँ। आपने मेरी ढिठाई को भी स्नेह और सेवा मान लिया, मेरे दोष को गुण के रूप में स्वीकार कर लिया। आप जैसा कोई दूसरा स्वामी नहीं है।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 231, प्रसंग था अयोध्या कांड।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: सभी संगीत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है और स्वागत है पंडित एसएल कंडारा जी का, तबला संगतकार श्री संतोष मिश्र जी का भी। पंडित जी, आज राग रागेश्री की बारी है।
2: अच्छा,
1: रागेश्री की चर्चा में इस राग के बारे में क्या हमें बताएंगे आप
2: जी?
1: इसका आरोह अवरोह और इसकी खूबसूरती
2: जी। रागेश्री एक बहुत ही मधुर प्रकृति का राग है और बड़े रागों में भी इसकी गणना होती है, छोटे रागों में भी। छोटे रागों से मतलब लाइट अंग भी इसका बहुत अच्छा है
1: जी जी,
2: जो सुगम संगीत में बहुत इसका इस्तेमाल होता है। इसके फिल्मों में भी कई गाने बने इस राग पे
1: जी।
2: क्लासिकल म्यूजिक में राग रागेश्री के लिए मैं आपको इसके आरोह अवरोह बजा के स्पष्ट करता हूँ, फिर एक छोटी सी रचना रूपक में सुनाता हूँ।

इसमें गंधार शुद्ध, मध्यम शुद्ध, पंचम बहुत अल्प, फिर धैवत शुद्ध, निखात कोमल और फिर सा तार सप्तक का, ये आरोह हुआ इसका। अवरोह ऐसा है तार सप्तक का सा, फिर कोमल निषाद, फिर धैवत शुद्ध, फिर अल्प पंचम लगता है कभी कभी, ज्यादा नहीं लगता, प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत बहुत कम, और मध्यम प्रोमिनेंट है, शुद्ध मध्यम, गंधार और ऋखव। और इसका जो मूल चलन है इसमें

0: क्या बात है पंडित जी, इस सुंदर सी बंदिश को सुनने के बाद रागेश्वरी राग पर आधारित गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं जो मन्नदा की आवाज में है।
1: अरे बहुत सुंदर गीत है वो।
0: जी, फिल्म का नाम है देख कबीरा रोया।
1: जी जी, कौन आया
0: मेरे मन के द्वार।
1: मन के द्वार
0: आइए सुनते हैं।

0: देख कबीरा रोया। इस फिल्म से रागेश्वरी राग पर आधारित गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। मन्ना डे की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन का संगीत। इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी अब यहीं समाप्त हो रही है। श्रृंखला की अंतिम कड़ी में आपसे कल फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: हसरत जयपुरी का लिखा गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म थी अनाड़ी।
1: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ।

0: स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: बाप बेटे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बेदर्द जमाना क्या जाने, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। लिखा था इसे भरत व्यास ने, धुन बनाई थी कल्याण जी वीर जी शाह ने। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम भूली बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के बाकी गीत छोटे से अंतराल के बाद।

0: 12 o'clock इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

चाचा जिंदाबाद इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, रचना थी राजेंद्र कृष्ण की, संगीतकार थे मदन मोहन। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: मैं राजी हूँ गुजरिया।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

त्रिशूल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और येसुदास की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल थे, खयाम का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमेरा ही प्यार के। इस कार्यक्रम के बाकी गाने आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद।

तक छुपाए

0: अमर अकबर एंथनी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार, मुकेश, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।

0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हम वही करते रहोगे।
4: 20 जुलाई विविध भारती पर आ रहा है

0: मेरे हम सफर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। लिखा था इसे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आवाज का हमें राय प्यार के कार्यक्रम समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सेंसिटिव चैनल है। एफएम बैंड 102.1 MHz पर इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार

प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: जनजागरण अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
0: जन-जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभी
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं एक रिपोर्ट
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता

0: रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
3: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रूपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रूपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टिपत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए नीट UG की पुनर्परीक्षा के उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रूपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
4: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
5: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंप

0: कैंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी काराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत। लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड 102.1 MHz पर ये FM सनसडे चैनल है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं ये गीत। ये गीत आप सुन रहे हैं मोनाली ठाकुर और अनु मलिक की आवाजों में फिल्म दम लगा के हईशा।

आइए अब सुनते हैं शंकर महादेवन और सनी की आवाज़ों में पंगा फिल्म का गीत। जावेद अख्तर के बोल हैं, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

मन मर्जियां, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत हर्षदीप कौर और भानु प्रताप सिंह की आवाजों में। अमित त्रिवेदी का संगीत है शैली के बोल।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी जोधपुर का ये एफएम सेंसिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम नमस्कार। ये कार्यक्रम सूर्य नगरी चैनल से रिले किया जाएगा।

0: इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: अभिनंदन,
1: स्वागत,
0: सुप्रभात,
1: नमस्कार।
0: दोस्तों, नया दिन है और नया अंक है नमस्कार कार्यक्रम का, और नमस्कार कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्यारे से विचार के साथ। और विचार ये कहता है कि यदि आपके चंद मीठे बोलों से किसी का रक्त बढ़ता है तो यह रक्तदान है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से आपकी थकावट दूर होती है तो यह श्रमदान है। और यदि आप कुछ भी खाते समय उतना ही प्लेट में लेते हैं जो कभी व्यर्थ ना जाए तो ये अन्नदान है।
1: बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत विचारों के साथ शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार, जो कि इस वक्त ट्यून्ड है आप सभी के रेडियो सेट पर आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र के साथ।
0: और नमस्कार का ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाती है हमारी क्रिएटिव टीम। तो सबसे पहले जानते हैं आज की टीम में कौन कौन है टीम परिचय के साथ। ट्रांसमीटर पर है पारसपुरी गोस्वामी और कैलाश चंद्र सोलंकी।
1: तकनीकी सहयोग के लिए इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद हैं सुनील जयपाल।
0: अनाउंसर ऑन ड्यूटी प्राइमरी चैनल से हैं जयश्री राठी।
1: वहीं एफएम के कंसोल से हमारा साथ दे रही हैं अनाउंसर ऑन ड्यूटी सोनिया देवड़ा।
0: नमस्कार कार्यक्रम की प्रस्तुति है राजेश लामरोड की।
1: और आज के इस नमस्कार के सफर में आपके साथ हैं नमस्कार के दो खास हमसफर, और इसमें मेरे साथ है अर्चना चौहान
0: और मेरे साथ है स्वाति भंसाली।
1: तो बहुत सारी बातें आपके साथ आज शेयर करनी है वो करेंगे, लेकिन इस खूबसूरत से गीत के बाद।

0: आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर जो प्रोग्राम इस वक्त आपके रेडियो सेट पर ट्यून्ड है वो है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। नमस्कार में हम करते हैं आपसे ढेर सारी जानकारियां शेयर और सुनवाते हैं आपको प्यारे प्यारे गीत। तो बिल्कुल सबसे पहले नजर डालते हैं कि इतिहास के आईने में आज का दिन रेडियो पे किस तरह से सुनाई दे रहा है और हमें तो दिखाई भी दे रहा है।
1: बिल्कुल सही बात है। आज है 26 जून का दिन और आज का इतिहास बहुत कुछ कहता है आपसे। जैसे बात कर ली जाए 1945 की, तो सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे आज ही के दिन।
0: और अगर 1992 को हम जानने की कोशिश करें तो आज ही के दिन भारत ने 3 बीघा गलियारा 999 वर्षों के लिए बांग्लादेश को पट्टे पर दिया था।
1: वहीं 1999 की बात कर ली जाए तो आज ही के दिन बूटापेस्ट हंगरी में विश्व विज्ञान सम्मेलन की शुरुआत हुई थी और IOC के अध्यक्ष थे जे ए समारांच, उन्हें बेस्ट स्पोर्ट्स लीडर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया गया था आज ही के दिन।
0: और साल 2000 में अगर 26 जून की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा बांग्लादेश को टेस्ट खेलने वाले देश का दर्जा दिया गया था। और इसी तरह से बहुत सारी घटनाएं जो इतिहास में हमें कहीं ना कहीं नजर आती हैं और उनकी जो सीख है वो आज भी हमारे लिए रेलेवेंट होती हैं। तो बस जरूरत इस बात की है कि हम अतीत से सीखकर वर्तमान में उसको कार्यान्वित कर अपने भविष्य को उज्जवल जरूर बना लें। तो बातें आपसे शेयर करते रहेंगे इसी प्रोग्राम में, आप बने रहिए हमारे साथ।

0: वो जो तुझ में समाया, वो जो मुझ में समाया, जी हाँ, आज का दिन कुछ ऐसा ही कहता है क्योंकि आज है मुहर्रम, हिजरी संवत का पहला मास। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है
1: और इसमें 10 दिन इमाम और हुसैन के शोक में मनाए जाते हैं। और वैसे कहा जाता है कि इसी महीने में मुसलमानों के आदरणीय पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि और अलैहि वसल्लम ने पवित्र मक्का से पवित्र नगर मदीना में हिजरत किया था। और ये हिस्से कैलेंडर का भी पहला महीना है और पूरी दुनिया में जहाँ पर भी मुस्लिम समुदाय है वो मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को भी रोज़े रखते हैं और इबादत भी की जाती है मस्जिदों में भी और घरों में भी।
0: तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि सबके रहनुमा एक ही है, बस इबादत में ही फर्क है।
2: थ्री प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
3: RGHS वचरण जीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
4: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार, इस वक्त ट्यून्ड है आप सभी के रेडियो सेट पर आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र के साथ। और अर्चना, हम देखो ना, जैसे दिन महीने साल ये जैसे जैसे गुजरते जाते हैं, तो हर साल नया जो आता है वो अपने साथ कैलेंडर के पन्ने भी पलटता जाता है। और ये जो अलग अलग तरह के कैलेंडर दुनिया में प्रचलित है ना, चाहे वो हमारा ग्रेगोरी कैलेंडर हो, विक्रम संवत हो, या अलग अलग तरह के पंचांग जो है, बंगला संवत है, राशिशक संवत है, उसी तरह से हिजरी कैलेंडर भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी का जो पहला महीना है वो इस वक्त चल रहा है, मुहर्रम का।
1: जी हाँ, हिजरी कैलेंडर एक इस्लामी पंचांग या कैलेंडर होता है, जिसमें हिजरी कैलेंडर को चंद्र कैलेंडर भी कहा जाता है, और यह बहुत सारे इस्लामिक जो देश है वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। और पूरे विश्व में जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, पर्वों को मानने वाले लोग हैं, वे इसी जो हिजरी कैलेंडर है उसको फॉलो करते हैं, उसके प्रयोग करके वो अपने दिन और जो त्यौहार है वो मनाते हैं। और साथ ही साथ जो पहला महीना माना जाता है वो मुहर्रम का महीना माना जाता है।
0: बिल्कुल, और ये हिजरी कैलेंडर जो है वो कर्बला की लड़ाई के पहले ही निर्धारित कर लिया गया था, और मुहर्रम महीने का जो 10वां दिन है उसे आशूरा के रूप में जाना जाता है। और इसमें हिजरी कैलेंडर में चंद्रमा की घटती और बढ़ती चाल के अनुसार ही दिनों का संयोजन सिर्फ नहीं किया गया है, और हर महीने हर साल जो हमारे कैलेंडर है उससे ये 10 दिन पीछे खिसकता जाता है। इसीलिए
1: और इसीलिए आज का दिन बहुत खास भी है, क्योंकि मुहर्रम के तौर पर इसे मनाया जाता है, और हिजरी कैलेंडर के जो पहले महीना है वो मुहर्रम की शुरुआत मानी जाती है।

श्रोताओ 9 बजने वाले हैं, अब हम रुकेंगे एक न्यूज ब्रेक के लिए और 9:10 पर नमस्कार कार्यक्रम फिर से जारी रहेगा।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम व्यू 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाए। देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मॉनसून की पहली बारिश हुई। अगले 4 से 5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वजनिक

आधुनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में प्रस्तावित राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड को अधिसूचित करने की प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए हैं। इससे भवनों में ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने इस कोड के अनुपालन मैकेनिज्म को भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश में भवन निर्माण के क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्रोत्साहन दिया जा सके। मुख्य सचिव ने यह निर्देश कल शासन सचिवालय में प्रदेश में एनर्जी ट्रांजिशन पर गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। मुख्य सचिव ने सरकारी भवनों में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि इससे राजकीय कार्यस्थलों पर बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिला है। बैठक में ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने ग्रिड की स्थिरता, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन सहित ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय रक्षा बलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। सुझाव साझा करने का आज अंतिम दिन है। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और विशेष रूप से बनाए गए पोलियो बूथों पर यह दवा पिलाई जाएगी। इस दिन खुराक से वंचित रहे बच्चों को 29 और 30 जून को स्वास्थ्यकर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज से उम्मीदवारों के लिए NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की यह परीक्षा इसी महीने की 21 तारीख को आयोजित हुई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशूरा ए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य, न्याय और नेकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। प्रदेश भर में इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले जाएंगे। पाली में बांस, लकड़ी और रंग बिरंगे चमकीले कागजों तथा कपड़ों से ताजिए बनाए गए हैं। जुलूस को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और यातायात मार्ग में बदलाव किया गया है। सवाईमाधोपुर में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। मातमी धुनों के साथ विभिन्न मोहल्लों से ताजिए निकाले जाएंगे। इस दौरान समाज के लोगों ने छबील लगाकर ठंडे पेय पदार्थ पिलाने की भी व्यवस्था की है। चूरू में मुस्लिम समाज द्वारा बीती रात कत्ल की रात मनाई गई और शहर से
10 से अधिक ताजिए

0: निकाले गए। इन जुलूसों में मोमिनों द्वारा हैरतअंगेज करतब भी दिखाए गए। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की है। नए पासपोर्ट बनाने या पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए अब 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ये नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने का शुल्क 5,000 रुपए होगा। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने का शुल्क 3,500 रुपए होगा और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए राशि 6,000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट का शुल्क 1,500 रुपए तथा 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट का 2,000 रुपए है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत की जा रही है। इस क्विज का उद्देश्य युवाओं को नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ तथा नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ये क्विज देश भर में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। सवाईमाधोपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और चिकित्सा विभाग की ओर से कल नशा छोड़ो खुशहाल जीवन जोड़ो थीम पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर में बाघ संरक्षण के प्रयास बढ़ाने और वन्य जीवों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मंथन के उद्देश्य से 5वां रॉयल रणथंबोर इंटरनेशनल टाइगर वीक ITW आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कंजर्व इंडियाज फाइनेस्ट टाइगर थीम पर आयोजित ये कार्यक्रम 28 जून तक चलेगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के वन्यजीव प्रेमी विशेषज्ञ शामिल होंगे।
1: 3 दिवसीय इस आयोजन में देश भर के नीति निर्माता, पर्यावरणविद, पर्यटन उद्योग और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल होकर बाघ संरक्षण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा संरक्षण पर गहन मंथन करेंगे। इनमें पूर्व न्यायाधीश, पूर्व राज्यपाल, इकोलॉजिस्ट, फोटोग्राफर, मूवी मेकर अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरणीय सरोकारों को मजबूत करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को 11 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा। कंजर्वेशन के अतिरिक्त वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, पेंटिंग प्रतियोगिता होगी तथा अग्रिम पंक्ति में तैनात वन कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी की जाएगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मॉनसून की पहली बारिश हुई। राजधानी जयपुर में करीब 1 घंटे तक तेज हवाओं के साथ हुई बरसात से निचले इलाकों के घरों और दुकानों में पानी भर गया। कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटा, लूणकरणसर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़ और जोधपुर सहित कुछ अन्य स्थानों पर भी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में आगामी 4-5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आज से जुलाई के पहले सप्ताह तक पश्चिमी तथा पूर्वी राजस्थान में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने PME ड्राइव योजना के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाए। देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। और प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मॉनसून की पहली बारिश हुई। अगले 4-5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हिंदी में प्रादेशिक समाचारों के बाद आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां आपके साथ शेयर करनी है इस खूबसूरत से गीत के बाद।

0: बंदों को जिंदगानी दे, हम सबकी दुआ भी तो यही रहती है ना। और जिंदगी का एक जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है पानी। पानी हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और कल वैसे जब जोधपुर शहर में हमारे बादल उमड़ घुमड़ के आने लगे थे, शाम को हवाएं
1: एक
0: तेज
1: उम्मीद
0: चलने लगी
1: जरूर
0: थी।
1: जगी थी कि थोड़ी बारिश हो जाएगी, लेकिन कई कई स्थानों पे हुई थी और कुछ कुछ जगह पे नहीं भी हुई
0: हाँ,
1: थी।
0: और हवा तेज हो गई तो बादल उड़ा ले गए उन बादलों को। लेकिन एक बात है, देखो जिंदगी में भी तो ऐसा होता है ना, कई बार हमारी आशाएं बहुत ज्यादा होती हैं हमारी जिंदगी से, हमें लगता है हमें ये चाहिए वो चाहिए, कई बार वो सपने पूरे भी नहीं हो पाते। तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने दुख से उबरने के लिए नशे का सहारा ले लेते हैं, कई
1: बिल्कुल।
0: ऐसे होते हैं जो शौक शौक में नशे का सहारा ले लेते हैं, और
1: और
0: कई बिना कारण ही।
1: कुछ लोग संगत में भी नशे का सहारा
0: हाँ,
1: लेते हैं।
0: सामाजिक स्टेटस भी तो मानते हैं कई लोग कि
1: बिल्कुल।
0: किसी भी तरह का नशा करना शायद एक स्टेटस सिंबल हो, लेकिन कैसे भी करके क्या नशा जिंदगी बन सकता है? या इससे बेहतर हम ये ना कर लें कि जिंदगी को ही नशा बना लें। ये जो जिंदगी का नशा होगा ना, ये जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आएगा। अगर जिंदगी जीना हमारा एक जुनून बन जाएगा तो हर तरफ हमें सकारात्मकता दिखेगी, हर तरफ से प्रयास करना, हर तरफ से कोशिशें करना और जिंदगी की राह पर चलते जाना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा हम सबके लिए।
1: और वो उस चैलेंज को अगर आप अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो हर दिन आपके लिए खास बनता है, क्योंकि ये जो जिंदगी का नशा जब आप पर चढ़ता है तो अलग ही उसका जो खुमार है वो आप पर चढ़ता है। और हम नशे की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध तस्करी निरोधक दिवस है, और आज के दिन यानी 26 जून को इसको मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को प्रस्ताव संख्या 42/112 में इसे पारित किया था, और अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध तस्करी निरोधक दिवस मनाने का निर्णय लिया था।
0: बिल्कुल, और ये जो दिन है ये हमें इस बात के लिए जागरूक करता है कि हम किसी भी प्रकार से ना तो किसी मादक पदार्थ के सेवन का हम समर्थन करें, या कोई और अगर मादक पदार्थों का सेवन कर रहा है तो उसका समर्थन करें, साथ ही साथ उन्हें इनसे बचाने के लिए और इससे होने वाले संभावित अपराधों से बचने के लिए एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी जरूर निभाएं। और अलग अलग देशों में भी अलग अलग तरह से कानून भी बने हैं, कदम भी उठाए जा रहे हैं और बहुत सारी चुनौतियां और उनके निवारण की बात भी की जाती है। तो ये तो थी आज की खास बात, और अब कर लेते हैं कुछ काम की बात।
1: जी हाँ, काम की बात भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि जब हम मुद्दा उठा रहे हैं तो उसका निवारण भी बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आपने कहा कि ज़िंदगी का नशा अपने आप में अलग होता है और बहुत सारे कारण होते हैं जिससे लोग नशे की चपेट में आ जाते हैं, तो नशे की चपेट से या नशे से बचने के लिए कदम उठाना भी बहुत ज़रूरी है।
0: तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोशिश ये करें कि अगर हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने नशा कर लिया हो, तो जब तक उससे चोट या गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं हो, आमतौर पर तो वैसे चिकित्सक सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर ज्यादा हो गया है नशा तो तुरंत उसे अपने आसपास के किसी भी अस्पताल में ले जाएं। और अगर आपके घर में कोई भी दवा या कुछ इस तरह की है तो अपने आप से डॉक्टर बनने का प्रयास ना करें,
1: बिल्कुल
0: ये
1: ना करें।
0: क्योंकि जो नशे में उसने किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन किया है व्यक्ति ने, तो उसके साथ किसी भी दवा का कॉम्बिनेशन उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो
1: बिल्कुल,
0: अनजाने में अगर आप उसकी सहायता करने की बजाय उसे और ज्यादा
1: नुकसान
0: तकलीफ में
1: पहुंचा
0: डाल
1: सकते
0: सकते
1: हैं।
0: हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सही बात है कि अपने मन से या अपने हिसाब से किसी को कोई दवा ना दे, और कोशिश करें कि जो आपके आसपास व्यक्ति है जो नशे का आदी हो चुका है, जिसे लत लग चुकी है, उसे एक चिकित्सा सहायता तो देनी ही है, साथ ही साथ सामाजिक

0: जो व्यवहार है उसमें भी आपको उसके साथ रहना है, उसे मोरल बूस्ट अप करते रहना है, उसे बिल्कुल इस चीज का ध्यान दिलाना है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ सब है।
1: ये तो बात हो गई मादक पदार्थों की, लेकिन हमारे घर में भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं, सफाई का सामान होता है, तो उनको भी क्योंकि उनमें कुछ तत्व मिले हुए होते हैं जो बच्चों के लिए या आपके घर में अगर पालतू जानवर है तो उन्हें भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जिस तरह से हम बाकी सारी चीजों का ध्यान रखते हैं उसी तरह से इन चीजों का भी ध्यान रखें ताकि हमारे पालतू जानवर या बच्चे इनका शिकार ना बने, क्योंकि इनकी थोड़ी सी भी मात्रा बच्चों के लिए नशीली सिद्ध हो सकती है और घातक भी सिद्ध हो सकती
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, ना केवल आपने बच्चों का जिक्र किया बल्कि अपने पालतू जानवरों का भी जिक्र किया, तो बहुत जरूरी है कि बिना किसी निगरानी के आप कोई भी पेय पदार्थ है या कुछ कोई भी जो दवाइयां हैं उसे खुली ना छोड़े।
1: और खास तौर पर ऐसा तब ज्यादा जरूरी हो जाता है जैसे अगर हम किसी पार्टी में गए हैं और जहां अनजान लोग भी हैं,
0: बिल्कुल
1: ऐसे में अपने स्पेशली पेय पदार्थ को या ड्रिंक को कभी भी बिना निगरानी के नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत तकलीफ दे हो सकता है। और यात्रा में भी बिना किसी जानकारी से अनजान व्यक्ति से कोई भी खाने की चीज या पीने की चीज स्वीकार ना करें, ये हमें सावधानी रखनी होगी।
0: लेकिन
1: फिर भी अगर ऐसा हो गया तो एक वो खास नंबर है जिसे डायल करके आप तुरंत सहायता प्राप्त कर सकते हैं,
0: और वो खास नंबर है 1933 यानी 1933, और इस पे अगर आप फोन करते हैं तो आपको सहायता बहुत जल्दी प्राप्त हो सकती है।
1: तो बिल्कुल, अगर कोई भी इस तरह की चीज आपके आसपास आपको दिखाई दे रही है मादक, अच्छा एक जिम्मेदार नागरिक होने का एक फर्ज और भी है, अगर आप यात्रा कर रहे हैं आसपास कोई लावारिस बैग आपको दिखाई देता है या कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर आपको ऐसा लगता है कि वो शायद मादक पदार्थ अपने साथ कैरी कर रहा है, तो एक सजग नागरिक होने का फर्ज भी आप निभा सकते हैं।
0: आपको बिल्कुल सचेत रहना चाहिए, और जब भी आप ऐसी कोई देखते हैं अपने आसपास कोई एक्टिविटी होते हुए तो उसकी जानकारी भी आपको पुलिस को देनी चाहिए।
1: तो बिल्कुल एक सजग नागरिक होने का फर्ज निभाएं, और हम भी एक रेडियो प्रस्तुता होने का फर्ज निभा रहे हैं, आपके से जानकारियां भी शेयर कर रहे हैं और साथ ही आपको सुना रहे हैं प्यारे प्यारे गीत।
2: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
3: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके, सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
4: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
3: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
5: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
6: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
7: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले, विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: जी हाँ दोस्तों, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि नशा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा करना एक बार शुरू तो कर सकते हैं लेकिन उसके बाद में आप उसे छोड़ नहीं सकते, ये एक लत की तरह आपके साथ जुड़ जाता है।
1: और बिल्कुल, नशे में सिर्फ दो ही तो अक्षर हैं, न और शा। वैसे न तो हमें कहना ही है, चाहे किसी भी तरह का कोई भी मादक पदार्थ हो जो हमारे जीवन में अपना घर बना सकता है, हमारे जीवन को बर्बादी की ओर ले जा सकता है, उसको कहना है बिल्कुल न। और शा, शान के लिए अगर कोई भी चीज की जा रही है, कोई भी मादक पदार्थ का प्रयोग किया जा रहा है, कई लोग सिर्फ शो ऑफ के लिए, स्टेटस सिंबल बनाए रखने के लिए, चाहे वो ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इससे आपका कोई स्टेटस सिंबल नहीं बढ़ रहा है, कोई शान और शौकत नहीं बढ़ने वाली है, सिर्फ आप दूसरों को इंप्रेस कर रहे हैं लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं खोखला करते जा रहे हैं। आपका परिवार परेशान होता है, पैसे से हानि होती है वो अलग, स्वास्थ्य की हानि होती है वो अलग, और हमारे सामने ही अनेकों अनेकों ऐसे उदाहरण आते हैं जो पता चलता है कि ज्यादा तंबाकू का सेवन करते थे, सिगरेट का सेवन करते थे तो फेफड़े छलनी हो गए, पता चलता है कि ज्यादा शराब का सेवन करते थे तो लिवर पूरा डैमेज हो गया है। तो इस तरह के अनेकों उदाहरण हमारे सामने है लेकिन फिर भी हम सबक तो नहीं ले रहे हैं ना। देखिए, फिल्मों में और टीवी पे भी कोई भी अगर दृश्य इस तरह के दिखाए जाते हैं तो हमारे यहाँ पर
0: चेतावनी रहती है कि आप इसका इस्तेमाल
1: ना करें, धूम्रपान और जो शराब का सेवन है वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है, हर पैकेट पे भी लिखा होता है, लेकिन क्या हम इस वैधानिक चेतावनी को जानकर अनजान बन जाते हैं, समझकर भी ना समझ बन जाते हैं, देखकर भी अनदेखा कर देते हैं? क्या ये चेतावनी हमारे कानों तक पहुंचती नहीं है? और अगर कदाचित कानों तक पहुंच भी जाए तो क्या है हमारे ये दिलो दिमाग तक नहीं पहुंचती? अगर पहुंच जाए तो क्या हो, हम हर तरह के नशे से दूर हो जाएंगे। दूर हो जाएंगे तो वित्तीय स्थिति तो हमारी बेटर होती ही है, और साथ ही साथ एक चीज और होती है कि हमारा जो स्वास्थ्य है ये भी बहुत सही होने लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति मादक पदार्थों के सेवन की गिरफ्त में आ जाता है तो वो अपने आपा भी भूल जाता है, और ऐसे में परिवार की भी बहुत जिम्मेदारी होती है, और साथ में एक नागरिक होने के नाते भी हमारी जिम्मेदारी होती है कि अगर हम कोई भी मादक पदार्थ किसी को सेवन करते देखते हैं तो पहला सवाल तो हमारे मन में ये आना चाहिए कि मादक द्रव्य इस व्यक्ति तक पहुंचा कैसे, क्योंकि इसकी कहीं खरीद फरोख्त तो होती नहीं है, बाजार में तो मिलता नहीं है, तो फिर इस तक ये कैसे पहुंचा? और इसका एक बहुत अहम जरिया है तस्करी।
0: जी,
1: तस्करी के जरिए ये आता है। तो ऐसे में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की क्या भूमिका है, इस विषय पर अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक विशेष भेंट वार्ता। घनश्याम सोनी जोनल डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर से, और इनसे भेंट वार्ता कर रहे हैं संजय व्यास। कार्यक्रम की प्रस्तुति है राजेश लामरोट की।
2: मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। इसे वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा 1987 से शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य वैश्विक कार्यवाही को मजबूत करना और सहयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समाज को नशे के दुरुपयोग से मुक्त करना है। इस बार की थीम है विश्व मादक द्रव्य समस्या, चुनौतियां, खतरे और प्रतिकार, और कानून के जरिए इसकी तस्करी को रोकने में जो पायोनियरिंग कार्य है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किया जाता है। आज स्टूडियो में इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं श्री घनश्याम सोनी, क्षेत्रीय निदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर। हम चर्चा करेंगे पिछले काफी समय से लगातार इसके ट्रांसपोर्टेशन को रोकने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं और ये प्रयास जारी हैं। इसके लिए बहुत सारी ऐसे काम जो इसका निरोध कर सकते हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करता है, साथ ही अवेयरनेस के भी कुछ कार्यक्रम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चलाता है। तो सर घनश्याम सोनी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका।
3: धन्यवाद साहब।
2: आपका काम रोकने का जो है वो बहुत चुनौती वाला काम है, और एक नई चुनौती जो ऐड हुई है वो सिंथेटिक ड्रग के रूप में ऐड हुई है। पारंपरिक रूप से हमारा जो समाज है, पश्चिमी राजस्थान का समाज, वो अफीम का सेवन एक सामाजिक मान्यता या परंपरा के रूप में करता रहा है। हालांकि इस परंपरा में कमी आई है, जन जागरूकता के बहुत सारे प्रयास हुए हैं, लेकिन एक नई चुनौती जो युवाओं में सिंथेटिक ड्रग के रूप में आई है, और ये चुनौती कितनी बड़ी है इसका

0: प्रतिकार आप कैसे कर रहे हैं?
1: पहले तो मैं आकाशवाणी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस समय राष्ट्र की जो सबसे संवेदनशील समस्या है और उस विषय पर आप प्रतिवर्ष 26 जून के दिन जो है वो आप द्रव्य मादक पदार्थों के निषेध दिवस के रूप में अवेयरनेस के रूप में बुलाते हैं और अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाते हैं, तो मैं आप सभी का आकाशवाणी टीम का आभार व्यक्त करता हूं। और दूसरा जो आपने ये विषय बताया है कि पश्चिमी राजस्थान जहां पे अफीम और डोडे की मनुवार मानी जाती थी उनका शगुन माना जाता था, लेकिन शगुन से लेकर वर्तमान में ये एक सिंथेटिक समस्या का हब बनता जा रहा है, एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में पश्चिमी राजस्थान और स्पेसिफिक जो हमारा जोधपुर रीजन है, इसमें पिछले 3 सालों में हमने लगभग 32 MD की लैबें जो है मॉफेड्रॉन की लैब वो हमने लगातार उनका भंडाफोड़ किया है। और इसमें स्पेसिफिक बात यह है कि जो सिंथेटिक ड्रग का हब जो मारवाड़ बना के पीछे 3 मुख्य कारक हैं। एक तो जैसा कि आपने बताया कि हमारे यहाँ अफीम और डोडा नशा एक परंपरा था,
0: एक एक्सेप्टेंस रही है सोसाइटी के द्वारा,
1: स्वीकार्यता थी, उस स्वीकार्यता ने ही इस समस्या के लिए एक उर्वरा भूमि तैयार की। और उस उर्वरा भूमि के रूप में आज अगर हम देखें तो वो केमिकल जिसमें आप टॉलिन ले लो, एसीटोन ले लो, फॉर्ब्रायोप्रोमोमीन ले लीजिए, ये सारे के सारे जो थे ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में खुले रूप में बिकते थे, इनके ऊपर कोई प्रकार के
0: एनडीटीएस की प्रतिबंध से ये जो केमिकल सब्सटेंसेस थे इनके ऊपर किसी प्रकार का बैन नहीं था,
1: बैन नहीं जी। लेकिन जब हमने यहाँ आकर के ये स्टडी की और कंटिन्यूटी के अंदर जब इन सब लैबों को ब्लास्ट किया और अलग अलग इनकी जो जिस वीडियो से बनाते थे, क्योंकि हमने हाई प्रोफाइल गंगानगर के बड़ी सी बड़ी सोसाइटी में भी इनको पकड़ा, फार्म हाउस में भी इनकी लैबों को पकड़ा, भैंस के तबेले में पकड़ा, जंगल में पकड़ा, और मतलब लैब कहीं पर भी स्थापित हो सकती है, आपके पड़ोस में है और आपको पता नहीं। तो गांव ढाणी देहात से लेके एक बड़े शहर तक
0: कोई धुआं या आवाज वगैरह नहीं आती,
1: वो सारी चीजें मतलब इन्होंने अलग अलग तरीके से तरीके इजाद किए। लेकिन MD बनाने का जो सबसे मुख्य रासायनिक कारक था वो था 2-ब्रोमो। 2-ब्रोमो के बिना ये बनती नहीं थी। तो इसकी स्टडी की, फिर हमने एक यहाँ से प्रपोजल बना करके हमारे हेडक्वार्टर में भेजा कि राजस्थान में स्पेसिफिक पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो MD की लैब है जोधपुर जोन ने ही भंडाफोड़ किया है। जब 2-ब्रोमो का हमने यहाँ से भेजा तो हेडक्वार्टर ने उस मुद्दे को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में उठाया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में उठाया, और अभी पिछले महीने में 2-ब्रोमो को प्रतिबंधित श्रेणी के अंदर लेके आ गए। 2-ब्रोमो अगर कोई मार्केट में ओपनली बेच रहा है तो उसके ऊपर जो है वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को सूचना दी जा सकती है। उसके
0: स्वतंत्र रूप से इस सब्सटेंस का इस्तेमाल किसी काम के लिए होता रहा है पहले, कृषि कार्यों में या किसी और वजह से
1: कृषि कार्यों में
0: तो
1: होता था।
0: वो बाधित ना हो इसके लिए भी इसी तरीके से इसको ले सकते हैं
1: जी, बिल्कुल। इसमें कृषि कार्यों के लिए जो है आपके GSTN नंबर होते हैं, आपके पास एक लाइसेंस होता है जो कंसर्न विभाग से जो है संबंधित, जैसे मैं NCB से हूँ तो हमारी एक प्रीकर्सर्स यूनिट बैठती है, वो परमिशन देती है उसके लिए, लेकिन इसको प्रतिबंधित श्रेणी में लाना जरूरी था। तीसरा, जिसको मैं स्मार्ट पुलिसिंग बोलता हूँ, कि पहले नाकाबंदी होती थी तो हमारे ट्रेडिशन के अनुसार हम अफीम और डोडा पकड़ते थे, लेकिन आज ही सुबह जब हमने ये GRP के पूरे जोधपुर रीजन के लगभग और बीकानेर संभाग के और सब कुल मिलाकर के 16-17 जो डिस्ट्रिक्ट थे उनकी हमने एक ड्रग सीजर की और प्रोसीजर की एक मीटिंग ली, उनको लर्निंग लेसन के रूप में कि आपको केमिकल का अगर कोई ड्रम आता है तो उसको सख्ती दृष्टि से देखना है, क्योंकि सिंथेटिक ड्रग जो है प्राइवेट ट्रेवल से लेकर के रेल यात्राओं के अंदर ये पूरी बड़ी क्वांटिटी का जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। तो ऐसा एरिया अब जालौर के करडा थाने के अंदर केमिकल जा रहा है, 2-ब्रोमो जा रहा है, एसीटोन जा रहा है, टॉलिन जा रहा है, तो करडा थाने के खरा गांव की ढाणियों के अंदर ये केमिकल पहुंच रहा है, तो वहां तो कोई एग्रीकल्चर की यूनिट लगी हुई नहीं है, तो वहां की पुलिस को भी सेंसिटाइज होने की जरूरत है, वहां का बीट कांस्टेबल को भी जागरूक होने की जरूरत है, वहां के जो पटवारी है उनको भी अलर्ट होने की जरूरत है कि कहां पे कौन सी चीजें, क्योंकि खातेदारी और उनकी चेकिंग तो वो करते ही है सब लोग। तो जो स्टेट एनकोड की मीटिंग होती है, जो हमारा एक एनकोड का मैकेनिज्म है, तो उसमें हमने इन मुद्दों को उठाया। पूरे राजस्थान में आप देखेंगे कि ड्रग से रिगार्डिंग जिस ऑपरेशन सिंथेटिक ड्रग इज द मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, आप देखेंगे कि पुलिस की जो रिपोर्ट है, इंटरपोल की रिपोर्ट में सिंथेटिक ड्रग का हब एशिया को माना है। एशिया में भारत एक बहुत बड़ी चुनौती है और भारत के अंदर जब आप डीप में जाएंगे, ये जो हमारा बॉर्डरिंग इलाका है पंजाब और राजस्थान

0: राजस्थान, और राजस्थान के स्पेसिफिक ये जो 5 जिले जो बॉर्डर से जुड़े हुए, तो वो हमारे लिए एक चुनौती है। हमारा लगातार प्रयास विभिन्न एजेंसियों के साथ यही है कि सिंथेटिक ड्रग के ऊपर, चाहे MD हो, MDMA हो, LSD हो, कोई भी प्रकार की ड्रग है, उसके लिए हम लगातार सतत निरंतर अनवरत यही प्रयास है कि इनका भंडाफोड़।
1: जी सर, इस दिशा में जितने भी सख्त कानून है वो डिटेरेंट का काम करते हैं, और कई लोग जो इस धंधे में लगे हुए हैं वो इन कानूनों के बावजूद भी खतरे को उठाते हैं और अंततः जेल जाना पड़ता है। लेकिन अगर कानूनों की बात करें तो किस तरह के सख्त कानून हैं? क्या आप ये मानते हैं कि पर्याप्त सख्ती है, या फिर कुछ कानूनों में और ज्यादा भारत सरकार कुछ नए किस्म के कड़े कानून लाने के बारे में भी सोच रही है?
0: देखिए, भारत सरकार जो है वो नए कानून तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं, 2023 से इम्प्लीमेंट हो गए हैं। लेकिन जहाँ तक NDPS एक्ट की बात करता हूँ मैं, तो 1985 में भी जब ये एक्ट इस्टेब्लिश हुआ, उस समय में जो हमारे विद्वान गण जिन्होंने इस एक्ट को बनाया, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जो सारे प्रोविजन किए हैं वो इतने सख्त हैं इसमें कि कॉमर्शियल क्वान्टिटी, इंटरमीडिएट क्वान्टिटी और कंजम्पशन क्वांटिटी, ठीक है, जिसको अपन स्मॉल क्वांटिटी बोलते हैं, इनका 3 भागों में पार्टीशन कर रखा है। लेकिन कुछ एक सजेशन जो थे, जैसे कि गांजा है, अब गांजे के अंदर जो सामान्य गांजा जो अपने जंगलों में उगता है, हम उगाते हैं, तो उसकी कॉमर्शियल क्वांटिटी 20 किलो मानी जाती है। अब उसी गांजे के अंदर आपका जैसे हाइड्रोपोनिक वीड आता है, जो थाईलैंड वगैरह से, आजकल लोग आपने देखा होगा न्यूज़ में, पढ़ते होंगे कि बैग में छुपा के लेकर आया 1 किलो 2 किलो, तो वो 2 किलो की भी बहुत कॉस्टली होता है। लेकिन हाइड्रोपोनिक वीड और जो हमारा देसी गांजा है, उन दोनों को NDPS एक्ट में एक ही जगह रखा गया है। तो हमने ये भी सजेस्ट किया है कि हाइड्रोपोनिक गांजे की जो कॉमर्शियल क्वांटिटी की मात्रा है वो कम कर ली जाए। और हमारा तो ये सुझाव है कि चाहे ड्रग कोई भी हो, उसमें मात्राएं जो है कॉमर्शियल क्वांटिटी की और कम करने की जरूरत, ताकि ज्यादा से ज्यादा सख्त सजा हो, सख्त प्रोविजन हो। और इसके ऊपर सरकार खुद काम कर रही है। पहले 68 एक्ट के अंदर कार्रवाई है, जो 68 एक्ट है हमारा, जिसमें कि कॉमर्शियल क्वांटिटी के अंदर कोई भी बंदा पकड़ा जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, उसके सराउंडिंग जो फैमिली ट्री है, उसमें जांच करके पिछले 6 वर्षों की प्रॉपर्टियों को फॉरफिटेड किया जाता है। तो वो जो आर्थिक प्रहार है वो सबसे बड़ा अस्त्र है, और उसका आप देखेंगे राजस्थान के अंदर कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है वो अलग अलग आप देखेंगे विभिन्न, इसमें आप देखिए हमारे प्रतापगढ़, झालावाड़, गंगानगर से लेके पूरे एक रीजन के अंदर प्रॉपर्टी फॉरफिटेड की कार्रवाई बहुत हुई है। डेमोलिस के साथ में तो 300 करोड़ क्रॉस का आंकड़ा हमने पार कर दिया है।
1: ये तो सर निरोध की कार्रवाई है, जिसमें हम रोकथाम करने की कोशिश करते हैं। कानून इसमें बहुत सख्त है, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो अपने पूरे बल के साथ में इनको रोकने में, इनके ट्रांसपोर्टेशन को रोकने में और अपराधियों को पकड़ने में लगा हुआ है। लेकिन जो एंड यूजर है, खास करके सिंथेटिक ड्रग के मामले में जो युवा है, वो इन चीजों के चक्करों में ना पड़े, या अगर किसी कोई जो है वो गलत रास्ते पे आ गया है, वो अगर बाहर निकलना चाहता है, तो क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मदद करता है, या वो कहता है कि आप हॉस्पिटल में जाइए जहां नशा छुड़ाया जाता है, या फिर आप किसी और एजेंसी से कॉन्टेक्ट करें, या फिर आप भी अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते हैं?
0: देखिए, इसमें अवेयरनेस के प्रोग्राम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो खुद भी चलाता है, प्लस जो हमारा भारत सरकार का सामाजिक कल्याण विभाग है उसमें एक नाभा है, नशा मुक्त भारत अभियान। तो नाभा से लेकर के आप मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है, अभी राजस्थान सरकार ने अपने लेवल के ऊपर जो हमारी स्टेट एंड कोर्ट की मीटिंग हुई, हर जिले के अस्पताल में जो सरकारी हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट का बड़ा हॉस्पिटल, उसके अंदर एक विंग स्पेसिफिक डी एडिक्शन सेंटर के रूप में एस्टेब्लिश करने की बात,
1: चाहे वो सिंथेटिक ड्रग से एडिक्टेड हो,
0: वो चाहे सिंथेटिक ड्रग से हो, चाहे वो अफीम, डोडा, नारकोटिक्स हो, चाहे सब्सटेंसेज हो,
1: जी
0: मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल सिंथेटिक, मतलब इन दोनों के लिए, तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सरकार की तरफ से प्रयास है कि डी एडिक्शन, और वो एक्टिवली उनकी काउंसलिंग से लेकर के, इसके अलावा मैं आगे बढ़ करके बता रहा हूँ कि जो हमारी मानस हेल्पलाइन है,
1: जी
0: 1933 जिसका टोल फ्री नंबर है, वो केवल स्मगलरों की सूचना के ऊपर ही कार्रवाई नहीं करती है, उसके ऊपर आप अगर कोई ड्रग एडिक्ट है और आप 1933 पे कॉल करके उनसे मार्गदर्शन मांगेंगे, तो कंसर्न रीजन की, चाहे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेके कामरूप तक, चारों दिशाओं में कहीं पे भी उनका यूनिफॉर्म नंबर है 1933, उसमें आप स्मगलर की सूचना भी दे सकते हैं कि फला फला आदमी, ये गाड़ी नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, ये सफेद गतिविधियों में लिप्त है। इसके अलावा आप उसको डी एडिक्शन सेंटर के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो हमारे वाले गाइड भी करते हैं जहाँ कहीं पे भी है, फोन करके सूचना दे करके कि भाई जो हमारे सराउंडिंग के अंदर जो है नशा मुक्ति केंद्र खुले।

0: हुए हैं ताकि उसका ट्रीटमेंट हो और वो समाज की मुख्य धारा में जुड़े।
1: जो भी अपराधी है जो इस प्रकार के इलिसिट ट्रैफिकिंग में लगा हुआ है, जो इसकी तस्करी करता है, वो क्या अनजान रहता है? क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट आजकल बन जाते हैं, आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, एटीएम का यूज करते हैं, तो आप लगातार राडार में, रेंज में रहते हैं। तकनीक कितनी मदद करती है ट्रैप करने में, उनको नैब करने में?
0: देखिए, तकनीक जो है वो इस समय आदमी जहां जाता है वहां मोबाइल उसके साथ होता है, तो तकनीक के फुटप्रिंट तो उसके हर पल हर क्षण उसके साथ है। आप जहां पे भी मोबाइल की स्क्रीन खोल करके कहीं फोन पे करो चाहे कुछ भी करो, आपके साथ मोबाइल है। तो आप मान के चलिए कि यदि आपके जेब में मोबाइल है तो आपके बारे में दुनिया को सब पता है। ये आपकी गलतफहमी है कि मैं ये काम करके निकल रहा हूँ और मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। और इस समय जो हमारी टेक्निकल सर्विलेंस यूनिट होती है, चाहे कोई भी एजेंसी, और वो तो अपडेट है ही है, इसके अलावा आपसी एजेंसियों का जो कोऑर्डिनेशन है वो केवल राइट टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग तक सीमित नहीं है, राइट टाइम कोऑर्डिनेशन के साथ एक्टिवली एक्शन तक पहुंच गया है मामला। आज अगर हमारे पास कोई सूचना है और मैंने जीआरपी को सूचना दी तो इमीडिएट चार बंदे उनके चढ़ेंगे। जहां से अगर गुवाहाटी से कोई बंदा बाड़मेर तक की ट्रेन आ रही है और उसमें अफीम लेकर के चढ़ा और हमारे पास इनपुट है, हुलिया पता है, तो हमें केवल जीआरपी के कंसर्न एसपी साहब को इन्फॉर्म करने की जरूरत है कि भाई यहाँ यहाँ से इस टाइप का बंदा है। वो इमीडिएट कंसर्न स्टेशन के ऊपर उसके सारे सीसीटीवी कैमरे लेकर के एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास भेजेंगे कि आप देखिए ये तो नहीं है कहीं, और वो बंदा पकड़ा है तो वहीं से उसका फॉलोअप शुरू हो जाएगा।
1: ये सब रियल टाइम में होता है और समन्वय इसमें बहुत महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: तो आपका जो विभाग है वो अगर रेल से कोई लेके आ रहा है तो जीआरपी के साथ, और अन्यथा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो अलग अलग स्टेट्स की पुलिस है, उन सब में ये जो समन्वय है ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होता है या बहुत आसानी से हो जाता है और पहले से ही सारा कुछ तय होता है कि इस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाएगा और इस तरह से अपराधी तक पहुंचा जाएगा?
0: ये जो कोऑर्डिनेशन है ये हमेशा ज्वलंत होता है कि कैसी परिस्थिति है। जैसे अभी इन्फॉर्मेशन आ गई कि कोई छोटा जहाज है और वो गुजरात के अंदर मुंद्रा पोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो इमीडिएट आपने सूचना दी गुजरात जोन को, गुजरात जोन ने इमीडिएट उस सूचना को शेयर करेगा, वो एटीएस के साथ शेयर करेगा, नेवी के साथ शेयर करेगा, कोस्ट गार्ड के साथ शेयर करेगा और मैरीटाइम के साथ शेयर करेगा। ये चारों शेयरिंग होते ही वो पता चल जाएगा कि वहाँ पे समंदर में दूसरा कोई कॉल तो काम करता नहीं है कि भाई कहाँ पे सैटेलाइट फोन एक्टिव हुआ है। तो आप देखिए, मतलब विद इन 5 मिनट उनकी सारी लोकेशन पता चल जाती है।
1: बिल्कुल, ये इतना महत्वपूर्ण काम है सर। और गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो तो आपस में शेयर करती है इन्फॉर्मेशन को, लेकिन जैसे आपने कहा कि सामान्य नागरिक हैं वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण खबरी साबित होते हैं, तो वो कई बार जैसे हल्का सा उसको अंदाजा भी होता है और वो शेयर करना चाहता है, लेकिन आपने जैसे कहा कि 1933 ये एक नंबर है जिस पर आप शेयर कर सकते हैं
0: जी।
1: तो यही एक जरिया है, और इससे पहले क्या जरिया हुआ करता था या इसके अलावा और क्या ऑप्शंस होते हैं?
0: देखिए, आपने बहुत ही अच्छी है, हमारी जो मानस हेल्पलाइन है, मैं श्रोतागणों से भी निवेदन करूंगा कि मानस हेल्पलाइन जो 1933 टोल फ्री नंबर है, ये जो भारत इस समय सारी एजेंसियां और जो जागरूक नागरिक हैं जो नशे के विरुद्ध जो युद्ध लड़ रहे हैं उसमें आप एक सूचना देकर के एक सहभागी या एक सक्रिय नागरिक के रूप में एक सूचना की आहुति देकर के ही इस महायज्ञ में आप अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। 1933 वो अस्त्र है, एक ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए, कि आपको लगे कि फला फला बंदा है, इसके ये मोबाइल नंबर है या ये स्कूटर के नंबर है, कार के नंबर है, जो भी है आपके पास जानकारी टूटी फूटी आधी अधूरी, आपने उसके ऊपर आप हिंदी इंग्लिश राजस्थानी जैसी भी भाषा में बताएंगे, तमिल में कश्मीरी में,
1: इसमें बोल के बताना होगा या व्हाट्सएप
0: केवल 1933 के ऊपर कॉल करेंगे, वो तुरंत रेस्पॉन्स करेगा और आपको बतानी है, वो टाइप करके उसको परिमार्जित करके कंसर्न जोन के जोनल डायरेक्टर के पास वो सूचना पहुंच जाती है राइट टाइम, और फिर वहां से जो भी मानस सेल होती है वो उसको इम्प्रूवमेंट करके उसकी सत्यता की जांच करके उसके ऊपर एक्शन होता है। तो इस समय मानस हेल्पलाइन, मैं समझता हूं कि जितने भी बुद्धिजीवी नागरिक जो सुन रहे हैं, मेरी तो आपके माध्यम से उनसे अपील होगी कि 1933 के ऊपर जितनी ज्यादा शिकायत आएगी तो उससे एक स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का जो ड्रग सिनेरियो है वो हमारे सामने एक उसका खाका तैयार होगा, तो सारी एजेंसियों को इनके खिलाफ कार्रवाई करने के अंदर एक मदद मिलेगी।
1: बिल्कुल, और 1933 पर आप मैसेज करके फोन करके मैं भी जागरूक नागरिक होने का संदेश अपने आप को दे सकते हैं और अपने जागरूक नागरिक होने का परिचय दे सकते हैं। इसमें सर कोई किसी को ये शक हो, आशंका हो कि कोई खतरा हो, तो क्या एनोनिमस होकर भी दे सकता है खबर?

0: बिल्कुल, उनकी जो भी जानकारी दी जाती है वो पूरी गुप्त रखी
1: क्योंकि उसको
0: जाती
1: नहीं
0: है।
1: पता है कि सामने कौन बैठा है।
0: हाँ, उनको कोई पता नहीं है किसने क्या दिया, और उसकी जानकारी गुप्त रखी जाती है। और जब कार्रवाई हो जाती है तो उनमें छटनी करके जो बड़ा ऑपरेशन होता है तो उनके इनाम भी देते हैं एनसीबी अपनी तरफ से, ताकि उनका उत्साहवर्धन हो, ताकि समाज की गंदगी साफ हो।
1: सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो यही है कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नशा मुक्त समाज बनाने में,
0: जी, ये सबसे
1: और
0: बड़ा।
1: एनसीबी भी अपने आप में ये पायनियरिंग एजेंसी है, इस तरह का काम कर रही है, उसे हमें सहयोग करना चाहिए। और आखिर में सर, इस प्रोग्राम में आप युवाओं को, खास करके क्योंकि सिंथेटिक ड्रग एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को इन जनरल और युवाओं को इन पर्टिकुलर?
0: समाज तो समंदर है, समाज के ही हम सब हिस्सेदार हैं, तो समाज को अगर हमें वास्तव में दिशा देनी है तो नशा मुक्त, व्यसन मुक्त समाज हो। और जिस तरीके से इस समय भारत सरकार एक सपना लेके चल रही है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है और 2047 तक भारत ड्रग फ्री हो, तो वो केवल पुलिस और कानूनी एजेंसियों से नहीं होगा, समाज के हर तबके को जागरूक होना पड़ेगा, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो सक्रिय नेतागण हो, समाज सेवी हो, उनको फ्रंट पे आके लड़ना होगा। युवा और यूथ को जो मेरा संदेश है आपके माध्यम से, कि भारत, जो सशक्त भारत तभी बनता है, समाज सशक्त तभी बनता है जब युवा ड्रग फ्री हो, नशा मुक्त हो। हम विवेकानंद जी के देश से हैं, हमारे आइडियल वो हैं जिन्होंने उठो जागो और संघर्ष करो का संदेश दिया। तो ऐसे में हमारा युवा जो है वो सुबह उठते ही, चाहे वो ड्रग का एडिक्ट हो, चाहे मोबाइल की स्क्रीन का एडिक्ट हो, कोई भी एडिक्शन जो है वो एक युवा और यूथ के लिए उचित नहीं है। ऐसे में हमें ड्रग फ्री भारत की परिकल्पना तभी सार्थक हो सकती है जब युवा जिंदगी को हाँ और नशे को ना का मूल मंत्र बनाए। धन्यवाद। तभी जाकर के हम ड्रग फ्री समाज के
1: बिल्कुल,
0: सपने
1: जिस
0: को
1: तरह से
0: साकार कर
1: हमने
0: सकते
1: पोलियो
0: हैं।
1: मुक्त भारत बनाया है, जिसमें एक भी कड़ी अगर छूटती है तो हमें पूरा अभियान वापस चलाना पड़ता है, उसी प्रकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और तमाम जो दूसरी एजेंसीज हैं वो बरसों से लगातार धरपकड़ करती रही हैं। हर बार हम इस तरह के जो नशीले द्रव्य और उनके अपराधियों को पकड़ते हैं, लेकिन ये सिलसिला अनवरत जारी रहता है, क्योंकि समाज के चाहने में अगर एक भी जना नहीं चाहेगा तो कहीं ना कहीं वो कड़ी टूटती है।
0: जी
1: तो पूरे समाज को समेकित रूप से ये इच्छा व्यक्त करनी होगी कि हम हमारे समाज को नशा मुक्त करेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। घनश्याम सोनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्षेत्रीय निदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: धन्यवाद सर।
2: अरे डोडा।

0: बताऊं, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में एनसीबी की भूमिका विषय पर घनश्याम सोनी जोनल डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर से बातचीत की थी संजय व्यास ने और प्रस्तुति थी राजेश लामरोड की।
1: बिल्कुल, ये तो थी हमारी विशेष भेंट वार्ता और अब विशेष रूप से हर सप्ताह हम एक खास सेगमेंट हर दिन लेकर आते हैं और आज सप्ताह विशेष में क्योंकि शुक्रवार है तो हम बात करेंगे शुक्रवार की किताब की और आज की खास किताब है लिटिल वुमन, लिखी है लुईसा मे अलकॉट ने। वैसे ये जो उपन्यास है ये 1867 और 1869 दो सालों में दो भागों में प्रकाशित हुआ था और इसकी जो पहली प्रति थी उसमें लुईसा मे अलकॉट की बहन ने ही चित्र बनाए थे। वैसे खास तौर पर इस उपन्यास ने बच्चों के लिए पारिवारिक कहानियों की एक नई शैली की शुरुआत की थी और कहानी कुछ इस तरह की है कि मैग, जो, बेथ और एमी इन सब का जो है पालन पोषण मैसाचुसेट्स के एक शांत कस्बे में उनकी स्नेही माँ मार्मी द्वारा शालीनता से किया जाता है। वैसे ये जो परिवार है ये बहुत समृद्ध नहीं है और इनके जो पिता थे वे अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सेना में पादरी के रूप में सेवा किया करते। दोस्ती हो जाती है थियोडोर लॉरेंस से जो कि पड़ोस में रहने वाले एक धनी बूढ़े व्यक्ति का अकेला पोता है और इस पूरे परिवार की जो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है वो है जो। ये एक जिद्दी और बिंदास लड़की है लेकिन इस उपन्यास का भावनात्मक केंद्र भी है।
0: उपन्यास के दौरान खूबसूरत और घमंडी मेग लॉरी के ट्यूटर जॉन ब्रुक से शादी कर लेती है और अपना परिवार शुरू करती है। शांत और बीमार बेथ की स्कारलेट फीवर में मृत्यु हो जाती है। कलात्मक एमी जो द्वारा ठुकराए जाने के बाद लॉरी से शादी कर देती है और जो प्रोफेसर भायर से शादी कर लेती है जिससे उसकी मुलाकात एक बोर्डिंग हाउस में रहते हुए हुई थी। दोनों मिलकर लड़कों के लिए स्कूल खोलते हैं। लिटिल वुमन ने कई फिल्मों को प्रेरित किया जिसमें शामिल है 1933 की क्लासिक फिल्म जिसमें कैथरीन हेपबर्न ने जो भूमिका निभाई थी और उसके साथ 1994 की गिलियन आर्मस्ट्रांग द्वारा निर्देशित फिल्म
1: और इसके साथ ही एक और फिल्म आई थी जिसमें निर्देशक पटकथा लेखक ग्रेटा ग्रेडविक के रूपांतरण हुआ था और इससे 2019 में सब तरफ सर्वव्यापी प्रशंसा भी मिली थी। तो बिल्कुल आज की हमारी शुक्रवार की किताब थी लिटिल वुमन जो लिखी थी लुईसा मे अलकॉट ने। वैसे चाहे कोई भी किताब हो हमें जिंदगी का कुछ न कुछ सबक तो सिखाई दे जाती है और ये जरूर बता जाती है कि जिंदगी में जो हमारी सकारात्मकता है वो हमेशा हमें आगे ले जाती है
0: चाहे वो किताब कितने ही साल पुरानी क्यों ना हो लेकिन जब भी आप उसे खोलते हैं तो उसके

0: पन्नों से नई होने की एक खुशबू आती है और साथ ही साथ कुछ ना कुछ एक सीख वो ज़रूर दे जाती है। जैसे कि आज की हमारे जो किताब है वो 1868 और 1869 की है, लेकिन देखिए ना 2019 तक भी इस किताब ने किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रेरणा तो ज़रूर दी है।
1: और बिल्कुल 2026 जो अभी चल रहा है उसमें भी हमें भी तो प्रेरणा मिल रही है। और बिल्कुल ज़िंदगी का जो भार है वो हम कितना हल्का कर सकते हैं, उसका कितना भार महसूस कर सकते हैं, वो तो इस अगले गीत को सुन के ही पता चलेगा कि 100 ग्राम जिंदगी भी कैसी अनुभव होती है।
2: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न सुख एक तरफ,
3: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: गीता भवन रोड जोधपुर।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किड बैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग।
0: RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: अब हम नमस्कार कार्यक्रम के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जब हम बात करते हैं आज से संबंधित उन लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जिसके लिए हम उन्हें हमेशा याद करते हैं। और जयंती विशेष के तौर पर आज हम याद कर रहे हैं सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणा को, जिनका जन्म आज ही के दिन 1918 में हुआ। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक, इन्हें सम्मान 1948 में दिया गया। 8 अप्रैल 1948 में एक मोर्चे पर सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे ने अपना पराक्रम दिखाया और राणे जिस बहादुरी और धैर्य कुशल नेतृत्व के साथ काम करते रहे उससे भारत को विजय का श्रेय मिला और उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया।
1: बिल्कुल, कुछ जवान होते हैं जो मोर्चे पर लड़के अपनी देशभक्ति दिखाते हैं, वहीं कुछ कलमकार ऐसे होते हैं जो अपनी कलम से देशभक्ति की अलख जो हम सबके भीतर जगा जाते हैं। ऐसे ही कथाकार थे बंगाल के प्रकांड विद्वान और महान कवि उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनका जन्म आज ही के दिन सन 1838 में हुआ और प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना इन्होंने की 1874 में और आनंदमठ नाम के उपन्यास में से शामिल किया गया था और 1896 में सबसे पहले इसे कोलकाता में गाया गया था। और इन्होंने अपना पहला उपन्यास लिखा था दुर्गेश नंदिनी 1865 में और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता के रूप में इनका नाम इतिहास में युगों युगों तक अमर रहेगा। तो आनंद मठ मैं आपको पढ़वा तो नहीं सकती हूँ, लेकिन सुनवा सकती हूँ फिल्म आनंद मठ से प्रसिद्ध गीत।

0: पुण्य स्मृति दिवस के रूप में हम याद कर रहे हैं भारतीय फिल्म निर्माता यश जौहर को, जिन्होंने अपने फिल्म लोकेशन और भव्य सेट के द्वारा भारतीय परंपराओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था।
1: बिल्कुल, प्रचारक रहे, स्थिर फोटोग्राफर रहे, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव रहे और बहुत सारी फिल्मों के प्रोडक्शन का प्रबंधन भी किया और बहुत सारी फिल्मों के प्रोडक्शन को एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी संभाला यश जौहर ने, जिनका निधन हुआ था आज ही के दिन साल 2004 में।

0: दोस्तों अब बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, जिसमें ग्रुप सी के मुकाबले में पांच बार की चैंपियन ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश लिया। मियामी गार्डन्स में खेले गए एक तरफा मैच में ब्राजील के स्टार खिलाड़ी विनिसियस जूनियर ने दो गोल दागे और ब्राजील के प्रशंसकों के लिए इस मैच में एक और खास बात रही, उनके सुपरस्टार नेमार की मैदान पर वापसी। अक्टूबर 2023 से वे चोट के शिकार थे और उसके बाद में उन्होंने इस मैच में अपनी वापसी करी।
1: बिल्कुल, ये तो थी फीफा वर्ल्ड कप की खबरें खेल खबरों में। अब लिए चलते हैं आपको नमस्कार के समापन गीत की ओर।

0: श्रोताओं, इसी के साथ नमस्कार कार्यक्रम का आज का अंक बस यहीं तक। आपके साथ थे आपके दो साथी, मैं अर्चना चौहान
1: और मैं स्वाति भंसाली। आज के इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार, आकाशवाणी जोधपुर का ये FM सनसिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, प्राणो जी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
7: हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम इस वक्त ट्यून्ड है आप सभी के साथ 102.1 FM सन सिटी पर। और बिल्कुल आज खास इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनको आज हमने बुलाया है इस विषय पे बात करने के लिए जो हम सबकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आज का खास विषय नशा या नाश। और आज हमारे साथ हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं डॉक्टर नवरतन सुथार, जो कि अतिरिक्त प्रोफेसर हैं मनोचिकित्सा विभाग एम्स जोधपुर में। और आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति है राजेश लामरोड की। खास तौर पर आज डॉक्टर साहब हमारे साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आज यानी कि 26 जून को है अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस। तो खास तौर पर हम जिंदगी में नशे को नहीं जीवन को चुने, नाश को नहीं विकास को चुने, इस विषय पे आज बहुत सारी बातें

बहुत सारे सवालों के जवाबों के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद जो कि हमारे साथ इस वक्त अनाउंसर ऑन ड्यूटी सोनिया जो जुड़ी हुई हैं वो हमें इस अंतराल की ओर ले जाएंगी, लेकिन उससे भी पहले एक खास बात आप सभी से पूछना चाहती हूँ जो आज आप सबके मन में सवाल जागना चाहिए। क्या नशा या कोई भी मादक द्रव्य हमारी जिंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है? क्या नशा करके हमें वो जो सुकून जो जिंदगी भर हमारे साथ रहे वो मिलता है, या कुछ क्षणों का सुकून मिलता है? हमें ऐसा लगता है कि नशा करने से हमारे जीवन में कुछ एक सुकून के पल आ जाते हैं, लेकिन क्या वो सुकून के पल जिंदगी में ठहरते हैं या उस नशे के उतरते ही छूमंतर हो जाते हैं? ये सवाल अगर आपके मन में आज चलने लगेगा, इसका जवाब अगर आपको सकारात्मक रूप में मिलेगा कि हाँ नशा करने से मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, नशा करने से मेरी जिंदगी में स्थायित्व आ रहा है, नशा करने से मेरा परिवार बहुत सुखी हो रहा है, क्या मुझे मन से खुशी मिल रही है, क्या ऐसे जवाब मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं ना, मन में उथल पुथल हो गई, क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब वास्तविकता में आपको मिल रहे हैं नहीं में। लेकिन अगर आप अपने मन को समझा रहे हैं तो फिर आज सोचने की जरूरत है। बहुत सारे सवाल बहुत सारे लोगों के हम तक पहुंचने भी वाले हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9413329359, यानी कि 9413329359। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपना सवाल हमें पूछ सकते हैं, खासतौर पर नशा या नाश इस विषय पे। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं डॉक्टर नवरतन सुथार जो कि अतिरिक्त प्रोफेसर है मनोचिकित्सा विभाग एम्स जोधपुर में। तो आज हम इनसे खूब सारी बातें करेंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन इस खूबसूरत से गीत के बाद।

0: 102.1 FM Sun City पे आपके साथ इस वक्त ट्यून्ड है प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। आज इस प्रोग्राम में खास तौर पर हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नवरतन सुथार, जो कि अतिरिक्त प्रोफेसर है मनोचिकित्सा विभाग एम्स जोधपुर में, और आज इनसे खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस पे हम नशा या नाश इस विषय पर बहुत सारे सवालों के जवाब जानेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियोज में।
1: धन्यवाद मैडम
0: जी। डॉक्टर साहब, वैसे कहा जाता है कि जिंदगी भी एक नशा है, इश्क भी एक नशा है। ये नशे तो बड़े खूबसूरत होते हैं और ऐसा नशा मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन ये जो मादक द्रव्यों वाला नशा है, एक पल के लिए तो खूबसूरत लगते भी हैं, महसूस भी होते हैं, लेकिन क्या ये वाकई में उतने ही खूबसूरत जिंदगी के साथ भी रहते हैं?
1: एक बार के लिए अगर कोई भी नशा व्यक्ति लेता है तो वो साइकिक एक्टिविटी या साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस है ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, वो स्टिमुलेशन हर व्यक्ति को अच्छा लगता है
0: जी।
1: कि आसपास की दुनिया से कटा हुआ फील कर रहा है, मजे में फील कर रहा है, बट लंबे समय के लिए वो डेफिनेटली नुकसानदायक होता है क्योंकि ब्रेन के सारे प्रोसेस को ये हिला देता
0: जी।
1: है।
0: ये बात तो है, मतलब लेकिन बहुत अगर हम देखें कि अच्छा ये सडन होता है या कि चलिए नशे के कोई मादक पदार्थ का हमने सेवन किया उस समय अच्छा लग रहा है तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे एक आदत में लत में बदल जाता है और एक बीमारी का रूप भी ले सकता है।
1: शुरुआत में सब एक शौकिया रूप में या नोवेल्टी सीकिंग के लिए दोस्तों के कहने पे ले लेते हैं, बट विद रेगुलर टाइम ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे अगर सामान्य चीज जो आपने बताया कि आसपास की चीजों से हमें खुशी मिल रही है, उससे थोड़ा सा रसायन रिलीज होता है जिसे हम डोपामिन बोलते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन। जब हम कोई नशा लेते हैं वही हैप्पीनेस हार्मोन उसकी कई गुना बढ़ता है, मान लीजिए 15 गुना 20 गुना 100 गुना, डिपेंडिंग ऑन सब्सटेंसेस। तो वो जो किक है उसको अचीव करने के लिए व्यक्ति दोबारा नशा करने की तरफ जाता है। ऐसा करते हुए ना चाहते हुए भी वो कब नशे की बीमारी के अंदर फंस जाता है उसे खुद को नहीं पता चलता।
0: ये बात तो है, मतलब धीरे धीरे धीरे धीरे कब ये गड्ढा जो है हमारे लिए गहरा होता जाता है और ऐसी स्थिति भी आ जाती है कई बार कि बाहर निकलना ही लगभग नामुमकिन हो जाता है।
1: ऐसा व्यक्ति को लगता है कि अब मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूँ, या मेरे ऐसी दोस्ती या संगत के बिना रह नहीं सकता हूँ, नशे के बिना मेरा जीवन खराब हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसे काफी डर होते हैं, समाज में भी ऐसा डर है।
0: हाँ।
1: लेकिन अगर प्रॉपर इलाज, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट लिया जाए जो कि दवाइयों से या काउंसलिंग सेशन से अवेलेबल है, तो डेफिनेटली इसे छोड़ा जा सकता है।
0: लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो लोग इससे जुड़ते हैं, अक्सर तो देखा जाता है कि शौकिया कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कई बार जैसे ऐसा सुना भी है, पढ़ा भी है, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में, कि दोस्त कहते हैं कि अरे एक बार, ये शायद थोड़ा स्टेटस सिंबल भी हो जाता है सबके बीच में, अपने आप को प्रूव करने की बात भी हो जाती है कि ओके एक बार करके देख लेते, इससे एक बार से कुछ नहीं होता है। तो क्या वो एक बार से बार बार से लगातार तक की जर्नी हो जाती है?
1: किसी भी चीज की शुरुआत तो एक बार से ही होती है।
0: जी जी जी।
1: तो एक ये कंटिन्यूम प्रोसेस है जिसको हम यूज से अब्यूज से डिपेंडेंस तक की श्रेणी में देखते हैं, जिसके एक कोने पे यूज है, सोशल यूज, उसके बीच में आता है अब्यूज और

0: हार्मफुल यूज़, अगर व्यक्ति थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ले लिया
1: जी
0: या ड्रिंक एंड ड्राइव कर लिया तो वो
1: जी
0: अब्यूज़ और हार्मफुल यूज़ की श्रेणी में आता है। और उसको जब मज़ा महसूस करता है, उससे अच्छा फील होता है, रेगुलर लेने लग जाता है, उसके बिना रहा नहीं जाता है, वो बीमारी का रूप ले लेता है, जिसे अपन एडिक्शन या डिपेंडेंस बोलते हैं।
1: बिल्कुल। तो अब ये एडिक्शन की बात जब आती है तो सबसे पहले तो अगर हम कहें तो मेंटल हेल्थ पे सबसे ज्यादा असर डालता है, क्योंकि आप उसके बिना रह नहीं सकते, उस चाहे जिस तरह का भी नशा व्यक्ति करता हो। लेकिन आमतौर पर अगर हम सामाजिक जीवन में देखें, बहुत सारे लोग बीड़ी, गांव की तरफ ज्यादा जाएं तो बीड़ी का सेवन करते हुए, शहरों की तरफ आए थोड़ा सिगरेट का सेवन करते हुए या अल्कोहल का सेवन करते हुए अगर हमारे आसपास दिखाई देते हैं, और आजकल जैसे हमने पार्टीज में या जो क्लब कल्चर बढ़ गया है उसमें तो बार होना कंपलसरी हो गया है, शादियों में भी, मतलब हमारे शहर जोधपुर तो इन सबसे थोड़ा दूर था लेकिन अब तो शादियों में भी ओपन बार का सिस्टम हो गया है। तो जब सामाजिक रूप से मान्यता मिल जाती है कहीं ना कहीं वो एडिक्शन या दुखी होने वाली चीज या परिवार के दुखी होने वाली चीज, ये चीजें तो खत्म होने लग जाती हैं फिर,
0: सभी लोग
1: सभी
0: सामाजिक
1: कर
0: चीज़
1: रहे।
0: को तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ वर्ग हैं या कुछ लोग हैं जो स्टेटस सिंबल के हिसाब से इसको अपने फंक्शंस में वरीयता देते हैं, हालांकि सब लोग इससे सहमत नहीं होते हैं। और वो लोग नशे के बड़े परिणाम की ओर ना देखते हुए सिर्फ ये देखते हैं कि आज का फंक्शन हमारा सफल हो जाए या सब लोग हमारी तारीफ कर दें, उनका मकसद सिर्फ इतना ही होता है। हालांकि उस वजह से कितने लोग आगे खराब होंगे या कितने लोग नशे की गिरफ्त में चले जाएंगे, वो अवेयर नहीं होते उस चीज़ के बारे में। तो आइडियली ऐसे फंक्शंस, ऐसे प्रोग्राम नहीं करने चाहिए जिसमें नशा इन्वॉल्व हो।
1: बिल्कुल। तो ये एक आपकी एडवाइस हमारे आकाशवाणी के माध्यम से शायद सभी लोगों तक ये बात पहुंची जरूर है कि जो भी लोग स्टेटस सिंबल के लिए सामाजिक फंक्शनों में इस तरह के बार रख रहे हैं या स्मोकिंग चीजें अलाउ कर रहे हैं तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना
0: और
1: करें।
0: आजकल ये देखा गया, बहुत सारे गांव, जैसे अपने राजस्थान में जोधपुर में कल्चर था अफीम की मनुहार करने
1: बिल्कुल
0: का, जो
1: बिल्कुल
0: किसी के मरने के फंक्शन हो या किसी का अच्छा फंक्शन हो घर पे,
1: हाँ,
0: उसमें मनुहार के
1: मनुहार
0: रूप में
1: की जाती
0: परोसते
1: थी।
0: थे। काफ़ी सारे लोग, समाजसेवी संगठन इसके खिलाफ भी आए हैं, पूरा गांव उसको बहिष्कृत कर देता है या नशे
1: जी
0: को अलग कर दिया है, जो कि एक सराहनीय कदम है।
1: नहीं बिल्कुल, बहुत सारे हमारे जो ये सरकारी अभियान चले हैं उससे जागृति तो आई है,
0: जी
1: दिखाई भी देती है हमें और महसूस भी होती है। लेकिन अच्छा, उसके साथ साथ शिक्षा का जितना प्रचार प्रसार हुआ है उससे भी अवेयरनेस बढ़ी है।
0: बिल्कुल, उससे भी फर्क पड़ा है, लोग जागरूक हुए हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। और वो अपनी जो युवा पीढ़ी जो है, पुरानी पीढ़ी को समझाने की भी कोशिश करती है कि ये चीज़ ठीक नहीं है।
1: ठीक नहीं है और कुछ कुछ असर तो आया ही है। लेकिन एक बात है, जब युवा पीढ़ी की बात चलिए सर, तो आजकल कई बार जो ज्यादातर जो ट्रैफिक चालान होते हैं वो भी ड्रिंक एंड ड्राइव के ही ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी में ये जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, शायद कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो आजकल की तरह काम का प्रेशर जिसको हम कहते हैं, हालांकि हमारे शहर में तो थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन मेट्रो कल्चर की बात करें तो जैसे बैंगलोर जैसे शहर है वहां पे सॉफ्टवेयर कल्चर है, या मुंबई जैसे शहर है जो कभी सोता ही नहीं है शहर हम कहते हैं, इस तरह के शहरों में तो देखते हैं कि यूथ जो है वो कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में कहीं ज्यादा आ गया है।
0: डेफिनेटली आ गया, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में तनाव होना लाजमी है। और तनाव को मिटाने के लिए सबसे जो उचित साधन उनको लगता है, जो अकेले में मिटा सकते हैं,
1: जी
0: जो सोशल मीडिया से वो देखते हैं, उनको लगता है नशा ले लिया
1: नशा
0: जाए,
1: है
0: आज तो सो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे।
1: बिल्कुल। ये तो अब ये तो प्रॉब्लम तो पता चल गई सर, लेकिन आप चूंकि रात दिन इन पेशेंट से डील करते हैं, कैसे अगर मैं सपोज मेट्रो कल्चर की बात करूं या यंगस्टर्स की जिनके ऊपर काम का तनाव इतना ज्यादा है कि वो उससे दूर होने के लिए कुछ पल के लिए से किसी न किसी मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, अगर हम उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहते हैं तो किन सकारात्मक चीजों की ओर या एक्टिविटीज की ओर ले जाएं, या क्या दिनचर्या सजेस्ट करें कि वो इनसे थोड़ा दूर रह सकें?
0: अगर एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो काफ़ी हद तक प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ की तरफ हमें जाना चाहिए।
1: जी
0: एडिक्शन एक नया टर्म है जिसमें पॉजिटिव एडिक्शन की हम बात करते हैं। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल्स की तरफ जाते हो, एक्सरसाइज, योगासन, हेल्दी फूड, अच्छी दोस्ती, अच्छी संगति, अच्छा एनवायरनमेंट अगर रखते हो, तो कहीं ना कहीं आप इस नशे की प्रवृत्ति से बच सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे लोग हमने देखा है कि हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने कभी सेवन नहीं किया, तो मैं
1: जी
0: कैसे कर सकता हूँ? तो वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी इस चीज़ को फॉलो करती है। और युवा संगति में अगर कुछ फ्रेंड्स अच्छे हैं जो नहीं कर रहे हैं, एक्सीलेंट मार्क्स लेके आ रहे हैं, अचीवमेंट लेके, उनके बीच अगर आप हो तो आपका भी मन नहीं करेगा। तो अगर आपकी संगति खराब है

0: प्रेशर को अच्छे से डील नहीं कर पा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उस तरफ जाने की संभावना ज्यादा रहती है।
1: आपके पास किस तरह के पेशेंट्स ज्यादा आते हैं नशे से जुड़े हुए?
0: अभी हमारे एम्स जोधपुर में ज्यादातर जो नशे से पीड़ित लोग हैं वो अफीम छोड़ने के लिए आ रहे हैं
1: जी।
0: और दूसरा नंबर जो है वो अल्कोहल के लिए हैं, और जो दूसरी फिजिकल और साइकेट्रिक इलनेस है उसमें तंबाकू भी काफ़ी कॉमन है। कम कॉमन वाले जो हैं वो कैनाबिस वाले हैं, जिसमें गांजा स्मोकिंग है, भांग लेना है, या एक नया जो केमिकल पदार्थ है MD,
1: MD ड्रग्स।
0: उसको छोड़ने के लिए भी कुछ यूथ आगे आने लगे हैं। मेन कारण उनका पैसे की अनअवेलेबिलिटी होना है, ना कि नशे से कोई हेल्थ इश्यूज हैं
1: हेल्थ
0: वैसा
1: इश्यूज
0: है।
1: नहीं है
0: उसके लिए हम उनको जागरूक करते हैं तब वो ज़्यादा समझ पाते हैं अच्छे से।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे कुछ नशे ऐसे होते हैं जिनसे तात्कालिक रूप से प्रभाव दिखता है हेल्थ पे, कुछ ऐसे होते हैं कि जो शायद इतनी कम मात्रा में लिए जाते हैं या डेली डोज के रूप में एडिक्शन है कि उनका दुष्प्रभाव एकदम से निकल के भी नहीं आता। तो लंबे समय तक क्या ऐसे नशीले पदार्थ हैं जो आपके शरीर में या आपके मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं लेकिन सामने से एकदम से नहीं दिखाई देते?
0: जो हम नशा बात करते हैं उसको साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं साइको एक्टिव सब्सटेंसेस। साइको एक्टिव सब्सटेंस का मतलब है जो साइकिक एक्टिविटी या ब्रेन एक्टिविटी को प्रभावित करें।
1: जी,
0: उसमें अपने फंक्शंस होते हैं इमोशनल, परसेप्शन, कॉग्निशन, याददाश्त, है ना, हायर मेंटल फंक्शंस है जो आपको सोचने समझने की शक्ति दे।
1: जी,
0: वो सारे फंक्शंस अगर नशे की गिरफ्त में है या उसके कंट्रोल में है तो आप सोच सकते हो नॉर्मली, आप कितना अच्छे से सोच सकते हो, और नशे की गिरफ्त में वो सारी चीज़ें ब्लैंक हो रही है, ब्लंट हो रही है
1: जी,
0: तो आप कितना अच्छे से सोच सकते हो। इसीलिए बहुत सारे एक्सीडेंट्स नशे की गिरफ्त में देखते हैं, क्योंकि वो एनालाइज नहीं कर पाते कि मैं कितना फास्ट चला रहा हूँ, आगे से कोई आ सकता है तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाना, एक उसमें एक इम्पॉर्टेंट रीजन है।
1: स्पेशली ड्राइविंग में वो जो हाइट डिस्टेंस की कैलकुलेशन होती है वो
0: प्रभावित होता है, नींद गड़बड़ हो जाती है।
1: कई बार नशे में हैलुसिनेशन का भी इफेक्ट आने लगता
0: बिल्कुल
1: है।
0: जो हम बात कर रहे थे कैनाबिनॉइड्स या इस तरीके के जो सब्सटेंसेज हैं उसको लेने के बाद कलरफुल दुनिया लगती है, आसपास चीजें बहुत अच्छी रंगीली सी दिखती है, तो उसमें हैलुसिनेशंस होना बहुत कॉमन है।
1: कॉमन है,
0: कोकेन है, स्टिमुलेंट्स है, उनमें भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। उनको लगता है सामने वास्तविकता है जबकि वो नशे के इफेक्ट में है।
1: तो मेंटली आपको पूरा कैप्चर कर लेता है, जो भी मादक द्रव्य है वो आपको पूरा कैप्चर कर लेता है कि आप खुद की सोचने की समझने की शक्ति भूल जाते हैं।
0: जी, और छोटी छोटी मात्रा, जैसे आपने बताया, छोटी मात्रा में कई बार इफेक्ट नहीं होता है,
1: सामने से नहीं दिखता लेकिन लंबे समय
0: लेकिन
1: तक।
0: लंबे समय में क्या होता है, जैसे हमने बताया कि लंबे समय में स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ बीमारी है
1: जी,
0: उसका एक इनहेरेंट क्वालिटी है टॉलरेंस, कि अगर आपने आज थोड़ी सी मात्रा में अगर वो खुशी पाई है तो समय रहते आपको बहुत ज्यादा मात्रा लेनी पड़ेगी उसी चीज को अचीव करने के लिए, तो धीरे धीरे वो मात्रा ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है, वो इंडिकेट करती है कि आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हो।
1: लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि उस रास्ते को पहचाना कि हम उस गर्त में गिर रहे हैं।
0: आर्बिटरी लाइन है, कोई क्लियर कट लाइन नहीं है, डिमार्केशन जो आपको रोक दे।
1: और उसका एक बहुत बड़ा रीजन एक आजकल अवेलेबिलिटी का भी है, हम उस पर भी बात करेंगे। अभी हमारे एक श्रोता का सवाल आ चुका है, कैलाश जी सोलंकी हैं घंटाघर जोधपुर से, ये कह रहे हैं कि इनके दोस्त को लत लगी हुई है स्पेशली दवाइयों की, और कई सालों से ले रहे हैं और दर्द लेकिन अभी भी नहीं छूट रहा है, और मतलब वो रैंडम दवाई ले लेते हैं।
0: नहीं, दर्द के लिए जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अंदर तकलीफ क्या है। जैसे अपन बहुत बार कहते हैं कि ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड या हड्डी से रिलेटेड कोई समस्या हुई तो आप बिना डॉक्टर के दिखाए किसी केमिस्ट के पास गए, उन्होंने को पूछा कि भाई मेरे दर्द हो रहा है जी, इसकी कोई दवाई दे दीजिए। उन्होंने दवाई दे दी कोई, लेकिन उन्होंने मान लो 5 ही गोली दी कि आप इसको ले लेना। अब आप बिना बताए उस गोली को लंबे समय तक यूज कर रहे हो,
1: तो
0: अपने हिसाब से ज्यादा बढ़ा ली है, तो एक नॉर्मल जो दवाई है वो भी आपके लिए एडिक्शन का काम करने लग गई, क्योंकि समय रहते आपने उसको बंद नहीं किया, उसकी मात्रा बढ़ाते गए तब आप उसकी गिरफ्त में आ गए। स्पेशली ट्रामाडोल, टापेंटाडोल, ये कुछ दर्द की गोलियां हैं जो ओपियोइड्स ग्रुप से आती है।
1: ओके,
0: उसमें आपकी निर्भरता हो जाती है समय रहते।
1: तो ये पेन किलर्स भी उस श्रेणी में आती हैं कभी कभी?
0: स्पेशली जो नार्कोटिक वाली जो दवाइयां हैं जो ज्यादा पेन में अक्सर फार्मासिस्ट या वहां से लोग ले लेते हैं।
1: लेकिन ये तो सब मतलब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे?
0: प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हैं, लेकिन कई बार ये ब्लैक मार्केट में लोगों को आसानी से मिल जाती है। हालांकि इस पे अभियान चला रहे हैं सरकार की तरफ से, बट अभी भी चल रहा है ये ब्लैक मार्केट।
1: तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सब इस बात का ध्यान रखें कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं उनको हम ओवर द काउंटर हासिल करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ये पूरी तरह से गैरकानूनी है और इसके लिए आप अपनी सजगता दिखाएं। बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां लेना आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो डॉक्टर

हम और भी सवाल हमारे लेते रहेंगे, और जैसे मैंने कहा कि अभी अवेलेबिलिटी की बात हम जरूर करेंगे, तो एक आप ही की पसंद का गीत हम सुनेंगे। उससे पहले मैं अपने श्रोताओं को फिर से हमारा व्हाट्सएप नंबर बता देती हूँ, 9413329359। इस नंबर पे आप डॉक्टर साहब से नशा या नाश किसको चुने इस विषय पर अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। और आज हेलो डॉक्टर में हमारे साथ हैं डॉक्टर नवरतन सुथार, जो कि अतिरिक्त प्रोफेसर है मनोचिकित्सा विभाग एम्स जोधपुर में। तो हम डॉक्टर साहब की ही पसंद का ये खूबसूरत सा गाना सुनवाते हैं आप सभी।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहां कहां इलाज ना करवाया।
2: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
3: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
4: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
3: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
5: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
6: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
5: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
7: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
8: हेलो डॉक्टर, ये प्रोग्राम इस वक्त ट्यून्ड है 102.1 एफएम सन सिटी पर, आप सभी के रेडियो सेट पर। और आज इस प्रोग्राम में खास तौर पर हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नवरतन सुथार, जो कि अतिरिक्त प्रोफेसर हैं मनोचिकित्सा विभाग एम्स जोधपुर में। और आज खास तौर पर हम इनसे अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस में नशा या नाश इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। आप सभी के सवाल हम तक पहुँच रहे हैं। और एक खास बात सर, जैसे हम बात कर रहे थे युवाओं की या बुजुर्गों की, एक जो हमारे ग्रामीण अंचलों में सबसे सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त जो नशा है वो है डोडा या अमल। बहुत आसानी से, मैं चाहे जैसे हम, आपने बताया कि अगर घर में कोई मृत्यु का आयोजन है, उस उन आयोजनों में भी, शादी का आयोजन है या कोई भी दूसरे आयोजन जो भी होते हैं, उन सब में सार्वजनिक रूप से इसको सर्व किया जाता है, भले ही क्वांटिटी छोटी हो, लेकिन जब सामाजिक मान्यता मिल जाती है तो क्या वो नशा का उपयोग सही हो जाता है तब भी कि नहीं रहता है तब भी?
9: चाहे वो सामाजिक रूप में लिया जाए, नशा तो नशा ही है, वो आपका इफेक्ट तो दिखाएगा ही। तो सामाजिक रूप से कुछ बेल्ट में अभी भी उसको मान्यता प्राप्त है, लोग सोशल गैदरिंग में यूज करते हैं, बट वो है नशा। जैसा मैंने शुरू में बताया, काफी लोग इसके खिलाफ भी हो रहे हैं, बट अफीम से जुड़े हुए ज़्यादातर जो लोग हैं आजकल एम्स में या दूसरे संस्थान में आ रहे हैं, उसका एक मेन रीज़न है, अगर आपके पास अफीम या नारकोटिक्स की माइनर क्वांटिटी भी मिलती है तो आप एनडीपीएस एक्ट में, सिर्फ पोजीशन प्रूफ करना है, आप एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार हो जाओगे,
8: हो सकते हो। तो एक सजग नागरिक के रूप में अगर आप इस तरह की मनवार कहीं देखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले तो आप इसके खिलाफ शिकायत करें, एक सजग नागरिक होने के नाते। और दूसरा ये सवाल हमारे मन में उठना चाहिए कि जब ये सब इनकी विक्रय जो है वो प्रतिबंधित है तो ये मिला कहाँ से? एक ये बहुत अहम सवाल होता है। और स्वास्थ्य कारण अलग है, लेकिन उससे पहले भी एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज तो हम सबको अदा करना ही है। तो बिल्कुल, ये जो अफीम की लत अगर किसी को भी लग जाए, मान लीजिए अब इस तरह के सामाजिक आयोजनों से ही या किसी भी तरीके से अगर लत लग जाए, तो सर जैसे एक तो बहुत सारे आजकल नशा मुक्ति केंद्र भी खुले हुए हैं, क्या उनका भी इसमें नशे से छुड़वाने में रोल सही रहता है? या साइकियाट्री डिपार्टमेंट को अगर किसी को संपर्क करना हो अपने किसी परिजन के लिए या मित्र के लिए, तो किस तरह से कर सकते हैं?
9: नशा मुक्ति केंद्र भी नशा छुड़ाने का ही काम करते हैं, मुझे उनके बारे में जोधपुर में ज्यादा आइडिया नहीं है कि वो लोग किस तरीके से इलाज कर रहे हैं, बट जो एम्स जोधपुर है उसमें हमारा एक अलग से नशा मुक्ति का सेपरेट ओपीडी चलता है, जिसे हम एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी के नाम से जानते हैं, वो मंडे टू सैटरडे रोज चलता है। और उसमें जो अफीम से रिलेटेड छोड़ने में जो दवाइयाँ यूज होती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद है कि जो अफीम या डोडा जिसकी गिरफ्त में लोग आ चुके हैं उसको छोड़ सकें, और लंबे समय तक उसके बिना कैसे वापस समाज की मुख्य धारा में जुड़े, उसके लिए काउंसलिंग सेशंस भी हमें काउंसलर के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं।
8: परिवारजन सहयोग करते हैं?
9: परिवारजन सहयोग करते हैं। शुरुआत में थोड़ी रिलक्टेंस थी कि ये तो इतना बड़ा नशा नहीं है, हम अपने आप छोड़ देंगे, पर जैसे जैसे अवेयरनेस सेशंस हो रहे हैं, जैसे आज हम कर रहे हैं वो भी एक अवेयरनेस सेशन है, तो जितने ज्यादा नागरिक या अपने आसपास

0: ज़्यादा जागरूक होंगे, वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। जैसे एक गांव से एक व्यक्ति आया, उस गांव से कम 50-60 लोग आ चुके हैं छोड़ने के लिए, उसको देख के ये
1: उसको
0: आसानी
1: देख।
0: से छोड़ दिया इसने।
1: हाँ, और जब सरकार द्वारा इस तरह की सुविधाएं दी जा रही है कि दवाइयां भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, तो इस सुविधा का उपयोग हम जरूर करें। अपने आसपास कोई भी अगर नशे की गिरफ्त में है तो उसको जरूर हम यहाँ पर लेकर आएं, और खास तौर पर जब ओपीडी मंडे टू सैटरडे अवेलेबल है तो फिर इस सुविधा का उपयोग करना बनता है। लेकिन सर, अगर आपके जितने यहाँ पेशेंट आते हैं उनमें बुजुर्ग ज्यादा रहते हैं या यूथ ज्यादा रहते हैं?
0: जो ओपीडी में लोग आते हैं उनमें यूथ ज़्यादा हैं,
1: जी
0: वो इजीली जैसे काफ़ी लोगों को देखते हैं कि उन पर खराब प्रभाव पड़ रहा है, तो समय रहते उन्होंने उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा, पैसे की भी प्रॉब्लम रहती है, नशा
1: जी
0: भी आजकल उस पर काफ़ी सख्त पाबंदी चल रही है, तो
1: जी
0: मिल नहीं पाता उनको, तो उन्होंने एक सही मार्ग चुना है कि क्यों ना इसको छोड़ दिया
1: छोड़
0: जाए।
1: दिया जाए।
0: इसके विपरीत जो बुजुर्ग लोग हैं वो डायरेक्टली नहीं आते हैं, लेकिन वो अगर किसी मेडिकल या सर्जिकल प्रॉब्लम से जूझते हैं,
1: जी
0: जैसे वो मेडिकल वार्ड में एडमिट है, सर्जिकल वार्ड में एडमिट है किसी दूसरी बीमारी से, चाहे
1: जी
0: वो हार्ट की हो, चाहे वो और किसी सांस की प्रॉब्लम हो, तो वहाँ के डिपार्टमेंट हमें कॉल कर देते हैं कि फला फला आदमी यहाँ एडमिट है और उनका अफीम की समस्या है, तो हम वहाँ जाके उनका इलाज करते हैं, उनको छुड़ाने की कोशिश करते
1: कोशिश
0: हैं।
1: करते हैं। वो रेजिस्टेंट थोड़े ज्यादा होते हैं
0: उनके
1: बुजुर्ग?
0: परिवार वाले थोड़े ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, उन नहीं चाहते कि इस उम्र में उनको छुड़ा दें, इनको
1: अच्छा,
0: कुछ हो जाएगा, फिर काफ़ी जोर आजमाइश करनी पड़ती है, सेशंस लेने पड़ते हैं, अवेयर करते हैं, उनमें से आधे लोग समझ पाते हैं, ट्रीटमेंट में आ पाते हैं
1: थोड़ा
0: आधे लोग।
1: मुश्किल हो जाता है। अच्छा सर, एक मैं और बात, मतलब मेरे मन में ये क्यूरियोसिटी के तौर पर ये सवाल आया है कि शायद हमारे शहर में अभी तक, हमारे आसपास तो नहीं लेकिन फिर भी महिलाओं में भी नशे की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ रही है, और मेट्रोज में तो खैर, मतलब इसको क्योंकि सामाजिक मान्यता भी, ऑफिस की पार्टी है जब महिलाएं घर के बाहर कदम रख रही हैं, काम कर रही हैं, तो वही कि पुरुषों के बराबर है, अगर पुरुष नशा कर सकते तो क्या हम नहीं कर सकते। वो कभी कभी उस मानसिकता में भी, कई बार अपने आप को प्रूव करने की मानसिकता में, कई बार वर्क प्रेशर की मानसिकता में भी, किसी भी तरीके से, लेकिन ये प्रवृत्ति भी आजकल फीमेल्स में भी देखने को मिल रही है,
0: बिल्कुल,
1: तो उनके लिए शायद ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है।
0: नशे की प्रवृत्ति महिलाओं में भी बढ़ रही है, स्पेशली
1: जी
0: मेट्रो कल्चर जहाँ पे हैं या
1: जी
0: ऑफिस वर्किंग पर्सन्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। हालांकि रूरल कम्युनिटीज़ में भी नशा है, लेकिन वो तंबाकू के रूप में है या हल्के नशे के रूप में है, भारी नशे या मादक द्रव्य हैं। उसमें हमारे बेल्ट में अफीम का नशा है थोड़ा प्रचलित, बट हमारे ओपीडी में उतने लोग नहीं आ पाते, पुरुष
1: जी
0: ज़्यादा आते हैं। महिलाओं पे इसका इफेक्ट फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ऑलमोस्ट सेम ही है,
1: जी
0: जो नुकसान आदमी को करता है वो महिलाओं को भी करेगा। कुछ नुकसान अलग से हैं, जैसे कि फीमेल जो है वो फर्टिलिटी इशू उनकी लाइफ में
1: जी
0: सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, तो बच्चा लगने में समस्या आ सकती है अगर आप नशे की समस्या से ग्रस्त हैं। दूसरा, अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है फिर भी नशा कंटिन्यू है तो बच्चे को भी डेफिनेटली अफेक्ट करेगा, बच्चा
1: करेगा।
0: विकार से ग्रसित हो सकता है, कोई ना कोई तकलीफ हो सकता है, जन्मजात विकृति हो सकती है। तो आइडियली यही है कि कोई भी फैमिली की प्लानिंग करें, आप नशा छोड़ने के संकल्प पहले लें।
1: ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और एक महिला तो जो है वो क्योंकि भविष्य की पीढ़ी का निर्माण कर रही है, तो वो अगर नशे से दूर रहेगी तो आने वाली पीढ़ियां भी नशा मुक्त रहेंगी और हेल्दी रहेंगी। सबसे बड़ी बात है कि हम जिस फिट इंडिया की बात भविष्य में देख रहे हैं उसके लिए महिलाओं की जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा हो जाती है। सिर्फ जैसे युवाओं की और महिलाओं की खासतौर पर हम बात करें, आजकल एक और बड़ी विचित्र सी बात हमारे आसपास देखने को मिल रही है, एनर्जी ड्रिंक्स। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, तो आपको सीधे सीधे दिखाई देता है कि उस व्यक्ति ने शराब खरीदी है, अधिकृत केंद्र से खरीदी है, या कैसे उसने शराब खरीदी है, शराब का सेवन किया है, तो वो अल्कोहलिक है। लेकिन आज बहुत बहुत ही, मतलब आसानी से जो मिल रहे हैं एनर्जी ड्रिंक्स, उसमें भी कुछ हद तक नशीले पदार्थों की मात्रा है। बच्चों तक आसानी से अवेलेबिलिटी हर दुकान पे मिल रहे हैं, तो क्या उतनी भी मात्रा हमारे लिए घातक है, और कैसे इससे, इसके अगर फायदे हैं या नुकसान ही है, सर इसके बारे में प्लीज थोड़ी सी रोशनी।
0: एनर्जी ड्रिंक को बच्चे किस मकसद से ले रहे हैं एक तो वो देखना चाहिए, दूसरा फिजिकल हेल्थ में तो डेफिनेटली नुकसान कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी एज ऑफ सडन आपको मिल रही है
1: जी
0: या हाई कार्ब मिल रहा है, हाई शुगर एक साथ मिल रही है, तो फिजिकली तो ठीक नहीं है आपके लिए। नशे की अगर बात करें तो इस तरीके की चीज़ें आपको स्टिमुलेट करती है, सडन
1: जी
0: एनर्जी देती है, किक देती है। तो खेल कूद में अगर अपन देखते हैं तो इसको शायद डोपिंग के रूप में देखा जाता है और वो प्रतिबंधित है, तो
1: जी
0: कोई भी स्टिमुलेंट्स है वो

0: दिमाग को आपको एक्टिवेट करेगा, तुरंत एनर्जी देगा, स्फूर्ति देगा, शायद इसी मकसद से युवा इसको लेने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों से बचें, कोशिश ये करें कि लंबे समय का विजन रखें, स्टिमुलेंट का उपयोग ना करें बल्कि अपने को थोड़ा थोड़ा स्टिमुलेट करते रहें लाइफ के अच्छे गोल्स के लिए।
1: सर जैसे एक सवाल और है हमारे पास, सोस्ती गेट से अर्चना पूछ रही है कि जैसे खासतौर पर जब बच्चों के एग्जाम का टाइम होता है उस समय, क्योंकि एग्जाम के लिए उनको पढ़ाई करनी होती है, बहुत ज्यादा जगना होता है, तब वो एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन ज्यादा करते हैं।
0: इन चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए कि जाग रहे हैं इसलिए या अपने को ज़्यादा पढ़ाई करनी है इसके लिए अपन एनर्जी ड्रिंक्स ले लें। ये तो पूरे साल का विषय है, अगर आपने पूरे साल अच्छे से मेहनत करी है, उस टाइम फोकस कर रहे हैं तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि हर बच्चा एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई करता है, थोड़ा सा ज़्यादा रात को जागता है, कम सोता है, बट एनर्जी ड्रिंक्स इसमें नुकसानदायक ही हो सकता है, फ़ायदा तो नहीं करेगा।
1: फायदा नहीं करेगा, लेकिन सर जगने की जरूरत तो पड़ती है, या कई बार काम का प्रेशर है, तो क्या सप्लीमेंट्स हम दूसरे लें कि उससे नींद भी ना आए, एनर्जी भी बनी रहे और हेल्दी भी हो?
0: होममेड चीज़ आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स का कुछ मिक्सचर करके जूस बना के दे सकते हैं। अगर व्यक्ति कुछ भी इवन पानी भी पीता है तो थोड़े समय के लिए वो जाग लेता
1: नींद
0: है,
1: भाग
0: उनको
1: जाती
0: लगता
1: है।
0: है कुछ मैंने लिया है, थोड़ा सा वॉक करके आ गया, एक अच्छा गाना सुन लिया, तो भी आपको एक स्टिमुलेशन मिलता है कि अगले आधा घंटा एक घंटा अपन अच्छे से निकाल लेंगे।
1: सर अब आपने मुझे स्टिमुलेशन दे दिया है इस बात का कि अब हमारे लिसनर्स को भी आप ही की पसंद का एक गाना सुनवाया जाए।

0: 102.1 FM Sun City पे इस वक्त प्रोग्राम आपके साथ ट्यून्ड है हेलो डॉक्टर और आज इस प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर नवरतन सुतार जो कि अतिरिक्त प्रोफेसर हैं मनोचिकित्सा विभाग एम्स जोधपुर में नशा या नाश इस विषय पे आज हम से बात कर रहे हैं और आप सभी के सवाल भी हम तक पहुंच रहे हैं और डॉक्टर साहब इस गीत से पहले हम जो बात कर रहे थे नशे की ही और खास तौर पर जो अमल या डोडा जो लिया जाता है तो हमारे एक श्रोता हैं खारिया खुर्द आडेल बाड़मेर से कंवराराम सारण ये पूछ रहे हैं कि इनका दोस्त डोडे के नशे का शिकार हो चुका है अब सवाल यही है कि बिना तकलीफ कैसे छोड़ सकता है क्योंकि एक बार उसने कोशिश करके छोड़ने के लिए सब इलाज किया था लेकिन बीपी कंट्रोल से बाहर हो गया हाई बहुत हो गया तो फिर बाद में उसे वापस शुरू कर दिया
1: तो जैसे हमने बताया कि एडिक्शन है उसका एक तो क्राइटेरिया होता है टॉलरेंस
0: जी
1: ऐसे ही एक और क्राइटेरिया होता है जिसे हम बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स
0: जी
1: तो जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हो अचानक से छोड़ते हो तो उसके कुछ सिम्टम्स आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स मान लो कोई छत की 19वीं मंजिल पर चढ़ गया हो वापिस सीढ़ियों से ना उतर के वहां से छलांग लगा दे तो चोट लगने की आशंका ज्यादा है तो उनको अगर कोई ऐसी राय दे रहा है कि आज के आज बंद कर दो आप कुछ नहीं होगा हम देख लेंगे तो उनको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वही विड्रॉल सिम्टम्स का एक लक्षण है बीपी रेज होना तो शुरुआत के 5 से 7 दिन बीपी ज़्यादा होना हार्ट रेट तेज़ होना पसीना आना हाथों पैरों में तोड़ होना उबासी आना ये विड्रॉल सिम्टम्स है अगर उसको प्रॉपर परामर्श के साथ दिखा के दवाई दे दी जाए तो ये विड्रॉल सिम्टम्स ना के बराबर होते हैं अगर दवाई की मात्रा उपयुक्त दी जा रही है तो विड्रॉल सिम्टम्स होते नहीं है तो उसका मेन टारगेट यही होता है कि विड्रॉल सिम्टम्स को बिना पेशेंट को दिक्कत हुए अगले 7 से 10 दिन में कैसे मैनेज कर लिया जाए
0: जी
1: तो इलाज के माध्यम से इसको अच्छे से संभाला जा सकता है
0: किया जा सकता है और कई बार सर इसमें अगर हम ग्रेजुअल डिक्रीज करें क्या वो भी हेल्प करता है
1: ग्रेजुअल डिक्रीज सिर्फ एक ही चीज के लिए इंडिकेटेड है अगर नींद की गोलियां बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो उसको अपन धीरे धीरे कम करते हैं ताकि ताण ना आ जाए या मिर्गी का दौरा ना आ जाए बाकी कोई भी नशे के लिए ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं लेकिन जैसा मैंने बोला एडिक्शन की डेफिनेशन ही यही है कि उसके बिना वो रह नहीं सकता
0: हाँ।
1: तो कम करने पे विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे थोड़ी डोज वापस बढ़ा देंगे तो अपने आप से वो संभव है नहीं
0: यानी इसमें वन वे ही ट्रैफिक ज्यादा रहता है क्योंकि आप हमेशा इंक्रीमेंट की तरफ जाते हैं डिक्रीमेंट एकदम आसानी से नहीं होता है तो आपको बिल्कुल कट डाउन ही करना पड़ेगा वहां
1: वो
0: पर।
1: भी सहयोग से प्रॉपर इलाज से अपने आप से नहीं करना है कि घर पे आज से मैं नहीं लूंगा मैं तब करने की कोशिश करता हूँ
0: बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए सर
1: विल पावर के साथ इलाज जरूरी है क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स तो आएंगे ही आएंगे
0: और ऐसे में सर कई बार एक सजेशन भी आता है कि थोड़ा हवा पानी बदल दो लोकेशन चेंज कर दो या आसपास का जो वातावरण है उसको बदल दो वो भी हेल्प करता है
1: ये इसलिए जरूरी है जैसे हमने कहा दवाइयां तो देनी है विड्रॉल को तो खाली बातचीत से ठीक नहीं किया जा सकता उसको तो दवाई से ही ठीक किया जा सकता है लेकिन वापस उस लत में ना पड़े वापस उस संगति से बच सके उनको ना कहना

0: सीख सकें उसके लिए हवा पानी बदलना ही पड़ता है।
1: ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम आसपास का वातावरण बदलेंगे तो भी हमारा जो नशे से बाहर निकलने की कोशिश है वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। सर, हमारे एक और श्रोता हैं अब्दुल हमीद छिपा, खांडा फलसा मियां चौक जोधपुर से। ये पूछना चाह रहे हैं कि कई ऐसे मरीज होते हैं, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले भी बताया था कि बुजुर्ग होते हैं तो कई सालों से जो नशा लगातार करते जा रहे हैं, शायद उनका शरीर एडिक्टिव भी हो चुका है, लेकिन अगर उन्हें कोई दूसरी हेल्थ इश्यू होती है और अगर उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है, जैसे मान लीजिए डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी सर्जरी के लिए अमुक अमुक पैरामीटर्स नॉर्मल होने ज़रूरी है, उसी तरह से अगर नशा करने वाला व्यक्ति है उसकी कोई दूसरी सर्जरी होनी है तो क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं?
0: तो दो तरीके की चीज़ें इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। एक तो जिस चीज़ के लिए सर्जरी हो रही है कई बार वो उस नशे की वजह से वो कॉम्प्लिकेशन हो रखी होती है, जैसे इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गई तो लंबे समय से जो अफीम खा रहे हैं उनकी आंत बिल्कुल पतली होके बंद हो जाती है। अब उस चीज़ के लिए अगर सर्जरी करनी पड़ रही है वो तो अफीम की वजह से ही है। उसके साथ समय के साथ एज के साथ जो समस्याएँ हो रही है उसके लिए सर्जरी होती है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए ही नशे का इलाज जहाँ पे बढ़ती है वहाँ पे आके डॉक्टर करते हैं। जैसे एम्स में हमारे ये ऐसा सिस्टम है कि मानसिक रोग के डॉक्टर जो हैं वो वहाँ जाके उनको अवेयर करते हैं और दवाइयाँ चालू करते हैं। तो ऐसा सच उसके लिए कोई वो नहीं है कि आपको नशे से संबंधित अचानक से कोई दिक्कत हो जाएगी। अगर आप प्रॉपर इलाज लेके वहाँ पे भी छोड़ते हैं तो आप मैनेज कर लिए जाते हो। सर्जरी वाले दिन हम इंजेक्शन दे देते हैं, बाकी दिन हम मुँह से लेने वाली दवाई दे सकते हैं, तो अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। लेकिन एक गलती होती है इसमें, गलती मरीजों के साइड से ये होती है कि वो बिना डॉक्टर को बताए चुपचाप से अफीम चटाते रहते हैं।
1: अच्छा, ये भी होता है?
0: ये भी करते हैं
1: हॉस्पिटल में,
0: हॉस्पिटल में चोरी छुपे। तो उसमें दिक्कत ये होती है कि हम उनको मैनेज कर रहे हैं दवाइयों से और वो ऊपर से दूसरी जो अफीम है या डोडा है वो बिना डॉक्टर को या किसी को बताए अलग से देते रहते हैं। तो डोज कई बार ज्यादा हो जाती है, मरीज को कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। उन चीजों से बचना चाहिए।
1: और ऐसे में लेकिन अगर मान लीजिए इलाज में कुछ गड़बड़ हुई तो फिर दोष तो
0: ब्लेम
1: डॉक्टर
0: सारा
1: को दिया
0: डॉक्टर
1: जाता
0: पे
1: है।
0: है, वो बताते भी नहीं है बाद में कि हमने ये दिया था।
1: और आजकल तो हम कई बार देखते हैं बहुत सारे प्रदर्शन तो ये आम हो गए कि इलाज में ये गड़बड़ हो गई, लेकिन मरीज के परिजनों को भी ये बात बहुत मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि आप बिना डॉक्टरी परामर्श के, इवन हम खाना भी अगर मरीज को कुछ देते हैं तो वो भी उनकी जानकारी में देते हैं कि किस तरह का खाना देना है। तो फिर आप दवाइयों के साथ अगर नशे की कोई चीज़ दे रहे हैं तो कितना खतरनाक हो सकता है, ये आपके लिए आज सोचने का विषय है। तो डॉक्टर साहब, ये आपने एक बहुत अच्छी जानकारी दी कि परिजनों को ये बात बहुत खास तौर पर ध्यान रखनी होगी कि इस तरह की कोई भी चीज़, खास तौर पर नशे की, आप जहाँ एक तरफ से उस मरीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बिना जानकारी के मरीज को वो दे रहे हैं, तो इस बारे में सभी को अवेयर होने की, जागरूक होने की जरूरत है। अब सर, एक जागरूकता वाली बात जो है सबसे बड़ी कि मरीज आप तक जब पहुंचता है, कई बार तो ये है कि चाहे पैसा नहीं है या तकलीफ ज़्यादा हो गई तब पहुंचता है, लेकिन अगर आपको अप्रोच करना चाहते हैं मान लीजिए मंडे टू सैटरडे, किस तरह के मरीज आपको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, क्या अलग अलग तरह की काउंसलिंग जरूरी है? क्योंकि कुछ होते हैं जो एमडी ड्रग्स वाले हैं, कुछ अल्कोहल वाले हैं, कुछ स्मोकिंग वाले हैं, या कुछ ये अफीम की लत जिनको है, क्या इन सबके लिए अलग अलग कोई तरह से विशेष परामर्श निर्धारित है या अलग डॉक्टर निर्धारित है?
0: एक छोटा सा मैं डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो नशा लेने वाले हैं उनमें से 80-90% लोग तो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाते। हमारे तक नहीं मतलब किसी भी डॉक्टर के
1: किसी
0: पास,
1: किसी भी डॉक्टर तक नहीं
0: तो
1: पहुंचते।
0: इसे हम बोलते हैं ट्रीटमेंट गैप, जो कि 90% है नशे के लिए,
1: तो अवेयरनेस जरूरी है।
0: और जो
1: है।
0: 10% लोग पहुंचते हैं उनमें से भी 10-20% लोग ही इलाज कंटिन्यू रखते हैं, बाकी उसमें से भी छोड़ देते हैं। तो ये बहुत विकराल रूप है नशे का और उसे इलाज से संबंधित। अब आपके क्वेश्चन का जवाब मैं ऐसे देना चाहूंगा कि सब तरीके के नशे से पीड़ित लोग हमारी ओपीडी में संपर्क कर सकते हैं। ओपीडी अलग से बनाई हुई है नशे के लिए जिसका नाम है एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी। तो वहाँ पे अवेलेबल डॉक्टर हैं, काउंसलर हैं, उनसे आके आप अपने नशे के बारे में खुल के बात कर सकते हैं। उनका हम डिटेल में वर्कअप करते हैं, पूरा एनालाइज करते हैं, फैमिली सिचुएशन क्या है, सोशल सिचुएशन क्या है, संगति क्या है, कौन सा नशा ले रहे हैं, कितनी मात्रा में ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको दवाई दी जाती है और साथ में काउंसलिंग की सेवाएं दी जाती है। कोशिश करते हैं उनके साथ घर वाले रहें ताकि उनको सपोर्ट कर सकें, उनके बारे में कुछ गलत चीज़ें ना बोलें कि तू नशेड़ी है, तू नहीं छोड़
1: ये
0: सकता।
1: बहुत कॉमन अब्यूज़िव बात है।
0: आसपास के एनवायरनमेंट को भी ठीक करना जरूरी है, अदरवाइज वो वापस रिलैप्स कर जाता है। और हर नशे के लिए दवाइयां जो है वो अलग-अलग है।

0: तम्बाकू के लिए अलग है, अफीम के लिए अलग है, अल्कोहल के लिए अलग है, सबकी मात्रा अलग अलग है, हर मरीज के हिसाब से तय की जाती है कितना विड्रॉल हो रहा है, उसको मैनेज करना होता है। काउंसलिंग सेशंस मोर और लेस एक जैसे होते हैं, बट कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज हो जाता है।
1: सर, लेकिन एक चीज मैं और जानना चाहूंगी। अब मान लीजिए कि जो 10% भी आप तक पहुंच रहे हैं, कहीं इसका एक रीजन ये तो नहीं, इस

0: एक रीजन ये तो नहीं इस गैप का कि लोगों को लगता है कि अगर मैं ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगा तो कहीं मेरा जो मेरी जानकारी है वो लीक ना हो जाए, क्या लोगों में मैं इस बात के लिए पब्लिसाइज ना हो जाऊं कि अच्छा मैं ये ड्रग एडिक्ट हूं या मैं नशेड़ी हूं।
1: बिल्कुल है, स्टिग्मा तो सबसे बड़ा कंपोनेंट है कि मुझे किसी ने देख भी लिया कि मैं तो एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी की लाइन में लगा हुआ हूँ।
0: एक नॉर्मल साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में भी लोग सामान्य प्रॉब्लम के लिए भी जाने में घबराते हैं कि अच्छा ये पागलों के डॉक्टर के पास इलाज कराने जा रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर रिलीफ सेंटर में या तो और ज्यादा दिक्कत
1: दिमाग में ये रहता है कि कोई मुझे देख ना ले या मेरे बारे में ऐसी जानकारी ना ले ले। स्पेशली जो थोड़े बड़े लोग होते हैं उनको तो ये भी परेशानी होती है कि किसी ने देख लिया तो बच्चों की शादी होगी या नहीं होगी, तो सब चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है और वो उनको इलाज लेने से रोकती है, इसीलिए ट्रीटमेंट गैप ज़्यादा है। और उसका एक ही इलाज है, अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस।
0: तो सर आप अवेयरनेस कैंप्स भी लगाते हैं या कुछ प्रोग्राम्स भी इस तरह के करता है एम्स जोधपुर?
1: एम्स जोधपुर हर डिफरेंट मौके पे कोशिश करता है समाज में जागरूकता फैलाएं, पब्लिक तक पहुंचने के लिए हम कम्युनिटी कैंप्स भी लगाते हैं
0: जी,
1: और एम्स में भी हम अलग से कैंप लगाते हैं, स्पेशल डेज पे कोशिश करते हैं, चाहे वो आकाशवाणी के माध्यम से हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, लोगों तक हम हमारी जानकारी शेयर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें।
0: बिल्कुल सर, तो जागरूकता ही सबसे बड़ा नशे से बचने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है, और अगर हम एक जागरूक नागरिक होने का फर्ज निभाते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी नशे से दूर रहते हैं। सर अब एक चलते चलते एक कॉमन सवाल, अगर व्यक्ति नशे को छोड़ देता है, चलिए एक मन में संकल्प कर लिया और कोशिश विड्रॉल सिम्टम्स से भी पार पा गया, लेकिन एक व्यक्ति अगर उससे दूर रहना चाहता है, एक ऐसी लाइफस्टाइल या उसकी दिनचर्या क्या हो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कि उसके दिमाग में इस स्टिमुलेशन का जो नशे के जरिए हो रहा है उसका ख्याल ही ना आए?
1: ख्याल तो आना लाजमी है, आता है, क्योंकि दिमाग में अगर कोई चीज बदलाव आ गए हैं, केमिकल बदलाव जो कि एडिक्शन में निहित होते हैं
0: जी।
1: तो जब भी हम कोई भी क्यू से मुखाबिक होते हैं, जैसे हमने कोई बॉटल देख लिया, किसी को फिल्म में पीते हुए देख लिया, स्मोक करते हुए देख लिया, या किसी रोड से गुजरे उसमें नशे की दुकान है, तो आपके ब्रेन में वो वापस रसायन स्टिमुलेट हो जाता है।
0: लेकिन सर कितनी भी चेतावनी वहां लिखी हुई होती है वो तो पढ़ने में पता नहीं, लोग उसको पढ़ ही नहीं पाते हैं, चाहे टीवी में भी कोई सीन आ रहा है तो वैधानिक चेतावनी नीचे लिखी होती है।
1: लोग तो ये भी कहते हैं कैंसर वाला तंबाकू दो, तो आप सोचिए कि कितनी ज्यादा इस चीज के लिए है लोगों में जानकारी, लेकिन ये है कि समय रहते उन चीजों को कोशिश की जा सकती है सुधारने की।
0: ये तो मतलब बिल्कुल नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई।
1: हाँ, ऐसा लोग करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं उनका एनवायरनमेंट में थोड़ा बदलाव हो, जैसे रोल प्ले के माध्यम से जो हमारे पास मरीज एडमिट होते हैं उनको हम वो सारी एक सुविधा उपलब्ध कराते हैं जिसमें रियलिस्टिक सिचुएशन हो कि आपका दोस्त आपको बैठा है, आपको प्रेशराइज कर रहा है, पीयर प्रेशर कर रहा है, आपको सुना कैसे बोलेंगे, ऐसी फला फला सिचुएशन में शादी का माहौल है, आप गए हो वहाँ पे बट उस जगह पे नहीं जाओगे, उसके लिए क्या करना
0: क्या
1: होगा।
0: सो
1: वो सारी सिचुएशन जो एक इंडिविजुअल के लिए रिलैप्स के लिए या उस नशे को लेने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारी सिचुएशन हम एक नोट करवाते हैं, उसके लिए एक इन्वेंट्री है, फिर उन सारी सिचुएशन का एक्सपोज कराते हैं।
0: फिर कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह भी उन पे कंडक्ट होते हैं?
1: साइकोलॉजिकल टेस्ट मेनली इस रिगार्डिंग होते हैं कि नशे से संबंधित लोगों में थोड़ा पर्सनैलिटी वाला इफेक्ट होता है, नोवेल्टी सीकिंग बिहेवियर होता है, थोड़ा इम्पल्सिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, तो उन चीज़ों को इवेल्युएट करना होता है, साथ ही साथ उनको ठीक भी करना होता है।
0: जी सर। सर एक चलते चलते एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन, ये हमारा ये जो सवाल है ये पूछा है कैलाश जी ने जोधपुर से ही, ये पूछ रहे हैं कि कई इनके जो परिचित हैं वो कई बार जब उनको नशे से दूर रखने की कोशिश की जाती है तो वो कांपने लग जाते हैं, शायद ड्रग का हैवी डोज होता है, तो उस कांपने से उनको कैसे बचाया जाए?
1: कांपना विड्रॉल का सिम्टम्स है, अगर आप किसी व्यक्ति को ठीक करना चाहते हो तो इलाज दिलाएं
0: जी,
1: ना कि उसको बंद कमरे में बंद कर दिया जाए या नशे से थोड़ा दूर
0: कर दिया। ये लिख रहे हैं कि हम तो हाथ पांव बांध के उसको मतलब पलंग से वो रख देते हैं क्योंकि वो
1: वैसा
0: मतलब...
1: वो इलाज नहीं है, वो तो अत्याचार है। आप किसी को भी बीमारी समझेंगे ना कि जैसे हमने बोला कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, आप उसको कंसिडर कर रहे हो कि बीमारी है उसको इलाज देना चाहिए। जब आप उसको लेबल कर देते हो कि नशेड़ी है, अफीमची है, दारूडिया है, तो आप उसको इलाज नहीं दोगे, आप उसको प्रताड़ित करके अलग बैठा दोगे, उससे उसकी दिक्कत आएगी, तो वो चीज नहीं करनी
0: है। तो सर अब चलते चलते हमारे सभी लिसनर्स के लिए आज के इस खास

0: पे एक संदेश।
1: नशा नाश है, विनाश है, कोशिश करें अर्ली एज से इसके लिए जागरूक रहें, अपने आप को तैयार करें कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अच्छी लाइफ को चुनें जिसमें अच्छे दोस्त हो, अच्छे लोग हों, अच्छा कैरियर हो, अच्छा माहौल हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो।
0: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम तो यही कहेंगे, रेडियो को अपना साथी ज़रूर बनाइए, उससे अच्छा दोस्त आपकी किताबें हो सकती हैं, लेकिन रेडियो आपका एक बहुत अच्छा साथी बनता है। तो आज इस हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर नवरतन सुथार, जो कि अतिरिक्त प्रोफेसर है मनोचिकित्सा विभाग एम्स जोधपुर में। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी राजेश लामरोड की, और हमारे साथ प्रोग्राम में अनाउंसर ऑन ड्यूटी थी सोनिया देवड़ा। खासतौर पर हमने डॉक्टर साहब से अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस पे नशा या नाश विषय पे बहुत सारे सवालों के जवाब जाने। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: धन्यवाद मैडम।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
2: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
1: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
3: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम जोधपुर इंफोटेनिया, जहां जानकारी भी होगी, मनोरंजन भी होगा और साथ होगा हमारे शहर जोधपुर की संस्कृति, कला और बातों का। कार्यक्रम में हर बार आपको मिलती है जानकारी की रोशनी और मनोरंजन का रंग।

102.1 MHz पर ये FM सेंसिटिव चैनल है। सवेरे के 11 बज चुके हैं और अब समय हो गया है कार्यक्रम जोधपुर इन्फोटेनिया का।

जोधपुर इंफोटेनिया कार्यक्रम को लेकर मैं हूं हाजिर, आपकी रेडियो दोस्त सोनिया। जोधपुर यानी सूरज की पहली किरणों से चमकता सनसिटी, नीले घरों से सजा यह शहर केवल अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपने इतिहास, मेहमान

नवाजी, खान पान और जीवंत संस्कृति के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। तो आज के इस कार्यक्रम में क्या है खास, तो करना होगा आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार। मिलते हैं इस गीत के बाद और बात करेंगे कुछ खास। और ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो जोधपुर में ही शूट हुआ था। चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे सूर्य नगरी जोधपुर की एक ऐसी धरोहर की ओर, जहां इतिहास, आध्यात्म और अद्भुत वास्तुकला का अनोखा संगम देखने को मिलता है। जी हां, आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो समर्पित है जोधपुर के प्रसिद्ध महामंदिर पर।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे महामंदिर की। जब यह बना तो शहर का सबसे बड़ा मंदिर था, इसीलिए इसे महामंदिर कहा गया। लेकिन धीरे धीरे आसपास लोगों के रहने के कारण पूरा क्षेत्र ही इसी नाम से जाना जाने लगा। और अगर बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण तत्कालीन महाराजा मानसिंह द्वारा 1810 ईस्वी के करीब बनवाना आरंभ किया गया था, और इसे बनने में भी काफी समय लगा। कहा जाता है कि लगभग 10 वर्ष लगे थे इसे बनने में। बात करेंगे इसके बारे में और भी, लेकिन उससे पहले ये गीत।

एफएम सेंसिटिव पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोधपुर इन्फोटेनिया। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे महामंदिर के बारे में, तो अब बात करते हैं मंदिर के बनने के पीछे की कहानी की। तो दोस्तों, कहा जाता है कि महामंदिर का जो मंदिर और आसपास के क्षेत्र में जो भी निर्माण हुआ, उसे महाराज मानसिंह ने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए बनवाया था। बताया जाता है कि जालौर दुर्ग में रह रहे मानसिंह ने जब दुर्ग छोड़ने का विचार बनाया, तो जलंधर नाथ पीठ के योगी ने उन्हें अगले 4-5 दिन तक यह किला न छोड़ने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि निश्चित दिन तक आपको यह किला नहीं छोड़ना है, तभी आप जोधपुर का आपको राज्य मिल जाएगा। इस तरह अक्टूबर 1803 में तत्कालीन नरेश भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद राजा मान सिंह को जोधपुर का राजा नियुक्त कर दिया जाता है।

जाता है। योगी देवनाथ के प्रति श्रद्धा अपनी व्यक्त करने के लिए राजा मानसिंह ने मेरठी दरवाजे से कुछ दूरी पर ईशान कोण में एक विशाल भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और अपने आकार और महत्ता के कारण यह मंदिर महामंदिर कहलाया।

0: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ,
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

महामंदिर की भव्यता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह मंदिर राजस्थानी शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के स्तंभ, दीवारें और प्रांगण बारीक नक्काशी से सुसज्जित है। यह पूरा मंदिर 84 नक्काशीदार खंभों पर टिका हुआ है। इस 84 स्तंभों और मंदिर की दीवारों पर 200 वर्ष से भी पुरानी योग मुद्राओं को दर्शाते हुए नक्काशी की गई है, जो भारतीय योग परंपरा को दर्शाती है। बात करेंगे इसके बारे में और भी, लेकिन उससे पहले ये गीत।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: महामन्य के मुख्य शिखर के अतिरिक्त अन्य कई छोटे छोटे शिखर हैं, जिनमें की गई उत्कृष्ट कारीगरी देखते ही बनती है। महामंदिर के प्रवेश से ही इसकी भव्यता देखने को मिलती है, जहां संगमरमर निर्मित तोरण द्वार के स्तंभों पर आकर्षक गरुड़ों की मूर्तियां बनी हुई है, जो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है। प्रवेश पोल पर एक गणेश जी की मूर्ति लगी है, जिसकी हर वर्ष गणेश चतुर्थी के दिन पूजा अर्चना की जाती है। महामंदिर नाथ संप्रदाय के आदि गुरु और योगियों के लिए समर्पित है तथा इनके आराध्य शिव हैं, तो यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर बना है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है।

नाथ संप्रदाय के इस मंदिर में कई शिलालेख मौजूद हैं। इसकी प्राचीर पर दुर्ग की तरह तोप और बंदूकों के स्थान बने हुए हैं। महामंदिर के विशाल परकोटे में तीन पॉल बनी हुई है, पहली पॉल, दूसरी पॉल और तीसरी पॉल। इन्हें आज भी इन्हीं नामों से जाना जाता है। साथ ही नाथ संप्रदाय के लिए विशेष रहने का स्थान नाथ जी का आसन भी बनवाया गया था।

में यहाँ रहने वाले लोगों के स्थान को आज भी इसी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक जल स्रोत झालरा बेरा भी बनवाया गया था, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को कभी भी जल की कमी महसूस न हो। और आज भी यह झालरा बेरा पूरा जल से भरा हुआ है। साथ ही पास में राजा मान सिंह जी ने मानसागर तालाब का निर्माण करवाया था, जहाँ वे गुरु आयस देवनाथ के साथ नौका विहार करते थे। और ये जो मानसागर तालाब है, वो आज मानसागर पार्क के नाम से जाना जाता है।

तो दोस्तों आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं महामंदिर के बारे में। हालांकि 200 वर्ष से भी पुराने इस मंदिर और इसके परकोटे और प्राचीरों को काफी नुकसान समय के साथ हुआ, फिर भी इसके रखरखाव का भी सरकार ने ख्याल रखा और समय समय पर उसको किया भी। यहाँ पर उकेरे भित्ति चित्र और नक्काशी आज भी अपनी विरासत को संजोए हुए हैं। आज भी यह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप भी अगर यहाँ नहीं गए हो, मंदिर को नहीं देखा है, तो जरूर जाइएगा और देखिएगा कि कितना खूबसूरत बना हुआ है।

तो दोस्तों आज के जोधपुर इन्फोटेनिया कार्यक्रम में हमने जोधपुर के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व से भरपूर महामंदिर की जानकारी प्राप्त की। यह मंदिर अपनी अद्भुत स्थापत्य कला के लिए विशेष पहचान रखता है और कार्यक्रम के अंत में यही कहना चाहेंगे कि अपनी धरोहर को जाने समझें और उसे संजो कर रखें। इसी के साथ आज का जोधपुर इन्फोटेनिया कार्यक्रम यहीं तक। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सोनिया। दीजिए कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

0: FM 102.1 MHz पर ये FM सनसिटी चैनल है। इस समय सवेरे के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की

0: सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, यादों की महफिल।

कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

शैलेंद्र के बोल थे एसडी बर्मन की तर्ज फिल्म का नाम गाइड। यादों की महफिल विविध भारती से। अगला गाना आनंद बख्शी की आवाज में, उन्हीं की रचना है, फिल्म का नाम बालिका वधू।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। अशोक भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजें। गुलशन बावरा, राहुल देव बर्मन, सत्य पे सत्ता।

आनंद बख्शी के बोल थे रेशमा की आवाज, फिल्म का नाम था हीरो। जावेद अख्तर की बोल, अमिताभ बच्चन की आवाज शिवहरी की तरह से, फिल्म का नाम सिलसिला।

इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए सुरीला सफर।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम में हम एक इबारत, एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और वो टेक्स्ट कार्यक्रम के काफी पहले पोस्ट कर दी जाती है, आज भी कर दी गई है। तो आज की इबारत आपको बता दें, बदरा की गागरी में ढेर सारा पानी, मन को रंगीला करे बारिश की कहानी, इन हवाओं में चलो उड़ चले कहीं, ना आसमां का पता हो ना दिखे जमीं, ऐसे मौसम में जाने क्या क्या याद आए, कभी मन मुस्कुराए कभी आंख भर जाए, दिन में एक बजे जब मिलेंगे हम, गीतों का हाथ पकड़कर साथ चलेंगे हम। वही इस टेक्स्ट को पढ़कर बहुत सारे श्रोताओं के रिएक्शंस हमारे पास आ गए हैं और इन तमाम रिएक्शंस को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश भी करेंगे। तो एक दूसरे के साथ इस कार्यक्रम का सफर हमें आगे तय करना है। एक श्रोता है जिन्होंने कविता का जवाब कविता से दिया है। वो लिखते हैं, इबारत की इजाद वाले स्वयं पधारे हैं, आज सफर एक कारवां के भाग्य न्यारे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के सुरीला सफर में गानों की बौछार होने लगी है, जो बारिश की बूंदों की तरह टिप टिप कानों में एक मधुर आवाज घोल रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट। एक श्रोता है जिनका अंदाजा है कि आज तो गागरी वाला मशहूर गाना बजेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि और कोई गीत हो ना हो लेकिन ये गाना जरूर होना चाहिए कि रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी से वो पहली मुलाकात, तूने और रंगीले कैसा जादू किया, फिर से आई यो बदरा विदेशी और जब जब बहार आई। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज फिर बारिश की कहानी में पानी, कैसा है आपका रंग जिंदगी का शोर, बारिश के तारों पर आई बारिश, याद है वो कागज की नाव,

वो बारिश का पानी। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने बाकायदा प्रॉपर लिस्ट भेजी है, यानी इस इबारत में जितने शब्द हैं उन शब्दों पर गाने। और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर गाने मैच कर रहे हैं। जो शब्द इन्होंने चुने हैं, बदरा, गागरी, पानी, मन, रंगीला, बारिश, हवा, उड़ आसमान जमीन, ओ हो हो, 20 शब्द चुन लिए हैं। क्या बात है, क्या मेहनत है, सलाम। और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों पर अपनी बातें कही हैं। आप सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी इस गाने के साथ कार्यक्रम का आगाज। क्या आपका गाना हमारे गाने से मैच किया? पर हाँ, एक और बात, आपके शहर में बादल सिर्फ छाए हैं या बरस भी रहे हैं? और जब छाते हैं बदरा, आपके मन में आती हैं कौन सी बातें? जल्दी से विविध भारती के फेसबुक पोस्ट पर जाइए और कीजिए कमेंट। विविध भारती का फेसबुक पोस्ट खोजने के लिए फेसबुक पर सर्च बॉक्स में लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, फिर पहुंचिए सुरीला सफर की पोस्ट पर। देखिए बादल छा गए हैं, कचरा घुलने लगा है, घटाएं बरसने लगी हैं। इस गाने में महिला स्वर किस गायिका का है ये बताइए।

ये सुदास के साथ हेमांती शुक्ला की आवाज बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब दिया है और ये खुशी की बात है क्योंकि कम चर्चित गायिका को अगर आपने पहचान लिया इसका मतलब आप फिल्म संगीत के सही कदरदान हैं। पहला ही गीत बहुत खूबसूरत है, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने ये रिपोर्ट की है कि यहां सिर्फ बादल छाए हैं, बारिश का इंतजार है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब है कि आपका गाना क्या है, कहां से छाए बदरा, हमें मालूम है समुद्र से आए बदरा। एक और श्रोता है जो कहते हैं, कविता में कहती हैं, बादल के छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हैं हमारे शहर के आसमान में, जाने कब एक होकर बरसे, जाने कब प्यास बुझे सूखे अरमान की। भाई कविता करने की इन्होंने कोशिश की। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि मुझे पता था कि ये गाना बजेगा, ये मेरा पसंदीदा गाना है। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं, सफेद बादल छाए हैं बिना पानी वाले, जाने कब होगी बरसात। एक और श्रोता है जिन्होंने कविता लिख भेजी है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन की ये कविता, मजा आ गया आपने कविता लिखी। फिलीपींस से एक श्रोता का मैसेज ये है कि मौसम खुशगवार है, सूरज देवता आंख मिचौली खेल रहे हैं और थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। एक और श्रोता अपने खेत पर बुवाई करते हुए सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहां बादल शादी में मुंह फुलाए फूफा की तरह घूम रहे हैं, नजर तो आएंगे पर किसी काम के नहीं है। क्या बात है भाई, आपकी इस बात और इसकी इस बात में जो व्यंग्य था उसमें बड़ा मजा आ गया है। एक और श्रोता है जिन्होंने रिपोर्ट किया है, तापमान 30 डिग्री, ठंडी हवा चल रही है, बादल छाए हैं। देखिए भाई, देश भर के मौसम का जो हाल है वो यहां पता चल जा रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जब गर्मी बढ़ती है तो बारिश 2-3 दिन बाद हो जाती है, लेकिन अब 3 दिन हो गए बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि घटा छाई है, किसी भी मिनट बरस सकते हैं बादल। तो ये है हमारे तमाम श्रोता।

ताजू अलग अलग शहरों से अपने शहर के मौसम को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और उसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि उनकी तमन्ना किस गाने को सुनने की है और उनका गाना और हमारा गाना मैच हो रहा है या नहीं। ये तमाम बातें यहां चल रही हैं और उसके अलावा एक और चीज चल रही है, वो है तेज हवा। और हवाओं से मुझे पतंग की याद आ गई। चलिए आज पतंगबाजी से जुड़ी हुई कुछ यादें शेयर करें। जल्दी से मोबाइल उठाइए और कमेंट कीजिए पतंगबाजी से जुड़ी जो आपकी सबसे शानदार याद है वो लिख भेजिए। इस गाने के फौरन बाद पतंगबाजी वाले सारे कमेंट पढ़ूंगा मैं। तो शुरू हो जाइए, किसने किसकी पतंग काटी, किसने मांझा सूता, किसने पेंच लड़ाई और किसने बाजार से ताव लाकर पतंग बनाई।

0: गौरी गौरी मंगल पावन बेला, आज के इस घनघोर कार्यक्रम में आप सभी सखियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपकी सखी हंसा कुमारी वैष्णव और हमारे सागे है आली सखी भावना लखारा। तो भावना जी, आपने हमारी तरफ से गणमान राम राम।
1: बिल्कुल हंसा जी, आपने मारा गणिमान राम राम और गणगौर प्रोग्राम होनन वाली मारी प्यार प्यारी सख्या ने भी आप रही सकी भावना लखारारा गणिमान राम राम। तो वेना हताया तो आपा करा लाई पों ब्यू पहले होना एक प्यारा सो गीत।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, राणो जी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।

0: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
1: केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, आ केवल गीतरी एक पंक्ति कोनी है बल्कि लोगों रे हृदय री भावना है। राजस्थान में लोगों ने अतिथि सत्कार री एडी परंपरा पूरे विश्व में विश्व मिसाल मानी जावे। 18 लोग स्वयं कम खावे पर अतिथि री थाली में संकोच कोनी करे। तो से भावना तो कहवे नी के 18 जी की मेहमान नवाजी है, बहुत ही मानी जोड़ी है। इन वास्ते देश विदेश जगह मेहमान है, विदेशी पावना है, अपने देश में आवे और 18 संस्कृति रो आनंद ले जावे।
2: बिल्कुल लेवे। और कह नी की राजस्थान दी मेहमान नवाजी और पावना रे प्रेम रू जिकी खातिरदारी करी जे नी, वह अपने कई फैला री आ परंपरा चाल रही है। और अपने अटे मेहमान ने तो कहनी कि भगवान रे जिया मान्या करे।
1: बिल्कुल,
2: यानी आवते ही मान सम्मान आदर माचा माथे बिठाया करे है। और बड़े ही अपने सुवर्ण भोजन कराया करे है।
1: बिल्कुल,
2: अगर वे नी जिमे नी तो वे ना और भी अरे लोसा और जिमो लोसा।
1: बिल्कुल, आप बात तो अपने राजस्थान री खास है कि अगर आप बात करा भोजन री तो राजस्थान रे मेहमान नवाजी माने और तो एक न्यारो रंग दिखाई देवे। के 18 पहला तो भोजन जेके मायने दाल बाटी चूरमा केर सांगरी गटेरी सब्जी बाजरे री रोटी लसुन री चटनी मालपुआ घेवर इतना नाम लेती भावना मार तो मुंडे में पानी आ रही हो।
2: बिल्कुल अजय, और जदे देखो हंसा जी अपने घरे मेहमान आवे नी तो देखो की बाजोड लगान घर वाला जिका भी है नी जगह चार पांच जना बिना सागे बैठिया खरे जिमन वास्ते। और जी में वो ही कवो देवे वो के अरे मारे पेट भर गयो तो भी बिना केन के गड़ा तानी जब तक नहीं पे भरी जाए नहीं जब तक बिना उठन को नहीं दिया।
1: बिल्कुल भावना, सही बात कही आप। और विशेष कर जब मेहमान और मायने अपने जवाई रो पग फेरो हुए और बारे सागे जब जवाई रे सागे मित्र मंडली या पच बारे भाई भतीज आ जावे पच तो कहना ही कही लो सगा जी एक कवो और लो, नहीं सगा जी गुलाब जामुन तो हाली खाए को नहीं, नहीं सगा जी घेवर तो हाल तक खाए ही को नहीं। और जब तक जिमा वे जब तक वे पूरा नचो नहीं जाओ मन रे मायने की भाई हाँ मैं तो सगा जी धाप गया वाला गड़े तानी धाप गया वाला। तो आज जो अपने राजस्थानी संस्कृति है कि थोड़ा और खालो सा तो आ एक अनूठी और बहुत ही निराली परंपरा है।
2: और जदे आपने तो ध्यान है कि अबार कई चाले है कि एक जदे जमई दूजी बार आवे पनी जन पाछा आए पाउन शेरी मत आया करे जदे कई करे कि एक काच रे बाजोट होया करे काच लगड़ो हुए चारों में लकड़ी पूरो यूं बंद रिया करे है विन थाली ने कई करे है जिकी वे साड़े हुए थाली ने विन महीने बंद कर दिया करे। और अब पचे के वे के जीजा जी इन्हें
1: हमें जीवो
2: अब इन्हें थाली ने ढूंढो का कट्टो खुले लो पचे थे जी।
1: बिल्कुल,
2: तो इन्हें थाली ने जमे हुए वो हो दिया करे हो दन विन कुट्टो कट्टो ये वटो खोलन पचे विन जीमिया करे अब एक परंपरा है।
1: बिल्कुल सही बात बोली भावना। तो बातें तो खूब करा ला आप सुनाई प्यारो सो गीत।

0: भावना,
1: हाँ
0: जवाई ने तो जिमा दिया। हमें अपना जेठ जी भी बाढ़ जो है कि कुछ मिष्ठान नहीं तो कहीं ठंडो जल ही पिला दो।
1: बिल्कुल देखो
0: तो अपने जेठ
1: कि
0: महीने जो कुछ चल रही हो रही
1: हाँ
0: भावना, तो
1: हाँ
0: जेठ महीने में अपने एक परंपरा है कि जेठ जी ने ठंडो पानी पिलाया करे है।
1: बिल्कुल। और आज की परंपरा है ना, पारंपरिक परंपरा है, कई टाइम से चलती आ रही है और आज भी अपन देखा नहीं कि अपने नई पीढ़ी तनी आप परंपराएं बा जिंदी है के देखो कि अब आ देखो जेठ महीनो चाल रही हो, घनी अपा देख ही रिया हाँ घर में उच्छ भी हो रही है के चार पांच जनिया बेनी अपनी मिल गीत गावती गावती और माथा माते वो पानी रो मटको ले हाँ जेठ जी रे घरे ली जावे और पछे जेठ जी ने भी इस पानी पिलाया करे और सूट कपड़ा
0: बिल्कुल।
1: भी दिया करे हैं। और कह नहीं के हंसा जी ओ जो को महीनो है वो हगड़ो गर्म महीनो विया करे है, जेठ रो
0: बिल्कुल।
1: महीनो है
0: हाँ
1: और इनमें कही है के तेज गर्मी भी विया करे है, लुआ भी बाजिया करे है। तो एडर महीने कही करे कि आ परंपरा तो है ही है पर इन साथे और भी कई एड़ा का जिया कि देखो कि घर जका बड़ा बुजुर्ग है वेने जैसे कि विशेष कर अपा जेठ ने ले ला बार जेठ रो महीने है तो याने कही करे कि वेने नी मान सम्मान देवे और वेने ठंडो जल पिलावे शीतल जल पिलावे केवे कि इने गर्मी रे मौसम रे महीने अपर काल जो है वो ठंडो
0: ठंडो
1: रहे
0: रिया
1: हैं।
0: करे बिल्कुल। और भावना जी आ बात तो है कि जैसे अपने परिवार रिश्तों में है, जो रिश्ता रहा महीने किन प्रकार जो है अपने निभाया करो, साथ ही देखो नहीं कि ओ महीने जो को इतो गर्म हुआ करे कि इन
1: हाँ
0: महीने में और भी जैसे रिवाज है कि लोग जो है भामाशा लोग जो है जगह जगह माथे प्याऊ लगावे या जल
1: हाँ
0: जल रहा जो है प्यासे ने पानी पिलाओ, क्या बड़ो पुण्य रो काम माने जाया करे है। आप देखो कि रसाई लोक जीवन मायने इन कार्य रो बड़ो महत्व है और इन लोक परंपरा रे अनुसार गरीब बहुआ भी और जो जेठ ने पानी पिलावनी परंपरा
1: हाँ
0: है बड़े तरीके से निभावे और जेठ जेठानी दोनों ने बड़े सम्मान के साथ है जी की आ परंपरा है और निभाया करे है। और साथ में देखो कि बार ईद मास महीनों भी चालियो हो तो उन टाइम
1: हाँ
0: भी बहुत सारी अड़ी परंपरा थी जी की अपने संस्कृति में अपने ने निभाई गई थी। और काले जैसे आप एकादशी मनाई तो एकादशी में निर्जला एकादशी थी जिन बजे वो पे जल रो जो पानी रो है बड़ो
1: दान
0: महत्व
1: करियो
0: जी
1: हाँ बिल्कुल
0: बिल्कुल और
1: मैंने
0: इन महत्व रियो है। और जैसे कि इन महीने रमाइने है छाछ है साथे साथे शरबत है और ठंडे में
1: हाँ
0: जो भी
1: पेय
0: चीज़
1: पदार्थ
0: है
1: है जगह
0: हाँ
1: हाँ
0: कहीं ठंडाई है ऐसा सब पीवने भी परंपरा है और रिश्ते नातों में पिलावने भी परंपरा है।
1: हाँ देखो कि हंसा जी खाली परम

0: परंपरा के सीमित को नहीं है, बल्कि जिकी अपन आउन वाली नई पीढ़ी है नी, बिने ओ सिखायो जावे कि घर रे बड़ा ने की कर मान सम्मान देन हो, बाने की कर सेवा करनी, बाने की कर खातिरदारी करनी ही, वो इन तरीकों जका बच्चा है बेने आपा बताया करा। हाँ तो केवे नहीं के इन गर्मी रे महीने मिन खारो तो पानी रो आपा ध्यान रखा ही। हाँ बिरे सागे सागे पशु पक्षी और जीव जानवर रो बीरो भी अपने जरूर
1: बिल्कुल
0: ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल।

बिल्कुल, देखो जी जिठानी मारी चतुराई तो क्या नहीं कि पहले रे टाइम रे जकी दादी और नाने आई नी बे अड़ी चतुराई देखती ही कि आज की चाल रही है अपने बहन बिना चालू पहचान लिया करती कि किन तरह हूँ चाल रही यार की करे यार कौन है बे अपन बता दिया करती ही कि यूं है ना। तो देखो कि ये हंसा जी उनाड़ो चाल ही रियो है और इन उनाड़ा महीने ही अपनी जकी घरी जकी दादी नाने ही और है भी तो वे एड़ी चुकी चुकी बातें बताती अड़ा चुका चुका नुस्खा बताती अपने कि अपने कह नहीं कहने उनाड़ा महीने भी अपने शरीर ने ठंडक दे दिया करती ही है कई अड़ी समस्या वे है बे भी अपन बच सकता हाँ वह भी अपन को नहीं होती ही। तो जदे ये उनाड़ा आओ तो नहीं तो यू कहता कि फ्रिजरो पानी है वो कोनी पीणो है मटकीरो पानी पीणो है जको अपने ठंडक तो देवे ही है बीरे हाथ।

0: सखियां अपने समाज में समय समय माते कई समाज सेवी होया है जो समाज में बहुत चौखा चौखा काम करन समाज रे उत्थान रे वास्ते सुविधाएं उपलब्ध कराई है व्यवस्थाओं कराई है। तो आज अपने फोन रे माध्यम से जुड़िया है समाज सेवी सांगी दान जी जसो बात करेला भावना लखारा
1: आकाशवाणी रे एन गणगौर कार्यक्रम रे प्रांगण रे मायने सांगी दान जी आप रो घणे मानो स्वागत है आप रे घणे मानो राम राम है।
2: राम राम साजी।
1: तो संगीतान जी सबों पहला तो मैं थांसु वो सवाल पूछूं कि और जो के डिजिटल शिक्षा रो ज्ञान है इरो विचार आपने कठे सु आयो
2: भावना जी आपने मैं बताना चाहूं जो की नींव भी हमें इसी विचारों के साथ रखी कि हमारे आसपास के युवा राजस्थान के युवा कहें या पूरे देश के युवा कह सकते हैं जिनसे बातचीत करने पे पता चला कि

0: बहुत सारे युवा रोजगार को लेकर ललायक रहते हैं, उत्साहित रहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले। मैं या हमारी संस्था ने ये सोचा कि क्यों नहीं हम इन लोगों से बातचीत करें, तो बातचीत करने पे पता चला कि बहुत सारे युवाओं के अंदर कौशल यानी शिक्षित शिक्षण प्रशिक्षण का बहुत अभाव पाया गया। यानी वो जो नौकरी के लिए जो उत्साहित युवा, उनके अंदर किसी भी प्रकार के कोई टैलेंट या विशेष योग्यता नहीं थी जिस वजह से उनको कोई नौकरी का मौका दे सके या अवसर दे सके।
1: जी जी,
0: इसी देह को डिजिटल सारथी, जिसको हम कंप्यूटर क्रांति कह सकते हैं, कंप्यूटर क्रांति को लेकर के हमने ये कार्य शुरू किया, जो कि धीरे धीरे चलते हुए अपने आप में कारवा बनता चला गया। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक उसी तरह हमने छोटे छोटे नवाचार करते हुए विद्यालयों के माध्यम से, स्कूल्स के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से युवाओं को जोड़ना शुरू किया और हमारे विचार जो हमारा संकल्प था वास्तव में साकार होने लगा। धीरे धीरे हमने
1: अठेसवीं आप शुरुआत करी है ना। जी जी, तो देखो कि आज रे टाइम रे मैंने डिजिटल शिक्षा रो महत्व भी गणे है, तो आप रे हिसाब का ही महत्व है डिजिटल शिक्षा रो।
0: देखो डिजिटल सारथी ये कंप्यूटर क्रांति का हिस्सा है। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार की जो क्रांतियां हुई है अपने अपने क्षेत्रों में, हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति, जिसने उद्योग के क्षेत्र में अचानक परिवर्तन को बदलाव के रूप में देखा, उसी प्रकार जो कंप्यूटर क्रांति है वो वर्तमान में कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी, उसी प्रकार हमें रिजल्ट इंस्टेंटली चाहिए, तुरंत परिणाम चाहिए, 100% एक्यूरेस चाहिए, वो सारे इस कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव है। तो हमारी इस डिजिटल सारथी ने हर जगह पे तुरंत रिजल्ट, तुरंत परिणाम और इस प्रकार के नवाचार कार्य करने के लिए कंप्यूटर क्रांति और डिजिटल क्रांति बहुत जरूरी है।
1: जी, और देखो कि ग्रामीण क्षेत्र राज्य का युवा है वे डिजिटल ने जाने बैण सशक्त करो, तो बैण सशक्त बनाने वास्ते रे आपका ही प्रयास करिया करो हो।
0: जी, हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए। इसमें हमने सबसे पहले उनको जागरूक, देन प्रशिक्षण और देन स्वरोजगार की ओर उनको अग्रसर किया है, जिसमें हम लोग विद्यालय, कॉलेज, स्कूल, अन्य ऐसी सोशल वाली जगह पे जाकर के हमने एक्टिविटीज की है। उस एक्टिविटीज के माध्यम से हमने वहाँ पे छोटी सी अवेयरनेस कार्यक्रम करके उन्हीं में से तुरंत क्विज कंपटीशन करके प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्राप्त स्थान प्राप्त करने वालों को हमने निःशुल्क प्रशिक्षण दिया है।
1: जी जी,
0: निःशुल्क प्रशिक्षण के उपरांत तो उनके खुद के स्वरोजगार केंद्र खोल करके हमने विभिन्न आईटी कंपनीज के साथ में, विभिन्न सीबीसी के साथ में और अन्य जो कि सेवाएं देने वाली संस्थाएं हैं उनके साथ टाई अप करके इनको स्वरोजगार के केंद्र खुलवाए हैं, जिसमें लाइक ई मित्रा क्योस्क, बैंक बीसी, बैंक सखी, इस प्रकार के खूब सारे नवाचार गांव के लोगों को, वहां के युवाओं को उनके आसपास में ही रोजगार देने के लिए उनका खुद का स्वरोजगार केंद्र खुलवा करके हमने ये कार्य को प्रारंभ किया और हमने आज हमारे सपने को हम साकार करने जा रहे हैं।
1: जी, और देखो कि संगीतान जी, आप सुधार गरसु जी की बालिका आयोडी है, बानो भी आप शिक्षा और पुनर्वास री व्यवस्था कराए करो हो, तो वह काई व्यवस्था कराए करो वो अपनी सुनने वाली बहन ने बताओ।
0: बालिका सुधार गृह के लिए अना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे जो न्यायिक कमेटी है
1: जी,
0: जो बाल किसमें लिप्त रहकर के वहाँ नारी सुधार गृह के अंदर, बालिका सुधार गृह के अंदर जो भी बहने आई है, वो बहने वापिस इस प्रकार की अपराध लिप्तियों में जाने अनजाने संलग्न नहीं रहे।
1: जी जी,
0: इसलिए वहाँ की कमेटी, वहाँ के मैनेजमेंट और न्यायिक महोदय ने ऐसे संस्थाओं के साथ में ऐसे समाज सेवा लोगों को आह्वान करके उन्होंने कहा कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। वहाँ नारी निकेतन के अंदर, सुधारा गृह के अंदर रह रही बालिकाओं और महिलाओं के लिए हमने कंप्यूटर प्रशिक्षण आयोजित किए और उस प्रशिक्षण के दौरान उनको ऐसा स्वरोजगार, यहाँ से निकलने के बाद में उनको स्वरोजगार मिले।
1: जी जी,
0: इसी भाव के साथ में उनको तैयार किया।

0: और माननीयों की देख रेख के अंदर वो बालिकाएं कॉन्फिडेंस से कह रही कि हमने ये जो सीखा है हम जाकर के हम हमारा खुद का कंप्यूटर का स्टार्टअप शुरू करेंगे, हम खुद का स्वरोजगार के अंदर प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा उनका महिलाओं का।
1: अच्छा अच्छा और बालिकाओं ने इरे साथे और कई रोजगार अवसर है वो भी उपलब्ध कराए करो कहीं आप।
0: देखो भावना जी, मैं आपने आपने सवाल रहे जवाब रहे माते बताना चाहूँ कि डिजिटल साथी के सेक्टर में इन्हें कार्य कर रही है, रोलर साथी, जीवन दृष्टि, सड़क सुरक्षा, ये इस प्रकार के विभिन्न इनिशिएटिव प्रोजेक्ट चला रहे हैं। उन प्रोजेक्ट में देखा जाए तो हमारा डिजिटल साथी सबकी नींव रही है, तो जो भी महिलाएं जो भी बालिकाएं हैं रोजगार के लिए अवसर तलाश रही है उनको हम लोग शॉर्ट लिस्ट करके

0: रोजगार के लिए अवसर तलाश रही है, उनको हम लोग शॉर्ट लिस्ट करके देन उनको उनके घर के नजदीक वर्क फ्रॉम होम इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसमें टेलीकॉलिंग है, डेटा मैनेजमेंट है और तमाम प्रकार की जो सामाजिक सरोकार की जो स्कीमें हैं सरकार की, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो योजनाएं आम जन तक पहुंचे, इसके पुण्य प्रसार के लिए भी हम लोग उन बालिकाओं को, उन महिलाओं को जो घर से कार्य करना चाहती है, जो टेलीकॉलर बन के कार्य करना चाहती है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर बन के कार्य करना चाहती है, जो ई मित्र सेवा केंद्र के रूप में बैंक सखी बन के कार्य करना चाहती है, ऐसी सैकड़ों महिलाओं को अमरकार के रोजगार सेमिनार के माध्यम से जोड़ करके उनके स्वरोजगार केंद्र स्थापित करने में बहुत सारी मदद।
1: बहुत ही बढ़िया, बालिका और वास्ते बहुत ही अच्छी चौकी सेवा कर रहे हो सा। और देखो कि आप सड़क सुरक्षा साढ़ती रे रूपरे महीने भी काम कर रहे हो, तो कई कार्य रहे हुए आप लोगों ने किन तरह जागरूक करिया करो हो, वो भी बता दियो सुनने वाला ने।
0: सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, यानी जीवन बहुत अनमोल है, किसी का लापरवाही के अंदर जीवन नहीं चला जाए, इस हेतु जागरूकता बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में हमारी संस्था ने सड़क सुरक्षा सारथी प्रोग्राम का डेवलप किया। हम जहाँ भी प्रस्तुति देते हैं, विद्यालयों के माध्यम से, ऐसे छोटे मोटे सेमिनार के आयोजन के माध्यम से, आजकल के युवा एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ में बाइक का हैंडल और बिना यातायात के नियमों की जानकारी वो अपनी हवाई जहाज दौड़ाते रहते हैं, वो आखिर कहीं कहीं दुर्घटना के शिकार होते हैं।
1: जी जी,
0: तो
1: बिल्कुल,
0: हम ये चाहते हैं या हमारी संस्था ये चाहती है कि हर व्यक्ति जागरूक हो, हर माता और बहने अपने बच्चे, भाई, युवा साथी को ये बुलाओं दे के भेजे कि आप अपना जो शरीर का ध्यान रखना, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल की बातें नहीं करनी है, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे स्लोगन कटआउट जगह जगह पे सेमिनार करके हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं।
1: जी, बहुत ही चोको काम कर रहे आप लोग, है नी। आप किन तरह कर सका सड़क सुरक्षा, तो संगीता जी बहुत ही चोखी आप समाज ने सेवा दे रहे हो, और आज जका भी श्रोतागण सुन रहे हैं वे भी बहुत चोखी जानकारी ली है, और आज आप अपरो अमूल्य टेम निकालो, इन वास्ते घने मानो धन्यवाद, और आपने राम राम।
0: धन्यवाद आपने भी और आकाशवाणी पूरी टीम ने कि आप हमारे संस्था की बात जन जन तक पहुँचाने बीचरी कड़ी बनाला, जिस प्रकार है जो अपरा दूसरा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आपरी मनरी बात, यानी जो बुढ़ावन आम जन तक पहुंचाने वास्ते आकाशवाणी एफएम और रेडियो रोज प्रयोग करे, वास्ते आपने बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी जो की सामाजिक सरोकारी बात घर घर आम जन तक, बहना, युवा और बेरोजगार साथियों तक पहुंचे और वे लाभ लेवे। धन्यवाद और आभार। राम राम।
2: अमारा पा बात सुनी भावना लकारारी समाज सेवी सांगीदान जी सो, जीरी संयोजन और प्रस्तुति ही राम निवास ज्वेलरी सख्या। अब सुना पा एक प्यारो सो गीत।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: तो हंसा जी आपने ध्यान है कि 1 जुलाई से टावरियारी जी की स्कूल है बा खुले नाली है और छुट्टियां भी है जो कि पूरी हो नाली जी है। तो आपने ध्यान है कि पूरी छुट्टियां ही टावरिया तो घूमिया है फिरिया है और मजे करिया है। पर अबे जिको ओ टाइम है नी 4-5 दिन जी का भी बचिया है बिन वास्ते अपने थोड़ो सी सजग हो जाना टावरियार वास्ते अपने कहने के सावधान हो जाओ है।
6: बिल्कुल।
5: अबे सुई कही करनो है अपने की थोड़ो थोड़ो टेम है टाबरियन कहनो के एक बार किताब लेन जरूर बैठे हैं या थोड़ो इन्हें वर्क दे देनो कि हाँ इतो काम है तन इतने टेम रे महीने करनो है। तो वाकई है कि धीरे धीरे 4-5 दिन हफ्ता भर में कही है कि टाबरिया आदत पड़ जा। अगर आप देखो एक काम नहीं करा ला तो एकदम टाबरिया स्कूल जावे ला और विने कही लागेला बोझ लागन लागेला। एकदम स्कूल जाता ही 5-6 घंटा जका भी स्कूल में रहना है एकदम वेना बोझ लागेला तो बेने वा टेंशन भी होन लाग जायला। तो अपने माता पिता ने जकी भी ये महीना 1.5 महीना टाबरियारी आदत पड़ी ओड़ी है बेने अपने जरूर बदलनी चाहिए। जी आके देख लो कि टाबरिया देखो इतना टाइम तो कदे सोया कदे उठिया वो अब ध्यान भी कोनी दियो है नी कि छुट्टिया है कोई नहीं टाबरिया चो रहे था पर अबे सुई वेना सोना रो टाइमिंग और उठने रो टाइमिंग कही है बीरो अपने ध्यान रखना चाहिए लिमिट होनी चाहिए। अगर देख लो कि बच्चा देर रात तानी फोन देखे भी कोने और देख भी रहे है नहीं तो वेने आदत है जी कि मोबाइल कम कराने रखने चाहिए।
6: बिल्कुल। मोबाइल तो देखो कि देखने देने नहीं चाहिए छोटा बच्चा हुआ तो बारे आंखें माते भी असर बड़े मानसिक पटल माते भी असर
5: पड़े। छुट्टियां

0: लंबे समय तक टाबर है जो दादी नानी कने भी रिया है खेलिया है कूदिया है तो बाने कही है कि पाछो पढ़ाई और प्रेरित करना थोड़ा दूर हो जाए टाबर ने भी दूर लगे हर बच्चा अलग अलग है कई बच्चा ने तो स्कूल खुलने इंतजार भी रहे नया नया किताबा खरीदे बस्ता खरीदे तो शौक भी आवे तो माने साथ अभिभावक ने रहना चाहिए और माने प्रेरित करना चाहिए नई नई किताबा दिखानी चाहिए नयो नयो ज्ञान देना चाहिए कोई बच्चा तो नवी स्कूल में भी जा रहा है तो माने भी अच्छे से मोटिवेट करना चाहिए तो अभिभावक ने सब धीरे धीरे धीरे धीरे 5-6 दिन 8 महीने थोड़ा बच्चों ने स्कूल की तरफ प्रेरित करने वास्ते ऐसी बात करनी चाहिए।
1: और अंसा जी की देखो की टाबरिया ने स्कूल जगह नया दोस्त है या कोई शिक्षक है वे बारे में अपने सकारात्मक बात करनी चाहिए भी हूँ कही होवेला की बच्चा रे मन में भी सकारात्मक भाव आवेला
0: बिल्कुल सही कह रहे हो
1: तो देखो नी की बच्चों री सफलता केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं विया करे बल्कि अपने माता पिता रो सहयोग और अनुशासन भी अपने जानी जा करे है
0: बिल्कुल

0: सुरक्षा मेरा अधिकार है।
1: तो हंसा जी, अपा ई प्रोग्राम रे महीने कीन की एक खट्टी मीठी रेसिपी जरूर लेना आया करा हाँ। तो आज अपा कई रेसिपी लेना है बता दियो।
2: भावना बिल्कुल के आज मैं जी की रेसिपी लाई हूँ। फिर देखो भावना सुबह सुबह उठो गया पे
1: हाँ?
2: कई बार अपने कालज में दुखन हुए
1: बिल्कुल भी आ करे
2: तो आ दुखन अड़ी हुए के मन करे के ठंडो ठंडो की कालज में जावे वह दुखन मिटे। तो आज मैं अड़ी रेसिपी लाई हूँ जेको अपने जी की कालज री जलन है दुखन है बाबिन सो शांत वेला। तो अपने देखो हमारे पेट ने माते बेल रहा फल बहुत लाग रहा है
1: बिल्कुल दिख रहा है बाजार में गाड़े माते बिकता दिख रहा है।
2: हाँ एड़ा पाका पाका है कि आप इतने फोड़ो जन मन करे काचे ही खा जाओ पर उन्हें जो जूस बने है वो बहुत ही बढ़िया लागे है
1: हाँ?
2: के बेल जूस ने बनाने वास्ते अपने पहला जो की सामग्री चीज है बा कुछ इन तरिया है के बेल रो फल है जो को मीडियम साइज रो ले लो और परिवार सदस्य रे सब छोटी मोटी साइज हो सके है। पाक्योड़ो देख लेवणो और आवश्यकता अनुसार अपने जैसे कम मीठो पसंद है या हलो मीठो पसंद है तो अपने कड़कड़ खांड ले लेनी। तो कड़कड़ खांड ने आप गुड़ खांड भी कहया करा हाँ। और एक नींबू ले लेनो और अगर ताजो हरियो पुदीनो है तो भी नहीं 5-6 पत्तियां ले लेनी और अगर सुखायड़ो है तो भी नो आधा चम्मच अपने पुदीनो ले लेनो और भी पुदीने ने मतलब अच्छे से छान लेनो ताकि कोई कचरो नहीं आ जावे। और बेल ने बेल फल ने पहला तोड़ परोने ने 15-20 मिनट पहला भिगो दो
1: हाँ।
2: पचे हाथों बढ़िया मसल परोने ने गुद्दो वे जो को निकाल दो जूस निकाल दो पचे आवश्यकता अनुसार मैंने पानी डाल दो ताकि वो जूस की मात्रा भी बढ़ जावे और वो अच्छे से मतलब मछली भी जावे और वे जितना भी है उन्हें कचरो जो को बचे इन्हें गन्नी छान लेनो और भी ने बाद में नींबू निचोड़ देनो एक और आधो चम्मच जो को है काड़ो नमक डाल देनो और हरियो पुदीनो डाल देनो मायने और सब चारों चीजा मिक्स कर लेनी गुड़ खांड हरियो पुदीनो नींबू और बेल रो जो को जूस है बने पचे अच्छे से छान पे अच्छा तो आइस भी डाल सको माथे थोड़ा ठंडो ठंडो लगे तो बहुत ही अच्छो स्वादिष्ट जो पेय पदार्थ बनन तैयार हुए। और भावना जी इन्हें पीनो उचित समय है सुबह भूखे पेट
1: हाँ वो पियो तो गणो अपने गुणकारी भी
2: हाँ भूखे पेट पीना चाहिए
1: हाँ।
2: बहुत ही स्वादिष्ट लगे हो तो, गन्नेरे जूस ने लारे छोड़े ये तो स्वादिष्ट लगे।
1: तो हंसा जी देखो आप बेल रो जूस बताइए हो इरे फायदे ही घने ही हैं
2: हाँ।
1: जा की देख लो कि इर महीने फाइबर है वे भरपूर मात्रा में होया करे है
2: बिल्कुल
1: व्यू कहीं है कि अपने आतोरी सफाई वे जाया करे है और लू चाले तो लू हमें आप पिया नहीं तो लू सु भी बचाया करे है। अगर रोजिना आप कही रहे हो कि सुबह सुबह आप पीला नहीं इन्हें रोज री एक गिलास पीला नहीं तो जका भी अपने कोलेस्ट्रॉल है वे भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाया करे और विटामिन सी है वो भी भरपूर मात्रा होया करे। तो बहुत ही चोखी रेसिपी बताई हाँ मेरी सागी सुना एक प्यारा सो गीत।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गणगौर। अब समय है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की जानकारी प्राप्त करने का। प्रस्तुत है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित दोपहर के हिंदी समाचार।
1: दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT के सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
3: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई

0: की शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
3: For our business.
4: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
4: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत

0: इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमरीका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर

साथ में लता मंगेशकर की आवाज वो कौन थी फिल्म के गाने का ये एक विशेष संस्करण था। इससे पहले कोहरा फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, संगीत हेमंत कुमार का था।

किशोर कुमार की आवाज में दूर गगन की छांव में फिल्म का गाना था।

सर के डोले मनवा कि हियर में उठे तहिलो। अरे पुरवा के झोंकवा में आई

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गोदान फिल्म का गाना था। अनजान की बोल थी, संगीत पंडित रवि शंकर का था। इसी के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखियो नमस्कार। इंतजार ऐसी खामोश कविता होती है जिसे हर दिल हर पल बिना शब्दों के लिखता रहता है। ये वो दीप होता है जो विरह की रातों में आशा की लौ जलाए रहता है। इंतजार वो फूल है जो खिलने से पहले एक खुशबू का एहसास कराता है। किसी अपने की राह देखता हुआ मन मानो समय की दहलीज पर उम्मीदों के दीप सजाकर बैठा रहता है। इंतजार वो एहसास होता है जहाँ मिलने की खुशी से पहले यादों की महक दिल के आंगन को महका देती है। चिलचिलाते गर्मी से राहत के लिए हम सभी को झमाझम बारिश का इंतजार है, तो फिलहाल मुझे इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। देखते हैं किन किन सहेलियों से आज बातें होगी। और हमारा इंतजार हुआ खत्म और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमारी?
1: शीला सहनी, दिल्ली से।
0: शीला जी, क्या हाल चाल है?
1: हाँ,
0: शीला जी
1: अपना सही है, आप बताओ अपना हाल चाल।
0: जी हमारे भी हाल चाल बहुत अच्छे हैं। बताइए आप क्या करती हैं?
1: जूते लन का काम यहाँ होता है दिल्ली में, वही सब कर रही हूँ ऐसे फैक्ट्री में।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप व्यस्त रहती हैं, काम करती रहती हैं। मुझे एक बात बताइए,
1: मैं
0: दिल्ली
1: काम
0: के क्या
1: करती।
0: हाल चाल है?
1: दिल्ली में तो अभी थोड़ा गर्मी है और बाकी सब तो वैसे मौसम के हिसाब से चलते ही रहता।
0: गर्मी से तो सभी परेशान हैं, पर मुझे एक बात बताइए कि गर्मी से राहत के लिए आप कौन से उपाय करती हैं? किस तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिससे गर्मी कम लगे?
1: गर्मी के लिए क्या करेंगे, अपना सेहत पे ध्यान रखे हैं, धूप ऊप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें खूब पानी पीना है और बाहर
1: हाँ,
0: निकलते वक्त छाता
1: पानी
0: लेके
1: पी
0: चलना।
1: लो, ठंडा पी लो, जिसका होता है लस्सी पी लेते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मैम नीलकमल फिल्म का कोई सा सुना दीजिए।
0: सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: मैं निशा पाठक एयरपोर्ट रोड इंदौर से लगाया है।
0: निशा जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ। बस ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बहुत बहुत बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ,
0: क्या बात है,
1: विविध
0: शुक्रिया।
1: भारती की खास तौर पर।
0: जी जी
1: और मैं सालों से, आप समझ लीजिए, बचपन से विविध भारती सुनती चली आ रही हूँ और हेलो सहेली भी हमेशा सुनती हूँ। सखी सहेली तो फेवरेट है ही मेरा
0: अच्छा जी, निशा जी, आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ
0: यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: जी। हाँ, ये समझ लीजिए कि रिटायरशिप में कर रही हूँ अब
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। हाल ही में हम
1: जी।
0: सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो क्या आप
1: जी
0: योगा करती हैं? योग से जुड़ी
1: जी
0: हुई है?
1: हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं करीब 2010 से मैंने योगा को अपनाया है और मुझे उस योगा से बहुत बहुत फायदा मिला है।
0: किस तरह से फायदा है वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मुझे कमर में तकलीफ हो गई थी और मुझे थोड़ा वो भी है, ब्लॉकेज में भी थोड़ी है दिक्कत, तो उस वजह से फिर मैंने प्राणायाम भी शुरू करा और तीन चार आसन जो मेरे कमर से और स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित हैं वो आसन भी मैं करती हूँ। तो उन सब आसन और प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ मिला, तो मेरी दवाइयाँ करीब करीब आप जो चल रही थी सिर्फ वो ही चल रही हैं, उसके आगे नहीं बढ़ी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं, साथ साथ अपना भी ध्यान रख रही हैं और पूरे परिवार
1: जी
0: के साथ
1: हाँ,
0: खुशहाल हैं।
1: सारी महिला समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घर गृहस्थी में भी ध्यान दीजिए किंतु अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने जो आपके शौक रह गए हों उन्हें आप सीनियर सिटीजन जब आप बन जाती हैं तो आप कम से कम उन शौक को इस समय में आप पूरा कीजिए।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया है। और बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बंदिनी फिल्म का है, जिसको सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है और हम
1: जी।
0: सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: पूनम यादव लुधियाना से। हाँ
0: पूनम यादव लुधियाना से।
1: जी मैम,
0: पूनम जी क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं तो बस हाउस वाइफ है मैडम जी।
0: हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी। पूरे परिवार का
1: हाँ
0: ख्याल रखती हैं आप, है ना?
1: हाँ जी मैडम जी।
0: और कौन से शौक हैं आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।
0: क्या बात है, तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई करना,
1: हाँ
0: कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने जमाने में। और ये कला जो
1: हाँ
0: होती है ना, अद्भुत है ये कला, हर कोई नहीं सीख सकता ये, है ना? और अभी
1: हाँ
0: लुधियाना
1: जी,
0: की क्या हाल चाल है?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बारिश होके हटी है, थोड़ा गर्माई, थोड़ा हवा, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का।
0: यानी अभी आप मौसम का लुत्फ उठा रही हैं।
1: सारे मौसम आने बहुत ही जरूरी है मैडम जी। जिंदगी में हर मौसम अगर नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी नहीं चलनी है।
0: क्या बात है। तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: एक बरसात फिल्म का गाना है, बॉबी देओल का, मतलब नहीं हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में वक्त हो चुका है अंतराल का।
1: जरा शाम जरा
2: दर्शन थू

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दी।
0: नमस्ते। कहाँ से फोन लगाया और कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: जी, मैं श्वेता भारती, जिला ग्राम हिंसा से बोल रही हूँ।
0: क्या हाल
1: जी
0: चाल
1: बढ़िया
0: है आपके?
1: है दीदी, आप बताओ कैसी हो।
0: जी हम भी मजे में हैं, और आपसे बात करके और भी हम मजे में हो गए, और भी खुश हो गए, है ना?
1: हम भी बहुत खुश हो गए, कॉल लग गया।
0: वैसे आप बताइए कि आप करती क्या है जिंदगी में?
1: जी दीदी, घर पे रहते, घर के काम करते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात
1: जी
0: है।
1: जी
0: और घर के काम करते करते खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं कि नहीं? एक अपने खुद के लिए कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये काम करने में मुझे ज्यादा आनंद मिलता है, यानी मुझे सिलाई करने में ज्यादा आनंद मिलता है, या फिर मुझे गीत गाने में आनंद मिलता है, या फिर रेडियो
1: नहीं,
0: सुनने में?
1: मुझे मुझे गाने में आनंद मिलता है। रेडियो सुनती हूँ, विविध
0: गाती भी
1: भारती
0: है?
1: बहुत ज्यादा सुनती हूँ। बहुत खुश हूँ विविध भारती से। जी दीदी
0: जी, और गाती भी हैं आप?
1: जी दीदी गाती हूँ, अच्छा
0: तो गुनगुना के बताइए।
1: गुनगुना के भी सुनाओ। देवी
0: सुनाइए।
1: जी के मंदिर में लट से बाहरी आई, देवी जी के मंदिर

0: मांगी आई देवी जी की मंदिर में लट शिवा की आई।
1: क्या बात है, कितना सुंदर भजन सुनाया आपने। तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए।
0: जी।
1: और आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: सिर्फ जीत फिल्म का सुना दीजिए दीदी।
1: तो जीत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: कोई भी सुना दीजिए
1: जी ठीक है, जीत फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सई देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सही जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ और पब्लिशर भी हूँ। पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी। और पहले तो वैसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका, कवयित्री, गायिका भी हूँ। और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है कि मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी कलाओं
1: जी
0: में आप निपुण हैं, है ना?
1: जी जी
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई हैं, तो कौन सा संगीत का प्रकार है, यानी आप शास्त्रीय संगीत सीखी है या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?
1: जी मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
0: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउसवाइफ थी, तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ है, हम तो सिर्फ हाउसवाइफ है, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई हैं कि आप पहले हाउसवाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई हैं और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हमारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा, तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जब मैं हाउसवाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी, इसलिए मैंने उस वक्त घर के अंदर रहकर ही जो कुछ मैं कर सकती थी उतना किया। अपनी हॉबीज को डेवलप करती रही, टैलेंट्स को, यानी जैसे स्केच

0: टीचिंग है, तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही. और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहां जहां मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं करती थी. और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है. तो मेरा ये कहना है सभी सखियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी कुछ समय अपने लिए खुद के लिए अवश्य निकालें, और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें. भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम 1-2 घंटा अपने लिए खुद के टैलेंट्स के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें, तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं.
1: ये तो बहुत अच्छा संदेश सारी सखियों के लिए आपने दिया। और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
0: जी, ये जब मैं कर रही थी तो घर में, जब मैं, जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की तो हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है. तो ये मेरे घर के सब सदस्य मुझे ये मदद करते हैं. और जब मैं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ ऑर्डर्स रहते हैं या गाने का कार्यक्रम होता है तो भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड स्पेशली और बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं. तो घर के लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब घर की महिला उसके अंदर का टैलेंट अगर वो डेवलप कर रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट करें ताकि वो खुश रहे. फाइनेंशियली भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और अपनी हॉबीज को वो अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी, तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी.
1: ये बहुत सही बात आपने कही कि अगर एक महिला खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है, और महिला को आगे बढ़ने में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हर, अगर स्त्री को, हर नारी को ऐसा सहयोग मिलता रहे तो हर नारी कुछ न कुछ आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती है। और सई जी, जैसा आपने बताया कि आप गाती भी है, तो हम आपसे कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे।
0: जी जी, एक छोटे नवाब फिल्म का गीत है, लता जी ने गाया हुआ, आर डी बर्मन का संगीत है, वो मैं आपको सुनाती हूँ.

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुरीली आपकी आवाज है और बहुत सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए। और यही
1: धन्यवाद।
0: गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, यही गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मेरा नाम जयश्री है।
0: कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मैंने लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा से फोन लगाया है।
0: अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इस बारे में।
1: जी, ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और ये आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के बारे में। तो उनका जो लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में है, वहां पे मैं काम करती हूँ।
0: क्या बात
1: और
0: है,
1: हाँ हाँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये हमने
1: जी
0: पढ़ा भी है उस बारे में और सुना भी है, और हमने उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है।
1: जी
0: आप क्या काम करती है वहां पर?
1: यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है।
0: तो
1: हाँ,
0: वहां जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
1: पहले तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था मैंने। मैंने प्रकाश बाबा आमटे ये फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला, और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है।
0: तो कैसा लग रहा
1: और
0: है आपको वहां जाकर?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
1: जी
0: जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, यानी अपने खुशी का
1: जी
0: काम करते हैं, तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है, और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की
1: जी
0: शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
1: हाँ हाँ मैं जरूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है, ये वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं होता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करना, ये भी यहाँ यही की शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज्यादा ये दिया जाता है, वो शिक्षा ज्यादा दी जाती है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रकृति के सानिध्य में बसा हुआ है, तो बच्चों

0: बहुत करीब से प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है, नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको भी वहां पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो बताइए रेडियो कब सुनती हैं आप?
1: रेडियो में एक्चुअली मैं यहाँ आई तब यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ है नहीं, तो ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ, और सखी सहेली एक कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी न्यूज भी सुनती हूँ, तो विविध भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के। तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हमको मन की शक्ति देना, यह प्रार्थना गीत बहुत पसंद है, और यह गीत फिल्म गुड्डी का है जिसमें जया बच्चन जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गीत इसलिए पसंद है क्योंकि यह गीत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
0: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना, तो मन के हारे हार है मन के जीते जीत, तो हमारे मन को हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए, हरा भरा पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
3: जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
4: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
3: मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्षद रह चुकी हूँ, मेरा पार्लर भी चलता है और महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ।
4: क्या बात है, यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है ना?
3: जी हाँ जी जी।
4: और आज आपकी आवाज में खुशी झलक रही है, क्या पहली बार फोन लगाया आपका विविध भारती में?
3: हाँ, पहली बार ही फोन लगाया है और बहुत पहले से मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा, बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके।
4: चलिए, ये मैंने कहा ना आपकी खुशी आपके आवाज में झलक रही है। वैसे कल्पना जी, हर किसी की खुशी की एक अलग परिभाषा होती है, तो यानी किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है, तो आपकी खुशी की क्या परिभाषा है?
3: देखिए, खुद की खुशी के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे कारण लोगों के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ, जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
4: ये तो बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में हर कोई नहीं सोचता है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
3: मुझे संगीत का पहले से ही काफी शौक रहा है और यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी मैं गा लिया करती हूँ। मैं अपनी एक खास सहेली के साथ अपने कॉलेज के दिनों में एक गाना गाया करती थी जो मेरी पुरानी यादों को ताजा कर देती है, मैं वही गाना सुनना चाहती हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा।
4: तो ये गाना गुनगुना के बताइए आप।
3: जी जी जी।

0: तौबा तौबा रे दिल रुबा दिल रुबा दिल रुबा दिल रुबा।
1: ये गाना लता जी और कमल बारोट का गाया हुआ गीत है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, कौन
1: हेलो सहेली, कैसे हो? मंजू,
0: सी सहेली ने फोन लगाया है हमें? मंजू जी, कहाँ से लगाया फोन?
1: हाँ जी, हरियाणा हिसार से। हाँ
0: हिसार, हरियाणा से मंजू जी से बात हो रही है। बताइए मंजू जी,
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मेरा सिलाई का काम है। हाँ
0: सिलाई का काम करती है, और सिलाई करते
1: जी,
0: करते रेडियो सुनती है।
1: हाँ जी,
0: कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं आपको?
1: विविध भारती के सुबह से लेकर शाम तक के चलते ही रहते हैं, सारे ही अच्छे लगते हैं।
0: सारे कार्यक्रम पसंद है। और जैसे कि महिलाएं दिन रात काम करती हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं दे पाती। 21 तारीख को सभी ने विश्व योगा दिवस मनाया, विश्व संगीत दिवस हम सभी ने मनाया। तो आप योग
1: हाँ जी,
0: करती हैं, व्यायाम करती हैं?
1: थोड़ा बहुत बस घर पे कर लेते हैं सुबह। ये
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: कन्यादान पिक्चर का है, लिखे जो खत तुझे वो फूल बन गई।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, बिहार
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: पटना से इंदु चौबे।
0: इंदु जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया।
0: बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: या तो बहुत कुछ सुना लीजिए, पर आप तो निश्चिंत कीजिए, जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है, बस आराम से मजे से बीर भारती सुनना, कुछ कुछ अपना किताबें पढ़ना, अपना दिनचर्या मेंटेन करना, लोगों से मिलना जुलना, बस ऐसी जिंदगी।
0: बहुत सुंदर जिंदगी जी रही हैं, यानी यूं कह लीजिए कि जिंदगी का बड़ी खूबसूरती के साथ लुत्फ उठा रही है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: बहुत बचपन से, जब
0: बचपन।
1: से मतलब गानों के प्रति शौक हुआ किशोरावस्था से, तब से।
0: और ये बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, साथ ही संगीत दिवस मनाया, तो योग और संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है?
1: संगीत तो रच बस गया है, योग भी मैं करीब 10 साल से कभी कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। मुझे साइटिका का अटैक हुआ तब से, मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया, और मैंने 3 महीना उस तक कोर्स किया। अब तब से मैं नियमित रूप से घर में या बाहर कहीं भी रहूं मैं जरूर करती हूँ।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही।
1: हाँ, प्राणायाम, अनुलोम विलोम। और आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी, और इधर 2 साल से मैं कोई थायराइड का दवा नहीं ले रही हूँ। मेरा वजन भी कम हो गया, और मैं अपना जो दिनचर्या है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उम्र के साथ तो आता ही है, लेकिन मैं आराम से डेली 20 मिनट वॉक करती हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि योग ने आपके जीवन में कितने सारे बदलाव
1: हाँ
0: लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, जिसके
1: जी
0: बदौलत
1: जी
0: आप
1: जी
0: तंदुरुस्त जीवन जी रही है। तो हर महिला
1: जी
0: को ऐसे ही करना चाहिए कि कितने भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, योग को महत्व देना है, अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा, और जब
1: जी
0: हम
1: जी
0: योग
1: बिल्कुल
0: करते हैं ना तो हमारा देखा सीखी बच्चे भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो भी तंदुरुस्त रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी। लंबे हाथ का प्यार की राह दिखा दुनिया में, रफी जी की आवाज
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये
1: में।
0: गीत।

0: सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस प्रकार है 4002466 2, फिर से 4002466 2। दूसरा नंबर है 2867 0288, फिर से 2867 0288। और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिले। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक नम्र विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारे सखियों के फोन नहीं लग पाते। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता, संपादन नम्रता टिकोड़े का, हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

पूछना होता था, रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने गीतों भरी कहानी। आइए सुनते हैं अरुण शेखर की लिखी गीतों भरी कहानी, उन दिनों की बात है। वाचन स्वर अरुण शेखर का।
2: ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल से इमोजी भेजकर इश्क जाहिर करने का जमाना नहीं आया था। मोबाइल जैसी चिड़िया का उद्भव भी नहीं हुआ था। गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ ही एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही

0: मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी, उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था। दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया की कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थी पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। यह उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था क्योंकि 5 साल की छुट्टी, और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सुने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की, हालांकि यहां लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।
1: ये लखनऊ की सर

3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे। जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

0: श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए, यहां तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहां कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था, उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुए।
1: बाजू

ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदायी भी होता है। जैसे तैसे रातें कटती हैं। नए साल की शुरुआत होने वाली थी। इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हाँ, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलूनी, लहराते गेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था। हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था।

राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे। रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता। यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हां, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलफेंक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़बुन में, इस असमंजस में

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूं कि सौ राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूं, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। श्रीवान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया, ये सोचकर कि ये तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्क संगत हो ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थीं कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए और वो काम भी आए। खैर, ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहां दिखाई देता है, इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा।

आखिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था पर उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे। कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही हो, 4 डिग्री तापमान हो। पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे मई जून की दोपहरी हो। इन्हीं भावनाओं को समेटे हिमालय पर जाने जैसा साहस जुटाकर सुश्री वाई

को खोजते खोजते श्रीमान एक्स मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ खड़ी अपनी ही धुन में बतिया रही थी। पहले तो श्रीमान एक्स को लगा कि बस इनको ऐसे ही खड़े देखते रहे, उसकी मुस्कुराहट को जीते रहें।

0: लेकिन फिर ख्याल आया और सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर यहां तक आया हूं, बात आगे बढ़ा ही दी जाए, फिर कब मौका मिले पता नहीं, फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे। आगे बढ़ गए, कांपते गले से कहा, हेलो। वो बोली, जी कहिए। जी कुछ नहीं वह हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी में इतनी मुर्की थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान एक्स, और बदले में थैंक यू मिल गया था। उस कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बना लेते हैं, लेकिन श्रीमान एक्स उन लम्हों को अभी तक किताबों में रखे गुलाब की तरह संजोए हैं।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

उन दिनों की बात है। अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर अरुण शेखर का था, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।

हम FM सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रोग्राम युववाणी हमारे प्राइमरी चैनल से।

0: गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप सभी के हाल चाल? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। और भैया बढ़िया क्यों भी नहीं हो, कोई रीज़न है क्या? और अगर कोई भी रीज़न है आपके पास तो उसे थोड़ा साइड में रखिए, क्योंकि अभी समय हो गए हैं शाम का और 5 बज चुके हैं, और ये जो समय होता है वो होता है युवाओं के पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है युवाणी।
1: और दोस्तों, अगर आपका दिन थोड़ा सा भी बोरिंग जा रहा हो ना, तो उस बोरिंग को साइड में हटा के, उस फीलिंग को साइड में हटा के चिल करना है, क्योंकि यहाँ पर टेंशन को हम करते हैं बाय बाय। और अगले एक घंटे तक जो आपको गाने हम सुनवाने वाले हैं आपको, वो काफी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिस पे आप जूम उठेंगे। मैं हूँ अदिति मौर्या और मेरे साथ हैं,
0: बिल्कुल आपके साथ मैं हूँ आपका रेडियो रागी रोहित। और चलिए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और बहुत प्यारे प्यारे गीत जैसा अदिति ने बताया हम सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ बहुत माइंड

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। श्रोता आप सुन रहे हैं युवा पसंद कार्यक्रम युवाणी है। और अदिति अभी फैशन की हम बात करते हैं ना, जब भी यूथ की बात होती है, जब यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं तो फैशन जो है सबसे ऊपर देखने को मिलता है। और अभी फैशन में एक चीज मुझे बहुत ट्रेंडिंग दिखती है, वो है थ्रिफ्ट कल्चर।
1: हाँ, वो काफी अभी ट्रेंडिंग भी है और काफी बेनिफिशियल भी है वो एनवायरमेंट के लिए। क्योंकि ये क्या कल्चर है, मैं अपने लिसनर्स को एक बार बता देती हूँ। जो हमारे पास कपड़े हैं जो हम नहीं पहनना चाहते पर अच्छी कंडीशन में, हमको पता है कि हमको नहीं पहनना है, तो आप उस कपड़े को आप किसी स्टोर में बेच सकते हैं ताकि वो किसी और के लिए यूजफुल हो। तो ये चीज जो है, आप रोटेट कर रहे हैं अपने वार्डरोब को किसी और के वार्डरोब से, ये है थ्रिफ्ट कल्चर।
0: बिल्कुल। और आजकल ऐसा हो गया है कि अगर हमारे पास कोई अच्छी ब्रांडेड टी शर्ट है और वो हम पहन रहे हैं और बोर बहुत

0: हो रहे हैं क्योंकि ट्रेंड जो है वो फटाफट चेंज हो रहा है, तो आप सोचते हैं कि इसको पहनने से अच्छा हम किसी को दे देते हैं, लेकिन कई बार ना लोग आपके दिए हुए कपड़े आजकल वो भी हो गया कि नहीं पहनेंगे, नेगेटिव एनर्जी, और सबको नए कपड़े ही चाहिए होता है। लेकिन इस बीच में अभी थ्रिफ्ट कल्चर इस तरह से आया है ना, जहाँ पर कपड़े सबको पता होते हैं कि ये पुराने, लेकिन उनको वापस उस तरह से शो करते हैं, वापस से वो शोरूम्स में चले जाते हैं, वापस से वो इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं जो कपड़े होते हैं, कि ऐसा लगता है कि हाँ रिफर्बिश्ड वर्ड जो है वो नया अभी आ गया है। यूज्ड कपड़े बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं ये कुछ गलत चीज है, लेकिन वहीं पर अगर हम रिफर्बिश्ड बोल देंगे तो लगेगा हाँ ठीक है, ये हम यूज कर सकते हैं, ये अच्छी चीज है।
1: ट्रेंडिंग में
0: बिल्कुल, हाँ ट्रेंडिंग में हमेशा जो है यूथ उसके पीछे भागता है। और ये थ्रिफ्ट कल्चर जो है ये भी एक बहुत कूल जेन ज़ी टर्म्स आई हुई है, तो सबको बहुत अट्रैक्ट करती है, और इससे भी आप जो है अपने वार्डरोब को एक्सचेंज कर सकते हैं, नया कर सकते हैं। और एक मैंने रिसर्च पढ़ी थी अभी इंटरनेट पर, मुझे नहीं पता वो कितनी सच है, और लेकिन ना अगर ये सच है तो बहुत शॉक करने वाली बात है, बहुत चौंकाने वाली बात है, कि एक कॉटन टी शर्ट जो है वो अदिति बनने में कम से कम 2700 लीटर पानी का यूज होता है जब एक कॉटन की टी शर्ट बनती है। मतलब इतना पानी इंसान शायद 3 साल में पीता होगा, पर वो जो टी शर्ट है वो बनने बनने में ही जो है 2700 पानी खर्च कर 2700 लीटर पानी खर्च कर देती है, तो कितनी हैरानी की बात है। मतलब कितने मास प्रोडक्शन होता होगा पूरी दुनिया में, अगर हम बात करें, अगर हम सिर्फ इंडिया में ही कॉटन टी शर्ट की बात करें तो कितने लोगों के पास कम से कम 3 से 4 कॉटन टी शर्ट तो मिनिमम होंगे ही होंगे,
1: है ना। राजस्थान में रहते हैं हम,
0: हाँ बिल्कुल, हमारे तो कॉटन मतलब ऐसा ना कि ये तो पहनना ही चाहिए, तो कितना पानी वेस्ट होता होगा ना। हमें लगता होगा कि कॉटन टी शर्ट्स बहुत महंगे होते हैं, कॉटन शर्ट्स बहुत महंगे होते हैं, या कॉटन के कपड़े जो है वो बहुत सस्ते होते हैं, आराम से हम लोग पहन सकते हैं, बहुत इजीली हमको मिल जाते हैं, लेकिन प्लेनेट के लिए ये कितना महंगा है।
1: यही हम गलती करते हैं, ये फास्ट फैशन का ट्रेंड है कि हमको जो अच्छा लग रहा है हम ले लेते हैं, तो पर ये इम्पल्सिव बाय जो हम कर रहे हैं कि हम एक बार पहन लिए उसके बाद उसको यूज ही नहीं करते हम, तो ये चीज गलत है, क्योंकि ये हमारे एनवायरमेंट के लिए गलत है।
0: बिल्कुल, अब तो कैप्सूल वार्डरोब का जमाना आ गया है, छोटा वार्डरोब होना चाहिए, मल्टीपल कपड़े उसमें से अलग अलग कलर के भी होंगे, तो उनको एक कपड़े से हम लोग करीब करीब 50 स्टाइल्स बना सकते हैं।
1: आप जो कलर्स हैं आप अपने पास रखिए और किसी और के साथ मिसमैच करके उसको पहनिए।
0: बिल्कुल, आप कलर करेक्शन क्या कर सकते हैं, किस तरह से मिक्स एंड मैच करना है आप सीख सकते हैं, इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस है, बहुत सारा आइडियाज आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। फिलहाल आप सुन रहे हैं हमारे साथ युवा पसंद कार्यक्रम जिसका नाम है युवा ने, आपके साथ दो रेडियो बड़ीज है, मेरा नाम है रोहित और मेरे साथ है
1: अदिति,
0: तो चलिए हम और आप मिलकर कंटिन्यू करते हैं सुनना अगला फ्रैक।

0: दोस्तों, इस सेगमेंट से पहले हमने बात करी थी कि हम फैशन की और कपड़े खरीदने की बातें कर रहे थे, तो अब बात करते हैं कि जो हमारे पैसे हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि मंथ एंड चल रहा है और मुझे पता है बहुत लोगों की पॉकेट मनी या सैलरी अब तक गॉन केस हो चुकी होगी।
1: Yes.
0: हम सब सोचते हैं यार पैसे गए कहाँ, मैंने तो कुछ बड़ा खर्चा किया ही नहीं।
1: लेकिन अदिति, मतलब हमें पता नहीं होता है, क्योंकि जब मंथ एंड आता है ना, तो जितने भी ई कार्ड, ये जो वेबसाइट्स होती है या ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट होती है या फिर कहीं भी शोरूम्स पे हम देखते हैं ना सेल,
0: हाँ,
1: एक वर्ड जो है ना हमेशा पॉपअप होता रहता है। अगर हम आजकल फोन भी चलाते हैं ना, तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कुछ भी हो ना, पॉपअप उस पर आ ही जाता है कि भैया 20% ऑफ, 60% ऑफ, 90% ऑफ, 99% ऑफ भी हमें देखने को मिलता है। और बस वो जो ऑफ वर्ड दिखता है ना, फटाफट से मेरा हाथ या किसी का भी हाथ वहां पर कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। और उसके बाद में दिखता है कि अच्छा, ये चीज इतने रुपए की और इतने रुपए में मिल रही है, चलो ले ही लेते हैं। और उसके बाद ना, जब वो डिलीवर हो जाती है, हमारे पास आ जाती है, तो ऐसा लगता है कि इसकी जरूरत आज थी नहीं। लेकिन ऐसा मेरे साथ भी होता है, साइकोलॉजिकली केस होता है ना कि बहुत सस्ते में चीज मिल रही है, ले लेते हैं। मुझे किसी चीज की जरूरत है भी नहीं, लेकिन अगर वो सस्ते में मिल रही है तो ले लेते हैं, सोच के कि बाद में कभी काम आएंगे। और वो बाद में भी काम आती नहीं है, और जब उसका काम होता है तब भी सेल उतनी ही चल रही होती है, शायद उस वक्त और सस्ती मिल जाती है हमें वो चीजें। तो यही गेम होता है, हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है, सस्ते में चीज मिल लेती है, ले लेते हैं। इंपल्सिव बाइंग जिसे हम बोलते हैं ना, कि दिखते ही फटाफट चलो ले लेते हैं, ऐसा मौका कभी नहीं मिलने वाला है। जबकि वो ऐसा मौका हर महीने, हर हफ्ते आता है,
0: हर सीजन आता है।
1: और दिवाली और अगर फेस्टिव सेल लग जाए तो और भी बढ़िया डिस्काउंट हमें वहां पर मिल ही जाते हैं। लेकिन दिल है कि मानता नहीं कि वो सब चीजों में, मतलब ये भी मेरी, वो भी मेरी करने में लग जाता है। और ऐसे में जब पॉकेट में हाथ जाता है, उसके बाद पता चलता है कि भैया जीरो बैलेंस लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि पैसे बहुत कम हो गए। और यूपीआई होने के बाद ना, आजकल पॉकेट में भी आते नहीं जाता, सीधा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो पता नहीं चलता कि कितने पैसे बचे हैं पीछे।
0: इससे अच्छा तो यही था कि हमारे पास कैश होता है, तो हम अकाउंट रखते हैं उस चीज का।
1: बट हाँ, देखो कुछ चीजों के

0: प्रॉफिट है तो कुछ चीजों के जो है कॉन्स भी हैं, कोई बात नहीं.
1: पर है ना इसका सॉल्यूशन भी है. इस पॉकेट मनी क्राइसिस से बचने के लिए एक सुपर हिट फॉर्मूला है, 50-30-20 रूल. अपनी ना टोटल इनकम या पॉकेट मनी को तीन हिस्सों में बांट दो दोस्तों. 50% जो है अपनी नीड्स यानी जरूरी चीजों के लिए रखो, लाइक पेट्रोल, कोई भी आपका खाना हो या राशन या बिल्स हो. 30% रखो वॉन्ट्स के लिए यानी मूवीज, कैफे, आपको कहीं भी आपकी जो इच्छा है वो आप करिए इसमें. और बचा हुआ 20% उसे टच भी नहीं करना है दोस्तों, वो सीधे जाएगा आपकी सेविंग्स यानी माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स में.
0: बिल्कुल. और घर जी को बोर्ड या बढ़िया होता नहीं, मैं कहता कि 20% या जिसको भी पाया नहीं घर में रखना है. मतलब घर में जो है वो सेविंग करके रखनी होती है. पैसे घर में रहेंगे तो इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, आप कभी भी पैसे निकाल के उसे यूज कर सकते हैं. लेकिन घर में रखे हुए पैसों का ना एक बहुत बड़ा दुश्मन है जिससे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन, जो कि अभी हर वक्त आती रहती है. मान लो कि इन्फ्लेमेशन क्या है, अगर 100 रुपए की चीज आज हमें कुछ मिल रही है, अरे मिर्ची बड़ारी बात ले लो, कोई जमाना में 7 रुपए में मिलता, अबे 20 रहेगी, अबे 30 रहेगी. तो वो वाली चीज ही हो गई है कि कुछ चीज अगर 100 रुपए की मिल रही है ना, वो 5 साल बाद 150 की हो जाएगी और उसके 5 साल बाद 200 रुपए की हो जाएगी. घर में रखा हुआ पैसा वही रहेगा, उतनी ही उसकी वैल्यू होगी और 5 साल बाद शायद और कम उसकी वैल्यू हो सकती है. इसलिए जो आजकल के स्मार्ट बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो अभी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लग गए हैं, स्मॉल कैंप्स में इन्वेस्ट करने लग गए हैं, लार्ज कैंप्स में इन्वेस्ट करने लगे हैं. बहुत सारी चीज़ आ गई इन्वेस्ट करने की जो कि इन्फ्लेमेशन के साथ साथ रिटर्न भी ज्यादा देने लगी है. और ये फायदेमंद भी है अगर आप इसे समझदारी से करें,
1: जितना जल्दी करें.
0: तो मतलब यही है भैया जी, आपकी जितनी भी सैलरी है 50% आप इसको खर्च करने में लगाएं, 30% जो है जो भी आपके शौक हैं, जो भी आपको OTT के सब्सक्रिप्शन लेने हैं, जो भी फलाना ढिमकाना जिसमें भी आप यूज करना चाहें कीजिए, लेकिन 20% हमें कैसे भी करके सेविंग करनी है, क्योंकि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, कब काम आ जाए. तो पैसे अपने पास रहेंगे तो जो फाइनेंशियल फ्रीडम है ना वो भी अपने पास रहने वाली थी. फिलहाल तो ये छोटी मोटी चीज है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए. इसके बाद में जो चीज ध्यान रखनी है वो है 5 बजते युवाणी चालू हो जाता है, आपके 2 फेवरेट रेडियो बडीज यहाँ पर मिल जाते हैं. मेरा नाम है रोहित और आदिति मेरे साथ है. इसके साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे गीत हम आपको सुनाते हैं, बहुत काम की बातें भी करते हैं. और भैया जी चलिए ना, हम और आप मिलकर सुनते हैं ये वाला म्यूजिकल ट्रैक.

0: बिल्कुल जी, इस कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस गीत से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ना मेंटल स्टेबिलिटी भी अदिति उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हम सबकी लाइफ में। और वो कहाँ से आती है,
1: और इसको ही है ना, मेंटल जो हमारी एबिलिटी है, ये मेंटल हेल्थ जो है उसको ही हार्म करता है हमारा फोन,
0: क्या
1: जो हाथ में, यही इसका जो है ना पीक है, क्योंकि हम उठते ही फोन देखते हैं और सोते वक्त भी फोन देखते हैं, हर टाइम हमारे हाथ में फोन रहता है, यही आपके मेंटल स्ट्रेस का एक रीजन है।
0: एकदम सही बोल रहे हो, बेस्ट टीचर हम अपने फोन को बोल सकते हैं और वर्स्ट टीचर भी हम अपने फोन को भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें ये हमें सिखाता भी है, लेकिन बहुत बुरे बुरे ट्रैप्स में भी ये हमें फंसाता ही है। डूम स्क्रॉलिंग करके एक चलता है ट्रैप, एक बहुत फेमस ट्रैप है, जिसमें हम लोग जिस चीज को स्क्रॉल करने लगते हैं ना, सबसे ज्यादा हमारे साथ इंस्टाग्राम पे होती है, जब हम रील्स देखते हैं या फिर शॉर्ट्स देखते हैं यूट्यूब पर, तो ऐसा होता है ना, एक शॉर्ट के बाद एक अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा लगता है कि सारा मेरा इंटरेस्ट का जितना भी डेटा है ना हमें दिख रहा है,
1: उसका भी एल्गोरिथम ऐसा है कि आपको जो पसंद आएगा वही वो दिखाता रहेगा, तो आप इस ट्रैप में फंस चुके हैं कि आप घंटों स्क्रॉल करते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा।
0: यंग जनरेशन की बात छोड़ो, अब तो जो मम्मियां हैं, अब जो पापा लोग हैं ना, वो भी इस ट्रैप में फंस चुके हैं, क्योंकि उनको भी उनके पसंद के जो है वो कॉन्टेंट दिखते रहते हैं, पापा को न्यूज दिखती रहती है, फैशन दिखता रहता, मम्मी को फैशन दिखता रहता, कुकिंग से दिखता, ये नई चीज वो नई चीज ना,
1: कुल मिला के पूरी जो फैमिली है वो एडिक्टेड,
0: पूरी फैमिली एडिक्टेड हो गई है। और आजकल ना ऐसे ऑफर्स जो होते हैं, बहुत फेक ऑफर्स भी होते हैं ना, कि एक बाल्टी आपको सिर्फ एक रुपए में मिल जाएगी, देखिए इस लिंक पर क्लिक करें, हम तो सोचते हैं कि एक रुपए में नहीं मिलेगी, लेकिन मम्मियों को समझाना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर मम्मियां हमें सुन रही है, तो अगर आपके बच्चे कहना है कि ये फेक है, तो प्लीज उन पर बिलीव कीजिए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि फेक चीज में भी मम्मी, तेरे को कुछ नहीं पता, तुझे नहीं आता, लेकिन वो चीज गलत होती है।
1: बिल्कुल, काफी अभी एआई का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो एआई और रियल लाइफ जो है वो नहीं बता पाते,
0: इसमें जज नहीं कर पाते कौन सा एआई है और कौन सा ना, तो एआई की वीडियोस भी
1: बच्चों से पूछते हैं ये क्या है, बता बता,
0: तो ये बहुत बुरा ट्रैप चल चुका है। और इसमें माइंडफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, डिजिटल डिटॉक्स करके भी काफी सारी वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप की जरूरत नहीं है, आप खुद भी डिजिटल डिटॉक्स हो सकते हैं। कैसे करना, अगर आप उठते हैं सुबह, तो कोशिश कीजिए कि पहले आधे घंटे, अगर इम्पोर्टेंट नहीं हो तो पहले आधे घंटे आप अपने फोन को टच भी मत कीजिए, और सोने से पहले

0: आधे घंटे आप अपने फोन को टच नहीं करेंगे तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो है वहीं सॉल्व हो जाएगी।
1: बिल्कुल, और जो भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो फोकस्ड होके करिए और उस काम के बीच में कभी भी फोन यूज ना करिए।
0: बिंज वॉचिंग करना वीकेंड्स में वो भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी आपकी आंखें खराब होती है, क्योंकि आजकल ये एक नया शौक है, डार्क रूम में पूरी सारी लाइट्स बंद करके हम फोन की स्क्रीन ईयरफोन्स लगा करके लैपटॉप टैब्स पे हम देखते हैं या फिर टेलीविजन पे भी देखते हैं, तो वो जो हार्मफुल रेज है वो सीधी उनको तो कहीं रास्ता नहीं मिलता, सीधी हमारी आंखों पे आती है और उन्हें हार्म करने की पूरी पूरी कोशिश करती है।
1: जो स्क्रीन की जो ब्लू लाइट होती है जो हम रात में देखते हैं वो हार्मफुल होती है, क्योंकि उससे बॉडी में जो है हमको लगता है कि अभी तक दिन है, तो वो मेलाटोनिन जो एक हार्मोन है वो बनता नहीं है, जिससे नींद नहीं आती, जो सरकाडियन रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाती है।
0: वही दादाजी को देख के तो लगता है इनकी आंखें अभी तक बढ़िया बिना चश्मे के अखबार पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे चश्मे क्यों लग गए, तो भैया रीजन साफ है, उनके वक्त टेलीविजन नहीं होती थी, मोबाइल फोन नहीं होते थे, तो वो टाइम से सो जाते थे और शायद लाइट घर में लगती रहती थी, तो वो रोशनी जो है आंखों पे जो प्रेशर है वो भी नहीं पड़ता था, लेकिन आजकल के बच्चे लाइट बंद करके देखेंगे मूवी पूरी पूरी रात, तो भैया आंखें खराब तो होनी है। कोई बात नहीं, इससे बच सकते, डिजिटल डिटॉक्स आप कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, मॉर्निंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, बहुत सारे रीजन, अपनी डाइट को भी बैलेंस कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आपको अपनी केयर है तो आप एकदम बढ़िया से रह सकते हैं, तो वैसे ही रहिए, हमें आपकी केयर है, इसलिए हम बढ़िया बढ़िया से गीत आपको सुनाते हैं, बढ़िया बढ़िया से गाने आपके लिए लेकर आते हैं और बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी लेकर आते हैं। वैसे ही कंटिन्यू करते हैं एक और प्यारा सा गीत, हम और आप साथ में सुनना।

0: बिल्कुल जी, फिर से वेलकम है आप सभी का। और आप सुन रहे हैं योग पसंद कार्यक्रम युववाणी। आपके साथ दो प्यारी सी आवाज़ें, देखिए अपनी तारीफ करना तो बनता है। बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो रागी रोहित, और मेरे साथ
1: और
0: है
1: मैं वो टैलेंटेड अदिति।
0: बिल्कुल
1: तो दोस्तों, हम है ना, क्या है ना, अक्सर हाँ तो कहते रहते हैं अपने दोस्तों को, और पर ना कहने की जो ये आर्ट है वो नहीं आती हम में से मोस्टली हर को।
0: बिल्कुल, मैं बहुत फंसता हूँ इस चीज़ में।
1: हाँ, तो ये चीज़ जो है हमको सीखनी बहुत ज़रूरी है, और ये हमारी आज की लाइफ में तो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आज जो है ये पीयर प्रेशर और ये जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें हम ना नहीं कह पाते, या किसी को बुरा ना लग जाए, हम गिल्ट में चले जाएंगे, रिग्रेट में करने लग जाएंगे, पर उसको ना नहीं कहेंगे, क्योंकि
0: बिल्कुल अदिति, दिस इज मी। और मुझे लगता है कि मैं भी जब भी कोई ऐसी सिचुएशन में दोस्त या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी ऐसा जो जान पहचान वाला होता है, स्ट्रेंजर भी कभी कभी अगर कुछ हेल्प मांगता है ना, तो मैं, मेरा अंदर से मन नहीं होता है उनकी हेल्प करने का। क्योंकि
1: हाँ
0: कई बार ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आप किसी की हेल्प नहीं करना चाहते, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट भी होता है कई बारी, है ना। वैसे सबकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन कई बारी अपने मन की भी सुननी चाहिए। लेकिन मन में तो ना होती, लेकिन वो पता नहीं जब जुबान पर आता है वो सीधा
1: चेंज
0: हाँ
1: हो
0: हो
1: जाता
0: जाता है,
1: है।
0: और ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मैं आपकी जो हेल्प है वो करने वाला हूँ, और उसके बाद जितनी हेल्प उनकी कर सकते, और बाद में रिग्रेट करते, भैया गलती कर दिया। तो मैं तो फंसता हूँ, आप बताइए कैसे बच सकते हैं इससे।
1: इससे बचना, तो ये जो आर्ट ऑफ सेइंग नो है ना, वो तो हम सबको आना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि हम जो प्रेशर में हाँ बोल देते हैं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हम जो फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो है वो फील करते हैं, और उस चक्कर में हम हाँ बोल देते हैं हर चीज़
0: बिल्कुल
1: को। तो हमको ये समझना होगा कि जॉय ऑफ मिसिंग आउट यानी जोमो, ये फील करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अगर हम ना कहते हैं, हम पोलाइटली कह सकते हैं ना, किसी को रूडली ना बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं कि आज चलो मेरे को काम है, मैं आपसे कल मिलता हूँ, या जो भी आपका मीटिंग या कॉल्स है, आप क्लियरली उनको बताइए ये इस
0: बिल्कुल,
1: रीजन की वजह से मैं ना नहीं आ सकता।
0: मैं इस चीज़ में बहुत फंसता हूँ। और वो फंसने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि बाउंड्री सेट करना बहुत
1: हाँ,
0: इम्पॉर्टेंट
1: बिल्कुल
0: होता है,
1: जरूरी
0: कि किस वक्त आपको हाँ बोलना है, किस वक्त
1: है।
0: आपको ना बोलना है, ये आपको आना ज़रूरी है। और आप अपनी बाउंड्री सेट कर सकती है कि भाई इतना तक मैं हाँ बोल सकता हूँ, इसके बाद मैं ना ही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये काम मुझे नहीं करना है किसी के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जो रिग्रेट की फीलिंग है वो आपको मेंटल स्ट्रेस और वो सब देगी, तो उसको भी अवॉइड करना तो उतना ही ज़रूरी है। और अब जो कर सकते हैं वो हम ये है कि फोमो जोमो का जो है आपको डिफ्रेंसिएशन पता

0: हो और आपने सेट बाउंड्री भी सेट कर दी है, तो आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कैसे हाँ और ना बोल सकते हैं वो आपको सीखना
1: पड़ेगा। मतलब बॉस के 8 बजे वाली जो मीटिंग है ना घर आने के बाद, आपको लगता है कि अब घर से भी जो है मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, नो कैसे बोलना है वो सीखना पड़ेगा। देखिए अगर रूडली बोला तो शायद बॉस को बुरा लग सकता है, मैनेजर को बुरा लग सकता है,
0: ज्यादा सॉफ्ट प्रमोशन रुक जाए,
1: अप्रेजल भी रुक जाए। भैया देखिए क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है, हमने सिखाया था 50-30-20, तो 50% अपने पास अच्छा खासा होना चाहिए, 30% और 20% भी अच्छा खासा होना चाहिए। इसके लिए देखिए अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उसकी रिस्पेक्ट टॉप नॉच है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सॉफ्टली हम बॉस को नो बोलेंगे तो बोलेंगे अरे यार तो करना भाई तो ज्वाइन करना
0: काम करवा देंगे और तो बस कुछ पेमेंट भी नहीं मिलेगा।
1: आर्ट ऑफ स्पीकिंग आपको सीखना पड़ेगा, किस तरह से बोलना है वो सीखना पड़ेगा, शब्दों को घुमाना सीखना पड़ेगा थोड़ा। देखे भैया उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी अगर 8 बजे वाली मीटिंग में ज्वाइन नहीं करना, लेकिन ठीक है नो बोलना भी कई बारी जरूरी होता है। वैसे तो हम बोलेंगे कि हर एक की मदद करें, लेकिन जहां पर आपका गट बोलता है कि नहीं यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वहां पर खुल के बिंदास होकर के ना बोलिए ना, कौन रोक रहा है आपको।
0: और आगे वाले को अगर ना कहना ही है ना तो उसको कॉम्प्लीमेंट दे के थोड़ा सा फिर उसको खुश करके ना कह दीजिए,
1: बिल्कुल ये
0: हम भी खुश
1: और हम खुश जब भी होंगे जब आपको अच्छे अच्छे गीत सुनाएंगे। इसी के साथ आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं ये वाला म्यूजिकल ट्रैक।

0: यस, इट्स द टाइम टू डिस्को, और इसी के साथ जाना नहीं टाइम है एक नया वर्ड सीखने, क्योंकि युवाणी में हर वक्त हम कोशिश करते हैं कि एक नया वर्ड आप सभी के साथ शेयर करें, जो कि हम भी सीख सकें और आप भी अपनी डेली लाइफ में उसे यूज़ कर सकते हैं। और ये नया वर्ड जो है वो है गॉस्पल ट्रुथ।
1: बिल्कुल दोस्तों, और ये आपने काफी हॉलीवुड या इंग्लिश सीरीज में भी सुना होगा, वर्ड है गॉस्पल ट्रुथ। स्पेलिंग है इसकी GOSPELTRUTH, गॉस्पेल ट्रूथ। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, सिंपल शब्दों में बोलें तो 16 आने सच, एक ऐसी बात जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ जिसमें कोई इफ्स एंड बट नहीं होते। तो दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आकर कहे भाई कल से पक्का जिम शुरू, नो एक्सक्यूजेस, तो ये क्या गॉस्पेल ट्रूथ है? बिल्कुल नहीं। तो ये कब से, ये सबसे बड़ा झूठ होने वाला है। लेकिन अगर आपकी मम्मी कहे सुनो अगर अभी पढ़ाई नहीं करी ना तो बाद में पछताओगे, बॉस ये है गॉस्पेल ट्रूथ, इसको कोई नहीं बदल सकता। सो नेक्स्ट टाइम आप किसी बात पर 100% गारंटी देनी हो तो कहना व्हाट आई एम सेइंग इज गॉस्पेल ट्रूथ।
0: बिल्कुल, और गॉस्पेल ट्रूथ ये भी है कि अगला जो गाना हम लोग सुनने वाले ना वो सुपर हिट है।

बिल्कुल जी, देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई इसी के साथ साथ जो यूथ हमें सुन रहा है, और अगर वो किसी गवर्नमेंट नौकरी या भी सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक खुशखबर है। हाल ही में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत 1191 एस्पिरेंट पद जो है वो भरे जाएंगे। ये भर्ती बिलासपुर डिवीज़न के लिए है और इनकी ट्रेनिंग जो है वो 1 साल तक होगी। कुल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 1191 है। आवेदन 12 मई 2026 से शुरू हो चुके थे, 11 जून तक इसके रहेंगे। इसके

बाद में जो है अब जो है एग्जाम्स भी होने वाले हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस भी है, नोटिफिकेशंस भी काफ़ी निकल चुके हैं क्योंकि डेट जा चुकी है ये, है ना। तो इसके बाद में इसके लिए और जो है नई नई पोस्ट अब उस वेबसाइट पर आने वाली है। जितने फॉर्म्स भरने थे वो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं और अब इनके डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन और बाकी अदर प्रोसेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन ये जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ये वेबसाइट है rrbapply.gov.in। इस पर जाकर के आपको बहुत सारे नोटिफिकेशंस और मिल जाएंगे। अभी रेलवे ने और भी काफ़ी सारी पोस्ट निकाली, इन सारी इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ मिल जाएगी। जो अभी रिसेंट में जो नोटिफिकेशन निकला है उसकी डेट्स तो क्लोज हो चुकी है, लेकिन अब नए अनाउंसमेंट भी काफ़ी आने वाले हैं। तो अगर आप रेलवे में रेलवे की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और इच्छुक हैं कि भाई रेलवे वाली जो जॉब है वो हमें मिलनी चाहिए, तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप बहुत सारी नोटिफिकेशन देख सकते हैं, बहुत सारी जॉब वैकेंसीज आपको यहाँ मिल जाएगी। वेबसाइट क्या है एक बार फिर बता देता हूँ, rrbapply.gov.in।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: दोस्तों आज का समय यहीं तक था, हम लेते हैं विदा। मैं थी आपके साथ अदिति मौर्य और मेरे साथ थे
6: बिल्कुल मैं था आपके साथ आपके रेडियो रहा रोहित। और आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति करी थी राजेश लामरोड ने, संयोजन रहा मनीष कुमार सोलंकी। कहीं नहीं के साथ दीजिए हम दोनों को।

0: हम एफएम सनसिटी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी
2: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
3: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
2: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में

0: भी अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि एआई विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर।

0: जसलीन रॉयल और बादशाह की मखमली आवाज में ये सॉन्ग था इनाम, आपने सुना। और गुड इवनिंग जोधपुर प्रोग्राम में अभी बहुत कुछ है बाकी, लगातार बने रहिए हमारे साथ।
1: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
2: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
0: जी हाँ, जोधपुर में आज इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला त्यौहार मुहर्रम शहर के अलग अलग जगहों पर मनाया जा रहा है, जहां लोग उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा ताजिया 32 फिट का ये ताजिया मोहल्ला लायकान में है, और साथ ही जगह जगह पर हुसैनी लंगर और छबील भी बांटी जा रही है। वहीं दूसरी ओर कल शहर में निर्जला एकादशी पर जगह जगह पर मिल्क रोज, शरबत, जूस, लस्सी और छाछ की मनुहार कर शहरवासियों की लोगों ने सेवा भी की। जी हाँ, जोधपुर शहर है संस्कृति का, जोधपुर शहर है अपनत्व का, अपनायत का और अनूठी मिसाल का।

0: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ,
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: और जी हाँ, जोधपुर राइट्स, जोधपुर के लोग अभी एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जोधपुर में बारिश कब होगी। रोज बारिश का इंतजार रहता है, लेकिन बारिश है कि पूरी तरह से मौसम बनने के बावजूद भी अभी तक जोधपुर में दस्तक नहीं दे रही है। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि इस बार बारिश थोड़ी सी लेट है। हर बार लास्ट वीक ऑफ जून में बारिश आ जाती है, लेकिन इस बार फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में बारिश आने वाली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा देर नहीं है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, इसलिए आप इस बात को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं कि बारिश अब कुछ ही दिनों में हमारे शहर में दस्तक देने वाली है। और वैसे टेम्परेचर अभी डाउन ही है, हालांकि उमस थोड़ी है, इससे हम ज़रूर परेशान चल रहे हैं, लेकिन बारिश आने में अब ज़्यादा दिन नहीं है, ज़्यादा देरी नहीं है, इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, कुछ ही दिनों में हम पहली बारिश का वेलकम करने वाले हैं।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
3: 6:21 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं 102.1 FM के साथ, सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर। दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि शहर के जो वॉलंटियर्स हैं, शहर की जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो बहुत जागरूक हैं इन दिनों हमेशा की तरह, और जो हमारे हिस्टोरिकल वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी साफ सफाई के लिए सब लोग अलर्ट हो चुके हैं। पिछले दिनों कायलाना की सफाई हुई और अब हमारा एक और हिस्टोरिकल वाटर रिसोर्सेज है चतुरसागर, उसकी सफाई इन दिनों चल रही है। शहर की कई संस्थाएं और वॉलंटियर्स जो हैं वो अपने दल बल के साथ में इस जलाशय की सफाई में जुटे हुए हैं। हम भी उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और ये विश करते हैं कि वो इस काम में पूरी तरह सक्सेसफुल होंगे और हमारा जो हिस्टोरिकल वाटर रिसोर्सेज है, ऐतिहासिक जलाशय है।

जी हाँ, जोधपुर वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है कि हमारे एमडीएम हॉस्पिटल में नॉन इंसेसिव कार्डियक आउटपुट मॉनिटर और स्पेसिस डिटेक्शन मशीन जो है वो अवेलेबल हो गई है और उसने काम करना भी शुरू कर दिया है। इससे जो पेशेंट हैं उनकी ट्रीटमेंट की जो क्वालिटी है उसमें काफ़ी सुधार होने वाला है।

0: दोस्तों 102.1 FM पर आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग जोधपुर प्रोग्राम। और अब नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB जोधपुर के जोनल डायरेक्टर श्री घनश्याम सोनी से संश्लेषित मादक द्रव्य रोकथाम और जागरूकता विषय पर संजय व्यास की भेंटवार्ता हम आपको सुनवा रहे हैं। इस भेंटवार्ता के संयोजक और प्रस्तुतकर्ता हैं श्री राजेश लामरोड।
1: मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। इसे वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा 1987 से अपना शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य वैश्विक कार्यवाही को मजबूत करना और सहयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समाज को नशे के दुरुपयोग से मुक्त करना है। इस बार की थीम है विश्व मादक द्रव्य समस्या, चुनौतियां, खतरे और प्रतिकार। और कानून के जरिए इसकी तस्करी को रोकने में जो पायोनियरिंग कार्य है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किया जाता है। आज स्टूडियो में इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं श्री घनश्याम सोनी, क्षेत्रीय निदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर। हम चर्चा करेंगे पिछले काफी समय से लगातार इसके ट्रांसपोर्टेशन को रोकने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं और ये प्रयास जारी हैं। इसके लिए बहुत सारी ऐसे काम जो इसका निरोध कर सकते हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करता है, साथ ही अवेयरनेस के भी कुछ कार्यक्रम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चलाता है। तो सर घनश्याम सोनी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद सर।
1: आपका काम रोकने का जो है वो बहुत चुनौती वाला काम है और एक नई चुनौती जो ऐड हुई है वो सिंथेटिक ड्रग के रूप में ऐड हुई है। पारंपरिक रूप से

0: हमारा जो समाज है पश्चिमी राजस्थान का समाज, वो अफीम का सेवन एक सामाजिक मान्यता या परंपरा के रूप में करता रहा है। हालांकि इस परंपरा में कमी आई है, जन जागरूकता के बहुत सारे प्रयास हुए हैं, लेकिन एक नई चुनौती जो युवाओं में सिंथेटिक ड्रग के रूप में आई है, और ये चुनौती कितनी बड़ी है, इसका प्रतिकार आप कैसे कर रहे हैं?
1: पहले तो मैं आकाशवाणी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस समय राष्ट्र की जो सबसे संवेदनशील समस्या है और उस विषय पर आप प्रतिवर्ष 26 जून के दिन जो है वो आप द्रव्य मादक पदार्थों के निषेध दिवस के रूप में अवेयरनेस के रूप में बुलाते हैं और अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाते हैं, तो मैं आप सभी का आकाशवाणी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। और दूसरा जो आपने ये विषय बताया है कि पश्चिमी राजस्थान जहाँ पे अफीम और डोडे की मनवार मानी जाती थी, उनका सगुन माना जाता था, लेकिन सगुन से लेकर वर्तमान में ये एक सिंथेटिक समस्या का हब बनता जा रहा है, एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में पश्चिमी राजस्थान और स्पेसिफिक जो हमारा जोधपुर रीजन है, इसमें पिछले 3 सालों में हमने लगभग 32 MD की लैबें जो है, मोफेड्रॉन की लैब, वो हमने लगातार उनका भंडाफोड़ किया है। और इसमें स्पेसिफिक बात यह है कि जो सिंथेटिक ड्रग का हब जो मारवाड़ बना, के पीछे 3 मुख्य कारक हैं। एक तो जैसा कि आपने बताया कि हमारे यहाँ अफीम और डोडा नशा एक परंपरा था,
0: एक एक्सेप्टेंस रही है सोसाइटी के द्वारा,
1: स्वीकार्यता थी, उस स्वीकार्यता ने ही इस समस्या के लिए एक उर्वरा भूमि तैयार की। और उस उर्वरा भूमि के रूप में आज अगर हम देखें तो वो केमिकल जिसमें आप टॉलिन ले लो, एसीटोन ले लो, फॉर ब्रायोप्रोमोमिन ले लीजिए, ये सारे के सारे जो थे ये कहीं न कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में खुले रूप में बिकते थे, इनके ऊपर कोई प्रकार की
0: एनडीटीएस की प्रतिबंध से ये जो केमिकल सब्सटेंसेस थे इनके ऊपर किसी प्रकार का बैन नहीं था,
1: बैन नहीं जी। लेकिन जब हमने यहाँ आकर के ये स्टडी की और कंटिन्यूटी के अंदर जब इन सब लैबों को ब्लास्ट किया और अलग अलग इनकी जो जिस वीडियो से बनाते थे, क्योंकि हमने हाई प्रोफाइल गंगानगर के बड़ी सी बड़ी सोसाइटी में भी इनको पकड़ा, फार्म हाउस में भी इनकी लैबों को पकड़ा, भैंस के तबेले में पकड़ा, जंगल में पकड़ा, और मतलब लैब कहीं पर भी स्थापित हो सकती है, आपके पड़ोस में और आपको पता नहीं। तो गांव ढाणी देहात से लेके एक बड़े शहर तक
0: कोई धुआं या आवाज वगैरह नहीं आती,
1: वो सारी चीजें मतलब इन्होंने अलग अलग तरीके से तरीके इजाद किए हैं। लेकिन MD बनाने का जो सबसे मुख्य रासायनिक कारक था वो था 2-ब्रोमो। 2-ब्रोमो के बिना ये बनती नहीं थी। तो इसकी स्टडी की, फिर हमने एक यहाँ से प्रपोजल बना करके हमारे हेडक्वार्टर में भेजा कि राजस्थान में स्पेसिफिक पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो MD की लैब है जोधपुर जोन ने ही भंडाफोड़ किया है। जब 2-ब्रोमो का हमने यहाँ से भेजा तो हेडक्वार्टर ने उस मुद्दे को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में उठाया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में उठाया, और अभी पिछले महीने में 2-ब्रोमो को प्रतिबंधित श्रेणी के अंदर लेकर आ गए। 2-ब्रोमो अगर कोई मार्केट में ओपनली बेच रहा है तो उसके ऊपर जो है वो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो को सूचना दी जा सकती है। उसके ऊपर
0: स्वतंत्र रूप से इस सब्सटेंस का इस्तेमाल किसी काम के लिए होता रहा है पहले, कृषि कार्यों में या किसी और वजह से,
1: कृषि कार्यों में
0: तो
1: होता था।
0: वो बाधित ना हो इसके लिए भी इसी तरीके से इसको ले सकते हैं
1: जी, बिल्कुल। इसमें कृषि कार्यों के लिए जो है आपके GSTN नंबर होते हैं, आपके पास एक लाइसेंस होता है जो कंसर्न विभाग से जो है संबंधित, जैसे मैं NCB से हूँ तो हमारी एक प्रीकर्सर्स यूनिट बैठती है, वो परमिशन देती है उसके लिए, लेकिन इसको प्रतिबंधित श्रेणी में लाना जरूरी था। तीसरा, जिसको मैं स्मार्ट पुलिसिंग बोलता हूँ, कि पहले नाकाबंदी होती थी तो हमारे ट्रेडिशन के अनुसार हम अफीम और डोडा पकड़ते थे, लेकिन आज ही सुबह जब हमने ये GRP के पूरे जोधपुर रीजन के लगभग और बीकानेर संभाग के और सब कुल मिलाकर के 16-17 जो डिस्ट्रिक्ट थे उनकी हमने एक ड्रग सीजर की और प्रोसीजर की एक मीटिंग ली, उनको लर्निंग लेसन के रूप में, कि आपको केमिकल का अगर कोई ड्रम आता है तो उसको शक की दृष्टि से देखना है, क्योंकि सिंथेटिक ड्रग जो है प्राइवेट ट्रेवल से लेकर के रेल यात्राओं के अंदर ये पूरी बड़ी क्वांटिटी का जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। तो ऐसा एरिया अब जालोर के करडा थाने के अंदर केमिकल जा रहा है, 2-ब्रोमो जा रहा है, एसीटोन जा रहा है, टॉलिन जा रहा है, तो करडा थाने के खरा गांव की ढाणियों के अंदर ये केमिकल पहुंच रहा है, तो वहां तो कोई एग्रीकल्चर की यूनिट लगी हुई नहीं है, तो वहां कि पुलिस को भी सेंसिटाइज होने की जरूरत है, वहां का बीट कांस्टेबल को भी जागरूक होने की जरूरत है, वहां के जो पटवारी है उनको भी अलर्ट होने की जरूरत है कि कहां पे कौन सी चीजें, क्योंकि खातेदारी और उनकी चेकिंग तो वो करते ही है सब लोग। तो जो स्टेट एनकोड की मीटिंग होती है, जो हमारा एक एनकोड का मैकेनिज्म है, तो उसमें हमने इन मुद्दों को उठाया। पूरे राजस्थान में आप देखेंगे कि ड्रग्स से रिगार्डिंग जिस ऑपरेशन

0: एंड सिंथेटिक ड्रग इज द मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। आप देखेंगे कि पुलिस की जो रिपोर्ट है, इंटरपोल की रिपोर्ट में सिंथेटिक ड्रग का हब एशिया को माना है। एशिया में भारत एक बहुत बड़ी चुनौती है, और भारत के अंदर जब आप डीप में जाएंगे, ये जो हमारा बॉर्डरिंग इलाका है पंजाब और राजस्थान के स्पेसिफिक ये जो 5 जिले जो बॉर्डर से जुड़े हुए, तो वो हमारे लिए एक चुनौती है। हमारा लगातार प्रयास विभिन्न एजेंसियों के साथ यही है कि सिंथेटिक ड्रग के ऊपर, चाहे MD हो, MDMA हो, LSD हो, कोई भी प्रकार की ड्रग है, उसके लिए हम लगातार सतत निरंतर अनवरत यही प्रयास है कि इनका भंडाफोड़।
1: जी सर, इस दिशा में जितने भी सख्त कानून है वो डिटेरेंट का काम करते हैं, और कई लोग जो इस धंधे में लगे हुए हैं वो इन कानूनों के बावजूद भी खतरे को उठाते हैं और अंततः जेल जाना पड़ता है। लेकिन अगर कानूनों की बात करें तो किस तरह के सख्त कानून है, क्या आप ये मानते हैं कि पर्याप्त सख्ती है, या फिर कुछ कानूनों में और ज्यादा भारत सरकार कुछ नए किस्म के कड़े कानून लाने के बारे में भी सोच रही है?
0: देखिए, भारत सरकार जो है वो नए कानून तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं, 2023 से इम्प्लीमेंट हो गए हैं। लेकिन जहां तक NDPS एक्ट की बात करता हूं मैं, तो 1985 में भी जब ये एक्ट इस्टेब्लिश हुआ, उस समय में जो हमारे विद्वान गण जिन्होंने इस एक्ट को बनाया, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जो सारे प्रोविजन किए हैं वो इतने सख्त हैं इसमें कि कॉमर्शियल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी और कंजम्पशन क्वांटिटी, ठीक है, जिसको अपन स्मॉल क्वांटिटी बोलते हैं, इनका 3 भागों में पार्टीशन कर रखा है। लेकिन कुछ एक सजेशन जो थे, जैसे कि गांजा है, अब गांजे के अंदर जो सामान्य गांजा जो अपने जंगलों में उगता है, हम उगाते हैं, तो उसकी कॉमर्शियल क्वांटिटी 20 किलो मानी जाती है। अब उसी गांजे के अंदर आपका जैसे हाइड्रोपोनिक वीड आता है, जो थाईलैंड वगैरह से, आजकल लोग आपने देखा होगा न्यूज में, पढ़ते होंगे कि बैग में छुपा के लेकर आया 1 किलो 2 किलो, तो वो 2 किलो की भी बहुत कॉस्टली होता है। लेकिन हाइड्रोपोनिक वीड और जो हमारा देसी गांजा है, उन दोनों को NDPS एक्ट में एक ही जगह रखा गया है। तो हमने ये भी सजेस्ट किया है कि हाइड्रोपोनिक गांजे की जो कॉमर्शियल क्वांटिटी की मात्रा है वो कम कर ली जाए। और हमारा तो ये सुझाव है कि चाहे ड्रग कोई भी हो, उसमें मात्राएं जो है कॉमर्शियल क्वांटिटी की और कम करने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सख्त सजा हो, सख्त प्रोविजन हो। और इसके ऊपर सरकार खुद काम कर रही है। पहले 68 एक्ट के अंदर कार्रवाई है, जो 68 एक्ट है हमारा, जिसमें कि कॉमर्शियल क्वांटिटी के अंदर कोई भी बंदा पकड़ा जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, उसके सराउंडिंग जो फैमिली ट्री है, उसमें जांच करके पिछले 6 वर्षों की प्रॉपर्टियों को फॉरफिटेड किया जाता है। तो वो जो आर्थिक प्रहार है वो सबसे बड़ा अस्त्र है, और उसका आप देखेंगे राजस्थान के अंदर कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है वो अलग अलग आप देखेंगे विभिन्न, इसमें आप देखिए हमारे प्रतापगढ़, झालावाड़, गंगानगर से लेके पूरे एक रीजन के अंदर प्रॉपर्टी फॉरफिटेड की कार्रवाई बहुत हुई है। डेमोलिश के साथ में तो 300 करोड़ क्रॉस का आंकड़ा हमने पार कर दिया है।
1: ये तो सर निरोध की कार्रवाई है, जिसमें हम रोकथाम करने की कोशिश करते हैं। कानून इसमें बहुत सख्त है, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो अपने पूरे बल के साथ में इनको रोकने में, इनके ट्रांसपोर्टेशन को रोकने में और अपराधियों को पकड़ने में लगा हुआ है। लेकिन जो एंड यूजर है, खास करके सिंथेटिक ड्रग के मामले में जो युवा है, वो इन चीजों के चक्करों में ना पड़े, या अगर किसी कोई जो है वो गलत रास्ते पे आ गया है, वो अगर बाहर निकलना चाहता है तो क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मदद करता है, या वो कहता है कि आप हॉस्पिटल में जाइए जहां नशा छुड़ाया जाता है, या फिर आप किसी और एजेंसी से कॉन्टेक्ट करें, या फिर आप भी अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते हैं?
0: देखिए, इसमें अवेयरनेस के प्रोग्राम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो खुद भी चलाता है, प्लस जो हमारा भारत सरकार का सामाजिक कल्याण विभाग है उसमें एक नाभा है, नशा मुक्त भारत अभियान। तो नाभा से लेकर के आप मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है, अभी राजस्थान सरकार ने अपने लेवल के ऊपर जो हमारी स्टेट एंड कोर्ट की मीटिंग हुई, हर जिले के अस्पताल में जो सरकारी हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट का बड़ा हॉस्पिटल, उसके अंदर एक विंग स्पेसिफिक डी एडिक्शन सेंटर के रूप में एस्टेब्लिश करने की बात,
1: चाहे वो सिंथेटिक ड्रग से एडिक्टेड हो,
0: वो चाहे सिंथेटिक ड्रग से हो, चाहे वो अफीम, डोडा, नारकोटिक्स हो, चाहे सब्सटेंसेज हो,
1: जी
0: मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल सिंथेटिक, मतलब इन दोनों के लिए। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सरकार की तरफ से प्रयास है डी एडिक्शन, और वो एक्टिवली उनकी काउंसलिंग से लेकर के, इसके अलावा मैं आगे बढ़ करके बता रहा हूं कि जो हमारी मानस हेल्पलाइन है
1: जी
0: 1933, जिसका टोल फ्री नंबर है, वो केवल स्मगलरों की सूचना के ऊपर ही कार्रवाई नहीं करती है, उसके ऊपर आप अगर कोई ड्रग एडिक्ट है और आप 1933 पे कॉल करके उनसे मार्गदर्शन मांगेंगे, तो कंसर्न रीजन की, चाहे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेके कामरूप तक, चारों दिशाओं में कहीं पे भी उनका यूनिफॉर्म नंबर है 1933, उसमें आप स्मगलर की

0: सूचना भी दे सकते हैं कि फला फला आदमी ये गाड़ी नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, ये सफेद गतिविधियों में लिप्त हैं। इसके अलावा आप उसको डी एडिक्शन सेंटर के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो हमारे वाले गाइड भी करते हैं जहां कहीं पे भी है, फोन करके सूचना दे करके कि भाई जो हमारे सराउंडिंग के अंदर जो है नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं, ताकि उसका ट्रीटमेंट हो और वो समाज की मुख्य धारा में जुड़े।
1: जो भी अपराधी है जो इस प्रकार के इलिसिट ट्रैफिकिंग में लगा हुआ है, जो उसकी तस्करी करता है, वो क्या अनजान रहता है? क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट आजकल बन जाते हैं, आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, एटीएम का यूज करते हैं, तो आप लगातार राडार में रेंज में रहते हैं। तकनीक कितनी मदद करती है ट्रैप करने में, उनको नैब करने में?
0: देखिए, तकनीक जो है वो इस समय आदमी जहां जाता है वहां मोबाइल उसके साथ होता है, तो तकनीक के फुटप्रिंट तो उसके हर पल हर क्षण उसके साथ है। आप जहां पे भी मोबाइल की स्क्रीन खोल करके कहीं फोन पे करो चाहे कुछ भी करो, आपके साथ मोबाइल है। तो आप मान के चलिए कि यदि आपके जेब में मोबाइल है तो आपके बारे में दुनिया को सब पता है। ये आपकी गलतफहमी है कि मैं ये काम करके निकल रहा हूं और मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। और इस समय जो हमारी टेक्निकल सर्विलेंस यूनिट होती है, चाहे कोई भी एजेंसी, और वो तो अपडेट है ही है, इसके अलावा आपसी एजेंसियों का जो कोऑर्डिनेशन है वो केवल राइट टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग तक सीमित नहीं है। राइट टाइम कोऑर्डिनेशन के साथ एक्टिवली एक्शन तक पहुंच गया है मामला। आज अगर हमारे पास कोई सूचना है और मैंने जीआरपी को सूचना दी, तो इमीडिएट चार बंदे उनके चढ़ेंगे। जहां से अगर गुवाहाटी से कोई बंदा बाड़मेर तक की ट्रेन आ रही है और उसमें अफीम लेकर के चढ़ा और हमारे पास इनपुट है, हुलिया पता है, तो हमें केवल जीआरपी के कंसर्न एसपी साहब को इन्फॉर्म करने की जरूरत है कि भाई यहाँ यहाँ से इस टाइप का बंदा है। वो इमीडिएट कंसर्न स्टेशन के ऊपर उसके सारे सीसीटीवी कैमरे लेकर के एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास भेजेंगे कि आप देखिए ये तो नहीं है कहीं, और वो बंदा पकड़ा है तो वहीं से उसका फॉलोअप शुरू हो जाएगा।
1: ये सब रियल टाइम में होता है और समन्वय इसमें बहुत महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: तो आपका जो विभाग है वो अगर रेल से कोई लेके आ रहा है तो जीआरपी के साथ, और अन्यथा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो अलग अलग स्टेट्स की पुलिस है, उन सब में ये जो समन्वय है, ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होता है या बहुत आसानी से हो जाता है और पहले से ही सारा कुछ तय होता है कि इस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाएगा और इस तरह से अपराधी तक पहुंचा जाएगा?
0: ये जो कोऑर्डिनेशन है ये हमेशा ज्वलंत होता है कि कैसी परिस्थिति है। जैसे अभी इन्फॉर्मेशन आ गई कि कोई छोटा जहाज है और वो गुजरात के अंदर मुंद्रा पोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो इमीडिएट आपने सूचना दी गुजरात जोन को, गुजरात जोन ने इमीडिएट उस सूचना को शेयर करेगा, वो एटीएस के साथ शेयर करेगा, नेवी के साथ शेयर करेगा, कोस्ट गार्ड के साथ शेयर करेगा और मैरीटाइम के साथ शेयर करेगा। ये चारों शेयरिंग होते ही वो पता चल जाएगा कि वहां पे समंदर में दूसरा कोई कॉल तो काम करता नहीं है कि भाई कहां पे सैटेलाइट फोन एक्टिव हुआ है। तो आप देखिए, मतलब विद इन 5 मिनट उनकी सारी लोकेशन पता चल जाती है।
1: बिल्कुल, ये इतना महत्वपूर्ण काम है सर। और गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो तो आपस में शेयर करती इन्फॉर्मेशन को, लेकिन जैसे आपने कहा कि सामान्य नागरिक हैं वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण खबरी साबित होते हैं, तो वो कई बार जैसे हल्का सा उसको अंदाजा भी होता है और वो शेयर करना चाहता है, लेकिन आपने जैसे कहा कि 1933 ये एक नंबर है जिस पर आप शेयर कर सकते हैं, तो यही एक जरिया है? और इससे पहले क्या जरिया हुआ करता था, या इसके अलावा और क्या ऑप्शंस होते हैं?
0: देखिए, आपने बहुत ही अच्छी, हमारी जो मानस हेल्पलाइन है, मैं श्रोतागणों से भी निवेदन करूंगा कि मानस हेल्पलाइन जो 1933 टोल फ्री नंबर है, ये जो भारत इस समय सारी एजेंसियां और जो जागरूक नागरिक हैं जो नशे के विरुद्ध जो युद्ध लड़ रहे हैं, उसमें आप एक सूचना देकर के एक सहभागी या एक सक्रिय नागरिक के रूप में एक सूचना की आहुति देकर के ही इस महायज्ञ में आप अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। 1933 वो अस्त्र है, एक ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए, कि आपको लगे कि फला फला बंदा है, इसके ये मोबाइल नंबर है या ये स्कूटर के नंबर है, कार के नंबर है, जो भी है आपके पास जानकारी टूटी फूटी आधी अधूरी, आपने उसके ऊपर आप हिंदी इंग्लिश राजस्थानी जैसी भी भाषा में बताएंगे, तमिल में कश्मीरी में,
1: इसमें बोल के बताना होगा या व्हाट्सएप
0: केवल 1933 के ऊपर कॉल करेंगे, वो तुरंत रेस्पॉन्स करेगा और आपको बतानी है। वो टाइप करके उसको परिमार्जित करके कंसर्न जोन के जोनल डायरेक्टर के पास वो सूचना पहुंच जाती है राइट टाइम, और फिर वहां से जो भी मानस सेल होती है वो उसको इम्प्रूवमेंट करके उसकी सत्यता की जांच करके उसके ऊपर एक्शन होता है। तो इस समय मानस हेल्पलाइन, मैं समझता हूं कि जितने भी बुद्धिजीवी नागरिक जो सुन रहे हैं, मेरी तो आपके माध्यम से उनसे अपील होगी कि 1933 के ऊपर जितनी ज्यादा शिकायत आएगी तो उससे एक स्टेट का डिस्ट्रिक्ट का जो ड्रग सिनेरियो है वो हमारे सामने एक उसका खाका तैयार होगा, तो सारी एजेंसियों को इनके खिलाफ कार्रवाई करने के अंदर एक

0: मिलेगी।
1: बिल्कुल, और 1933 पर आप मैसेज करके, फोन करके मैं भी जागरूक नागरिक होने का संदेश अपने आप को दे सकते हैं और अपने जागरूक नागरिक होने का परिचय दे सकते हैं। इसमें सर कोई किसी को ये शक हो, आशंका हो कि कोई खतरा हो तो क्या आप एनोनिमस होकर भी दे सकता है खबर?
0: नहीं, बिल्कुल उनकी जो भी जानकारी दी जाती है वो पूरी गुप्त रखी जाती है।
1: उसको नहीं पता है कि सामने कौन बैठा है?
0: हाँ, उनको कोई पता नहीं है किसने क्या दिया और उसकी जानकारी गुप्त रखी जाती है। और जब कार्रवाई हो जाती है तो उनमें छटनी करके जो बड़ा ऑपरेशन होता है तो उनके इनाम भी देते हैं एनसीबी अपनी तरफ से, ताकि उनका उत्साहवर्धन हो, ताकि समाज की गंदगी साफ हो।
1: सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो यही है कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नशा मुक्त समाज बनाने में।
0: जी, ये सब
1: और एनसीबी भी अपने आप में ये पायनियरिंग एजेंसी है, इस तरह का काम कर रही है, उसे हमें सहयोग करना चाहिए। और आखिर में सर, इस प्रोग्राम में आप युवाओं को, खास करके क्योंकि सिंथेटिक ड्रग एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को इन जनरल और युवाओं को इन पर्टिकुलर?
0: समाज तो समंदर है, समाज के ही हम सब हिस्सेदार हैं, तो समाज को अगर हमें वास्तव में दिशा देनी है तो नशा मुक्त, व्यसन मुक्त समाज हो। और जिस तरीके से इस समय भारत सरकार एक सपना लेके चल रही है, एक आजादी का अमृत महोत्सव है और 2047 तक भारत ड्रग फ्री हो, तो वो केवल पुलिस और कानूनी एजेंसियों से नहीं होगा, समाज के हर तबके को जागरूक होना पड़ेगा, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो सक्रिय नेतागण हो, समाज सेवी हो, उनको फ्रंट पे आके लड़ना होगा। युवा और यूथ को जो मेरा संदेश है आपके माध्यम से कि भारत, जो सशक्त भारत तभी बनता है, समाज सशक्त तभी बनता है जब युवा ड्रग फ्री हो, नशा मुक्त हो। हम विवेकानंद जी के देश से हैं, हमारे आइडियल वो है जिन्होंने उठो जागो और संघर्ष करो का संदेश दिया, तो ऐसे में हमारा युवा जो है वो सुबह उठते ही, चाहे वो ड्रग का एडिक्ट हो, चाहे मोबाइल की स्क्रीन का एडिक्ट हो, कोई भी एडिक्शन जो है वो एक युवा और यूथ के लिए उचित नहीं है। ऐसे में हमें ड्रग फ्री भारत की परिकल्पना तभी सार्थक हो सकती है जब युवा जिंदगी को हां और नशे को ना का मूल मंत्र बनाए। धन्यवाद, तभी जाकर के हम ड्रग फ्री समाज के सपने
1: जिस तरह से हमने पोलियो मुक्त भारत बनाया है, जिसमें एक भी कड़ी अगर छूटती है तो हमें पूरा अभियान वापस चलाना पड़ता है, उसी प्रकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और तमाम जो दूसरी एजेंसीज हैं वो बरसों से लगातार धरपकड़ करती रही हैं। हर बार हम इस तरह के जो नशीले द्रव्य और उनके अपराधियों को पकड़ते हैं, लेकिन ये सिलसिला अनवरत जारी रहता है, क्योंकि समाज के चाहने में अगर एक भी जना नहीं चाहेगा तो कहीं ना कहीं वो कड़ी टूटती है। तो पूरे समाज को समेकित रूप से ये इच्छा व्यक्त करनी होगी कि हम हमारे समाज को नशा मुक्त करेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। घनश्याम सोरेन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्षेत्रीय निदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: धन्यवाद सर।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर श्री घनश्याम सोनी से संश्लेषित मादक द्रव्य रोकथाम और जागरूकता विषय पर संजय व्यास की भेंटवार्ता आपने सुनी। इस भेंटवार्ता के प्रस्तुतकर्ता थे राजेश लामरोड। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर 102.1 FM पर।

जी हाँ, JNVU के 5 साल के LLB कोर्स में जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 5 जुलाई को होने वाला है, और इसका टाइम जो है वो सुबह 11 से दिन में 1 बजे तक रहने वाला है। आयुष्मान खुराना की आवाज़ में ये मज़ेदार गाना है डॉक्टर जी फिल्म से।

इस यूनिवर्स का सबसे मजेदार एहसास, सबसे प्यारा एहसास प्यार है दोस्तों। उस प्यार को हमेशा अपने भीतर बनाए रखिए। यही वो एहसास है जो हमें अपनी जिंदगी को जीने का सबसे अच्छा सलीका देता है, अपने जिंदगी को जीने का सबसे अच्छा तरीका देता है और हमारी जिंदा दिली को बचा के रखता है। तो ये था आज का गुड इवनिंग जोधपुर प्रोग्राम। आज का ये प्रोग्राम आपने सुना मेरे यानी यूसुफ खान के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा स्थानीय कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। हम एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रोग्राम जय माला विविध भारती से।

जय माला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं हंसराज बहल और फिल्म का नाम है सिकंदर ए आजम।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: भारतीय सेना।
1: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

कुदरत इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

आबरू। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं जी एल रावल, संगीतकार हैं सोनिक ओमी।

कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, नगमा निगार है हसरत जयपुरी, धुन है शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है धरती।

साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अखियों के झरोखों से इस फिल्म का गीत सुनिए हेमलता की आवाज में। गीतकार संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जय माला कार्यक्रम में अब सुनिए अगला और अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, तर्ज है राजेश रोशन की, फिल्म का नाम है बाबू।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम इंद्रधनुष के तहत गुलदस्ता में आज पेश खिदमत है कुछ चुनिंदा गैर फिल्मी गजलें। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। सामईन कराम, लीजिए समाध फरमाइए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में ये गजल। शायर हैं निदा फाजली, मौसिकार जगजीत सिंह।

कब अहल शहर रखते हैं दिन रात का हिसाब, सबके नसीब में है कहां चौदहवीं की रात। शायर सईद राही का कलाम लीजिए समाध फरमाएं गुलुकार घनश्याम वासवानी की आवाज में।

वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे, मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं खुदा ना करे। रहेगा साथ तेरा प्यार जिंदगी बनकर, ये और बात मेरी जिंदगी वफा ना करे। गुलदस्ता नशरिया की आखिरी गजल समाप्त कीजिए गुलुकारा इंद्रानी रिजवी की आवाज में। कलाम है कतील शिफाई का, मौसिकी है बेनी साटमकर की।

0: मुअज्जज सामईन, इंद्रधनुष के तहत गुलदस्ता नशरिया में आज आपने सुनी कुछ चुनिंदा गैर फिल्मी गजलें। अब रुख्सत होने की दीजिए इजाजत, शुक्रिया।
1: ये था विविध भारती का नजराना गुलदस्ता।

श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं मनोहर वर्मा की लिखी नाटिका बजट एक कमाऊ बीवी का। निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर।

0: अच्छा दो वचन
1: दिया।
0: तो सुनिए, मेरे पास जो कागज है उसमें आइटम वाइज कुछ कटौतियाँ हैं।
1: अच्छा।
0: ये कटौतियाँ हमारी गृहस्थी पर आए हुए आर्थिक संकट को देखते हुए आवश्यक हैं। आप अनिवार्य रूप से इनका पालन करेंगे?
1: अवश्यमेव।
0: खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कह रहे हैं?
1: मैं खुदा के साथ साथ अपनी अन्नदात्री पालनहारा पत्नी श्रीमती।
0: बस बस बस श्रीमान। तो आइटम नंबर एक, मकान किराया कोई कटौती नहीं,
1: ताजिंदगी कोई गुंजाइश भी नहीं।
0: और आइटम नंबर दो, प्रोविजन केवल एक कटौती, उर्द की दाल। तुम्हारे समय कोई नहीं खाता है ना?
1: कौन? बस एक तुम ही तो नहीं खाती हो।
0: ओफो, पिछले मैंने आपके ताऊ जी, मौसी जी, चाची जी, बहन जी और छोटे मोटे भाई भतीजे आए थे। उर्द की दाल खाने वाले लोग अल्प संख्या में थे, आता है।
1: ओहो डार्लिंग, ये सबके सब सेहत के दुश्मन हैं। तुम तो मेरी सेहत का ख्याल करो।
0: मैं अपनी किचन का ख्याल रखूंगी और अपनी बचत का, समझे श्रीमान?
1: देखो वो चने की दाल में।
0: कोई भी समझदार औरत चने की दाल में कटौती पसंद नहीं करती, ये बात आपके सूचनार्थ निवेदन है।
1: मगर क्यों भला?
0: क्योंकि चने की दाल जल्दी बनती है और उसमें कई वैरायटीज बन सकती हैं। अतः 4 किलो उर्द की दाल की जगह केवल 0.5 किलो दाल देने का निर्णय लिया जाता है। और आइटम नंबर 3 में कोई कटौती नहीं।
1: भाई दीप, आइटम नंबर 3 है क्या?
0: तुम आइटम नंबर 4 देखो, अंडे, डबल रोटी और मक्खन।
1: इसमें तो कोई कटौती नहीं होनी चाहिए डार्लिंग।
0: बस इतनी सी कटौती होगी कि आज तक आपके लिए 2 अंडे प्रतिदिन आते रहे हैं और आज से 1 दिन छोड़कर 1 दिन केवल 1 ही अंडा आया करेगा।
1: मगर मैं आपत्ति करता हूँ, कटौती एकांगी है।
0: तो आप सुझाव दें श्रीमान कि क्या डबल रोटी आधी लेने लगूं या मक्खन की टिक्की आधी कर दूं?
1: डार्लिंग मेरा मतलब ये था कि
0: मैं जो 2-4 टोस्ट खाती हूँ वो भी बंद कर दूं।
1: ओ नहीं नहीं डार्लिंग, ये बात नहीं, समझा करो बात को।
0: क्या पता है आपको, मैं दिन भर दफ्तर में सिर खपाती हूँ, आपकी तरह साहित्य वाहित रचने का निठल्ला काम नहीं करती।
1: ओफो, इजाजत दें तो मैं भी कुछ कहूँ।
0: आपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कुछ कहा था। अच्छा, मैं आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखते हुए आइटम नंबर 5 में कोई कटौती नहीं कर रही, जबकि दूध वाला हर महीने दूध में पानी की मात्रा के साथ साथ दूध का भाव भी बढ़ाता जा रहा है।
1: धन्यवाद, आपके सौहार्दपूर्ण व्यवहार के लिए मैं आपका शुक्रगुजार।
0: आप कई कई बार शुक्रगुजार होंगे श्रीमान। हाँ, और मैं आपकी आभारी होंगी यदि आप ये बताने की कृपा करें कि आप एक ड्रेस कितने दिन में बदलते हैं।
1: 2 दिन में।
0: तो निर्णय लिया जाता है कि आप कल से एक ड्रेस 3 दिन चलाएंगे।
1: क्या?
0: और चादर, तकिया, गिलाफ वगैरह प्रति सप्ताह के बजाय 15 दिन में बदले जाएंगे।
1: नो।
0: इस तरह आइटम नंबर 6 में धोबी के खर्च में कटौती की जाएगी और आइटम नंबर 7 में कोई कटौती नहीं।
1: आइटम नंबर 7 में कोई कटौती नहीं, क्यों डार्लिंग?
0: फिर वही डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, तंग आ गई तुम्हारी संग्रेजी डार्लिंग से।
1: अच्छा बाबा, श्रीमती जी, देवी जी, बस। अच्छा देवी जी, क्या मैं ये पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि साड़ियों की ड्राई क्लीनिंग के 15 रुपए महीने में कोई कटौती क्यों नहीं?
0: देखिए श्रीमान, मैं मानती हूँ ये खर्च कुछ अधिक है, पर आपको इस आइटम नंबर 7 व 14 के बारे में बाद में बताऊंगी।
1: अच्छी बात है। नाउ आइटम 8,
0: बिजली का बिल, और आइटम नंबर 9 तेल, साबुन और टूथपेस्ट, और आइटम नंबर 10 है हरी सब्जी, कोई कटौती
1: है? आई ऑब्जेक्ट, मेरा मतलब है कि
0: मैं समझ गई आपका मतलब। कहिए किस बात का गम है आपको?
1: श्रीमती जी, आप अपने लिए 2 टिकिया जो महंगा वाला साबुन त्वचा की रक्षा और सौंदर्य वृद्धि के लिए लेती हैं, वो कट।
0: क्यों?
1: सुबह की चाय और रात की कॉफी जो बिजली से बनती है वो बंद।
0: शेम शेम शेम श्रीमान, आपको शर्म आनी चाहिए। नारी के सौंदर्य को नष्ट करने वाले आपके प्रस्ताव की मैं निंदा करती हूँ। क्यों? हा? और आपके इस प्रस्ताव पर आपके दिमाग की इस उपज की भर्त्सना करते हुए प्रस्ताव को ठुकराती हूँ। सुनिए, ये मैं क्यों करती हूँ, आपके बीड़ी के तुर्रों की बदबू से बचने के लिए खुशबू वाले प्रसाधन जरूरी हैं और समय के सदुपयोग के लिए बिजली का उपयोग। आया आपके मिजाज शरीफ में?
1: नहीं आया देवी जी, तो आ जाएगा। ठीक है, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ
0: और मैं अपनी निंदा और भर्त्सना।
1: धन्यवाद।
0: अच्छा, तो अब आप एक दैनिक, एक फिल्मी पाक्षिक और एक मासिक पत्र लेते हैं।
1: जी हाँ।
0: और मेरे लिए सिर्फ एक मासिक।
1: हाँ।
0: तो प्रस्ताव है कि आपका मासिक पत्र जो काफी महंगा है बंद कर दिया जाए।
1: और आप दैनिक क्यों बंद नहीं कर देती?
0: जी, दैनिक की तो रद्दी हो जाती है और आप मासिक की फाइल बना रहे हैं, अतः वो रद्दी में नहीं बेचा जा सकता, पैसा ब्लॉक होता है।
1: वो मगर मेरी फाइल का क्या होगा?

0: कुछ नहीं, जब हम काफी बचत कर लेंगे तब इकट्ठी फाइल मंगवा लेंगे, क्यों ठीक है ना?
1: जी नहीं।
0: ना सही, आइटम 12 और 13, इसमें कोई कटौती नहीं।
1: भाई वाह, क्यों नहीं कटौती?
0: क्यों?
1: अरे पार्टियां लग्जरी हैं, ये बंद होनी चाहिए।
0: आप चाहते हैं मैं ऑफिस की पार्टियों में शरीक ना हूँ, सबसे संबंध तोड़ लूँ, समुद्र में रहकर मगर से बैर नहीं हो सकता। रही कैंटीन के बिल की बात, चाय तो छूटेगी नहीं। हाँ अल्पाहार अलबत्ता बंद कर सकती हूँ।
1: ओ मगर बंद करने की कौन कहता है डार्लिंग, मेरा मतलब है कम करने का प्रस्ताव विचारणीय हो सकता है।
0: खैर कोशिश करूंगी। अच्छा आइटम नंबर 14 व 15 में कोई कटौती नहीं, पाउडर क्रीम सेंट आदि सौंदर्य प्रसाधन स्त्री के लिए अनिवार्य हैं। और आइटम 15 के अंतर्गत आकस्मिक आवश्यकता के लिए रुपए बचाना भी, कोई आपत्ति?
1: जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: अच्छा आप ये बताइए, आपको जो 10-15 रुपए हाथ खर्च दिया जाता है, क्या उसके खर्च का मैं ब्यौरा पूछ सकती हूँ?
1: यही बस कुछ किताबें, सिनेमा,
0: बीड़ी के तुर्रे, यार बाजी, यूँ कहिए ना, फिजूल खर्ची की भी हद होती है श्रीमान। देखिए इस प्रस्ताव का धरता से पालन होना चाहिए कि एक फिल्म जो हम दोनों देखते हैं उसके अलावा आप अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक 2 फिल्में देखेंगे, बस।
1: सिर्फ 2?
0: हाँ, यहाँ भी आपके साथ उदारता बढ़ती जा रही है।
1: और देवी जी, ये हर इतवार को आप जो अंग्रेजी फिल्म देखती हैं?
0: मैंने कहा था ना, भी दफ्तर के साथियों का साथ देना एक मजबूरी है, जब वे पांचों देवियाँ यहाँ आ धमकती है तब बताइए मैं क्या कहूँ। और तब आपसे भी तो इनकार करते नहीं बनता, क्योंकि हमारे साथ चलने के लिए तब आपके खुद के मुँह में पानी भर आता है।
1: लेकिन फिर भी आपने कभी हमारी इस दयनीय स्थिति पर रहम नहीं
0: खाया। तो स्थिति इस प्रकार रही कि आइटम नंबर 2, 4, 6, 11, 12, 13 व 16 कि कुछ मामूली कटौतियों से इस माह का घाटा पूरा हो जाता है।
1: इस स्वीकृति के साथ कि ये कटौतियाँ एकांगी हैं फिर भी मान्य हैं।
0: जो भी है, परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आपको इनका पालन करते हुए गृहस्थी के प्रति उनकी श्रद्धा प्रकट करनी ही होगी।
1: अच्छा आप भाई दीपे आइटम 7 और 14 पर क्या कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते
0: हैं? हाँ, अच्छा पहले ये बताइए कि आपकी मित्र मंडली की मेरे प्रति क्या राय है?
1: अजी लोग सिर धुनते हैं।
0: मैंने राय पूछी थी, ये नहीं पूछा था कि सिर धुनते हैं या रुई।
1: वही तो मैं बता रहा हूँ श्रीमती जी, कि लोग ये कहते हैं कि हे भगवान, यदि अगला जन्म होता तो हमें चाहे कानी लूली लंगड़ी कैसी भी बीवी मिले, मगर मिले कमाऊ।
0: आज जब मैं सिर समेट कर आपके साथ निकलती हूँ तब
1: तब लोगों की नजर मेरी बजाय तुम पर टिकी रहती
0: है। ये सच है ना?
1: जी हाँ बिल्कुल सच।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे कारण तुम्हें मान मिलता है ना?
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो फिर आइटम 7 में कटौती का अर्थ होगा कि मैं गंदी सलवट भरी साड़ियाँ पहनूं और मेरे दफ्तर की अन्य लड़कियों के मुकाबले।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं, कभी नहीं। तुम्हारी साड़ियों आदि का ड्राई क्लीनिंग होना बहुत जरूरी है।
0: तुम कितने अच्छे हो ना।
1: तुम भी तो कितने अच्छे हो।
0: अच्छा तो आइटम 14 के अंतर्गत मेरे सौंदर्य प्रसादनों में कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं क्या आप?
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रख रहे।
0: अच्छा तो इसका मतलब है मेरी तनख्वाह है 355 रुपए,
1: बिल्कुल ठीक,
0: और 7 रुपए हुए रद्दी के, कुल हुए 362 रुपए, और कटौतियां करने पर खर्च हुआ 360 रुपए 80 पैसे।
1: वाह वाह क्या बात कही है, मेरा बस चले
0: तो मुझे वित्त मंत्रालय बना दे। खैर तो आज से इसी योजना के अनुसार काम करने की घोषणा की जाती है।
1: चलिए मंजूर।
0: कौन है?
2: जी जी।
0: अरे मधु कब आए तुम?
2: अभी आए।
0: हाँ खबर तक नहीं दी,
2: सोचा अचानक पहुँच कर दीदी को चौंका दूंगी। दीदी जीजा जी कहाँ हैं?
0: अंदर गए हैं, अभी बुलाती हूँ, तब तक तू चल नाश्ता कर ले।
3: अरे भाई कौन आ गया है?
0: देखो तो कौन आई है।
2: नमस्ते जीजा जी।
3: जी नमस्ते। नमस्ते मधु, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक?
2: ठीक हूँ जीजा जी।
0: अरे मधु यहाँ एक फ्राई किया हुआ अंडा पड़ा था, मेरे चूहे ले गए क्या? तेरे जीजा जी के लिए रखा था।
2: दीदी वो तो मैं खा गई, जीजा जी के लिए और बना दो, मैं भी एक और लूंगी।
3: बात ये मधु, अंडा एक ही आता है, वैसे मैं भी 2 ही खाता था, और तुम्हारी दीदी ने आज ही से।
2: अरे वाह दीदी, जीजा जी कमाते नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो खाना भी लपा तुला दो।
0: तू सोचती है वो बात नहीं है मधु।
2: बात कुछ भी हो दीदी, खाने पीने में कटौती।
1: यही तो मैं कहता हूँ मधु,
2: पर देखो दीदी, कल मैं खुद जाकर 4 अंडे, 2 डबल रोटी और 2 टिकिया मक्खन लाऊंगी।

0: समझी।
1: हाँ हिप्पोपोटा, थ्री चीयर्स टू मधु।
0: जीजा जी, यहाँ पिक्चर कौन कौन सी चल रही
2: है? अरे इस सब ऐसी है, तेरे देखने लायक नहीं है।
0: ठीक है, जैसे भी है दीदी। अभी जब अपन ड्राई क्लीनर्स के कपड़े देने चलेंगे तो लौटते समय एडवांस टिकट ले आएंगे, क्यों जीजा जी?
3: बिल्कुल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो मधु, सब ठीक हो जाएगा।
0: अच्छा दीदी, आप दोनों तय करो कि कौन सी पिक्चर चल रही है, मैं भी नहा के आई।
2: हो गई अपनी बचत योजना चौपट।
3: डार्लिंग, मधु कोई 10-20 कपड़े तो रोज धुलवाएगी,
2: और 10 दिन तक दुगने अंडे, डबल रोटी और सब्जी आएगी।
3: और ये जब जाएगी ना, तभी से सलवार कुर्ता भी भेंट करना।
2: हाय, 40 का घाटा था ही, 100 हो जाएगा।
4: आज हवा महल में आप सुन रहे थे मनोहर वर्मा की लिखी नाटिका बजट एक कमाऊ बीवी का। निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर। आकाशवाणी जयपुर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए साधना सरगम और उदित नारायण की आवाजों में समीर का लिखा गीत। संगीतकार हैं आनंद मिलिंद और फिल्म का नाम है सुहाग।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे

0: विविध भारती पर, जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आइए सुने अगला गीत अलका याग्निक, उदित नारायण, अमित कुमार और साथियों की आवाजों में। समीर के बोलों को संगीत से सवारा है विजू शाह ने। फिल्म का नाम है बड़े मियां छोटे मियां।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं सुनिधि चौहान और करसन सरगतिया की आवाजों में। गीत लिखा है तेजपाल कौर ने, संगीतकार हैं अनु मलिक, फिल्म का नाम है फिजा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक

0: परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाल।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा है नितिन राय कवार ने, संगीत है संदीप चौटा का, फिल्म का नाम है मस्त।

0: हम FM सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8:45 होने वाले हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या न्यूज बुलेटिन रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रूपये है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्र

मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार
विकसित भारत के

0: संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तीन

चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार

0: सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये FM सन सिटी चैनल है, आइए सुनते हैं प्रोग्राम आपके लिए विविध भारती से।
2: विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए शमशाद बेगम की आवाज में। नगमा निगार है राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार है सचिन देव बर्मन और फिल्म का नाम है बहार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में अगला गीत। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत है जय देव का, फिल्म का नाम है मुझे जीने दो।

0: सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है गीता दत्त की आवाज में। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना मदन मोहन की। फिल्म का नाम है भाई भाई।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और मुबारक बेगम की आवाजों में वो नख्मा जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है हमराही।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद का और फिल्म का नाम है मुगले आजम।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी मन्नाडे और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, तर्ज है रोशन की, फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विवेक भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।

0: मैं झटक रहता मैं आया है राजा
1: लो गोरे लो गो।
0: राजा के संग संग
1: जुमलो जुमलो
0: आया है राजा
1: लो गोरे लो गो।
0: राजा के संग संग
1: जुमलो जुमलो
2: वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8,500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मेस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 वर्ष की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव-गांव शहर-शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहाँ वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैया राजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैया राजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैया राजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैया राजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कजू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजन थई किलन थे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हसन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

0: सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलैयाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलैयाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, क्या जोर से बजी है,

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैयाराजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैयाराजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने गा...

विजया राजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलिया राजा अपना संगीत सीख रहे थे तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलिया राजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

यहाँ आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजाविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण

विभूषण। 5 नेशनल अवार्ड हैं, 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्रवीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाक, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू

इलियाराजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलियाराजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिणी और युवान शंकर राजा। इलियाराजा के ये 3 बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलियाराजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलियाराजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहाँ तक कि अपने भाई को भी इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलियाराजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलियाराजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलियाराजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलियाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैयाराजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैयाराजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणि

रत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहनलाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैया राजा ने, निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैया राजा ने तमिल फिल्म पागल निलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिम्फनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बना

0: संगीतकार इलैयाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: दोनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत बस कुछ ही पलों के बाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती पेस्ट।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दिल का सौदा है एक ऐसा सौदा जहाँ जो खोए वो पाता है और जो पाता है वो खोता भी है। इसमें जीत कर भी हार है और हारने वाले की भी जीत। इसकी है ऐसी रीत कि न यहाँ होता है मूल भाव न कोई नापतौल। जनाब ये है दिल का शहर, यहाँ बदलते हैं मौसम हर पहर। धूप में खिलती है चांदनी और रात में बरसते हैं शोले। जैसा जैसा दिल कहे बस कुछ वैसा ही मौसम होले।

हार जीत का ये दुनियावी तिलिस्म हमें समझ न आया है, हमने तो खोकर दिल को अपने तुझे दिल के करीब पाया है। इस सौदे में लगा हमारा सब कुछ, पर कुछ भी ना गंवाया है।

नदिया पास से अपने लाखों गुना वापस आया है। एक ओर दिल का सौदा हुआ खरा और दूसरी ओर निगाहों ने भी ठंडक पाई है। तेरे साथ जीवन की हर तन्हाई भी शहनाई है।

0: आप सुन रहे हैं छाया गीत। दिल के सौदेबाजी में हमने पाया प्यार का रंग, दुनिया की भीड़ में मिला है एक हम कदम। तो मिल ही गया तो क्यों ना तय करें ये सफर अब साथ में ही, हाथों में हाथ थामे मिला ले कदम से कदम। कभी कलियां खिलें तो कभी गलियां मिलें, साथ है तेरा तो मुझे है अब क्या गम। देख ले साथी दिल के सौदेबाजी में संभाल लेना जो जरा भी लड़खड़ाए हम।
1: मिल गए।

इस दिल का क्या भरोसा तेरा होकर भी तुझसे ही शर्माता है, कहते कहते अपनी कोई बात खुद ही चुप हो जाता है। कभी लगता है जैसे बरसों से हो तुम राजदार इसके, और अगले ही पल न जाने क्यों अपनी बातें तुमसे ही छुपाता है। छेड़ता है रागिनी कोई और झूम झूम जाता है, पाकर तुझे खोता है और खोकर तुझे पाता है, हर रोज तेरी एक नई झलक ही पाता है।

जिंदगी के सफर में चल रहे थे तन्हा ही हम, तुम मिले तो बदले मायने सफर के। इस साथ का दिल पे हुआ है असर ये कि अब तन्हाइयों में भी होती है तुमसे ही बातें, याद आती हैं वो मुलाकातें, जब फूलों की चादर पर चले थे हम साथ, यादों में ही थामती हूँ अब तेरा हाथ। तो हकीकत बनकर सामने नजर आते हो तुम, मेरे अफसानों को रंग जाते हो तुम।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

0: हम एफएम सनसिटी चैनल से बोल रहे हैं। रात के 11 बजने वाले हैं। अब समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। समाचार पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में होंगे।
1: कृपया समाचारों की

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।